एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। आज रविवार है। शक संवत 1948 के बैसाख माह की 8वीं तिथि, तदनुसार 10 मई सन 2026, समय 5:59 सेकंड। आरंभ आज की सभा का मंगल ध्वनि के साथ।

एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार और उसके बाद सुने आप विविध भारती मुंबई से प्रसारित भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदन वार। इंतजार हमारे साथ।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास।

प्रयास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडीबेल्लूर से महबूब नगर तक चार लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। बीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के दो दो विधायक हैं। राज्यपाल ने श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दासमुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे पांचवी बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इसमें समय पर वेतन और सामाजिक अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का भी प्रावधान है। परामर्शदाताओं के लिए शिक्षा के माध्यम से मस्तिष्क की सक्रियता परियोजना पर आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन होगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के सहयोग से इसका आयोजन किया है। इस पहल का उद्देश्य माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों में शैक्षणिक विकास के साथ साथ भावनात्मक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आरोग्य को बढ़ावा देना है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल ट्रिनिडाड और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत से गिरमिटिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही ये परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

Chintan. किसी भी स्वाभिमानी व्यक्ति के लिए सोने की बेड़ियां लोहे की बेड़ियों से कम कठोर नहीं होंगी। चुभन धातु में नहीं वरन बेड़ियों में होती है। ये कथन महात्मा गांधी का है। ये था आज का चिंतन और अब भक्ति संगीत।

ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए अब आपको देते हैं जानकारी झरोखा के अंतर्गत आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। इस झरोखा के तुरंत बाद आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस का भाग 184। संगीत सरिता। इस कार्यक्रम में सुनिए श्रृंखला महिला रचनाकारों की बंदिशें का भाग 8। कलाकार गायिका विदुषी कल्पना जोकरकर, गायन सहभाग अनुजा।

जूकरकर। तबले पर संगत दी है यति भागवत ने और हारमोनियम पर ज्ञानेश्वर सोनव ने। इस कार्यक्रम का निवेदन किया ममता सिंह ने, प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। कार्यक्रम का समय होगा सुबह और शाम 6:45। भूले बिसरे गीत ये कार्यक्रम होगा सुबह 7:30 पर हम है राही प्यार के, और उसके बाद सुनिए 8:00 समाचार प्रभात। त्रिवेणी कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8:15 और दिन में 2:00। आलेख और स्वर शेफाली कपूर का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। चित्रों कार्यक्रम सुनिए सुबह 8:30 पर और 9:30 पर सुनिए आज के फनकार कार्यक्रम, केंद्रित होगा संगीतकार पंकज मलिक पर। इस कार्यक्रम को पुनः सुना जा सकता है रात्रि 9:30 पर। आज सुनिए विविधा कार्यक्रम दिन में 11:00 और दिन में 12:00 हिंदी में समाचार। दिन में 12:05 पर होगा कार्यक्रम यादों की महफिल, और दिन में 1:00 तय कीजिए सुरीला सफर विविध भारती के साथ। आपकी कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा और आपको भी हमारी इबारत का इंतजार जरूर होगा, तो जुड़िएगा इस कार्यक्रम में फेसबुक कमेंट्स द्वारा। दोपहर 2:15 पर सुनिए दोपहर के समाचार और 2:30 पर सदाबहार नगमे। मन चाहे गीत यानी कि आपके द्वारा भेजे गए खतों का कार्यक्रम आप सुन सकेंगे आज दिन में 3:00। आज दोपहर 3:30 पर नाट्य तरंग के अंतर्गत सुनिए के रघुपति के मूल नाटक का हिंदी अनुवाद पोस्टमैन का भाग 2। अनुवाद हिंदी अनुवाद किया है P.S. कृष्णस्वामी ने, निर्देशक महेंद्र मोदी। उजाले उनकी यादों के पिटारा के अंतर्गत सुनिए ये कार्यक्रम, निर्देशक रमेश तलवार से यूनुस खान की बातचीत का भाग 3, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। कार्यक्रम का समय दोपहर 4:00। तराने नए पुराने ये कार्यक्रम होगा शाम 5:30 पर, और यह कार्यक्रम चलेगा शाम 6:30 तक, लेकिन बीच में होंगे 6:00 हिंदी में समाचार। झरोखा कार्यक्रम झरोखा आप सुन सकेंगे शाम में 6:30 पर, जिसमें आपको दी जाएगी जानकारी शेष कार्यक्रमों की। संध्या रंजन कार्यक्रम का समय होगा शाम 6:35 और शाम 7:00 विशेष जयमाला में सुनिए सैनिकों की शौर्य गाथा, महावीर चक्र लेफ्टिनेंट कर्नल कुशल चंद से। इंद्रधनुष में सुनिए साज और आवाज बांसुरी वादक पारसनाथ। 7:45 होगा इस कार्यक्रम का समय। हवा महल के अंतर्गत सुनिए हास्य नाटिका यात्रा प्यारी लाल की, लेखन कल्पनाथ सिंह, निर्देशन चंद्र प्रभा भटनागर का। चित्रलोक कार्यक्रम होगा रात्रि 8:15 पर, समाचार संध्या 8:45 पर। आपके लिए कार्यक्रम आप सुन सकेंगे रात्रि 9:00 और छायागीत कार्यक्रम का समय होगा रात 10:00। आलेख और स्वर यूनुस खान का, प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र नेगी। ढलती जाए रात ये कार्यक्रम होगा रात 10:30 और रात 11:00। सुनिए विविधा। ये थी जानकारी आज दिन भर प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, और अब श्री रामचरित मानस गान का भाग 184 प्रस्तुत है।

पुत्र वियोग में राजा दशरथ का देहांत हो चुका है। शोक संतप्त अयोध्यावासी और महलों में रानियां विलाप कर रही हैं। सभी लोग कैकई की भर्त्सना कर रहे हैं, जिसने जैसे संसार भर की दृष्टि ही छीन ली है। किंतु जगत अपनी गति से चलता रहता है। कुलगुरु वशिष्ठ ने समयानुकूल वचनों द्वारा ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से सबके शोक का अंधकार दूर कर तेल भरी नौका में राजा के पार्थिव शरीर को रखवाया। फिर ननिहाल से भरत तथा शत्रुघ्न को तत्काल बुलाने के लिए दूत भेजे, किंतु उन्हें आदेश दिया कि वहां महाराज की मृत्यु का समाचार उन्हें न सुनाए। दोनों भाइयों से मात्र इतना कहना है कि कुलगुरु ने बुला भेजा है। इधर अयोध्या में जब से अनर्थ प्रारंभ हुए, तभी से भरत को अपशकुन होने लगे थे। उन्हें भयंकर स्वप्न आते और नींद उचट जाने पर अशुभ कल्पनाएं मन में जगने लगती थी। वो अनिष्ट शांति के लिए तरह तरह के उपाय करते, दान पुण्य तथा भगवान शंकर से माता पिता और भाइयों के कुशल क्षेम की प्रार्थना करते। दूतों से संदेश सुनकर दोनों भाई वायुवेग से अयोध्या लौट चले। नगर में प्रवेश करते ही चारों ओर उन्हें अपशकुन दिखने लगे।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम वंदन वार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा।

अब से कुछ ही देर में सुने आप संस्कृत में समाचार। 7 बजे का समय रहेगा राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का और 7:05 पर सुनिए अंग्रेजी में समाचार।

नारी मंच में सुनिए आज आप शक्ति प्रेम और त्याग और समर्पण का प्रप्राय मां मातृ दिवस पर विशेष कार्यक्रम प्रस्तुति रहेगी रश्मि जी की।

कार्यक्रम गीत गुंजन का समय रहेगा 2:30 पर। न्यू इंडिया समाचार स्पेशल में उसका समय रहेगा 3:00।

अभी आप सुन रहे थे आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में सुने आप संस्कृत में समाचार। इंतजार बस कुछ क्षण का।

0: प्रकल्पिते एकस्मिन् समारोहे सहभागं करिष्यति। श्रीमोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसरे नवनिर्मितस्य ध्यानमन्दिरस्य ध्यानकक्षस्य च उद्घाटनं करिष्यति। एतत् कार्यक्रमात् पूर्वं सः एकां सभां सम्बोधयिष्यति। समारोहात् अनन्तरं प्रधानमन्त्री हैदराबादे प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां अनेकासां विकास परियोजनानां शिलान्यासं लोकार्पणं च करिष्यति। श्रीमोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक वीथिकायां 67-100 संख्याके राष्ट्रिय राजमार्गे चतुर्भागपरक मार्ग निर्माणस्य आधारशिलां अपि स्थापयिष्यति। प्रधानमन्त्री वारंगले पीएम मित्रा पार्क इत्येतत् उद्यानम् अपि उद्घाटयिष्यति। अपि च सः हैदराबादे अत्याधुनिकं कर्करोगपरम् एकं चिकित्सालयम् अपि लोकाय अर्पयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी कर्णाटक तेलंगानयोः यात्रानन्तरम् अद्य गुजरातम् अपि गमिष्यति। द्विदिवसीय यात्रायाः प्रथमे दिने अद्य सः जामनगरं प्राप्नोति। तदनन्तरं द्वितीये दिने अर्थात् श्वः सः सोमनाथ मन्दिरस्य जीर्णोद्धारस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे आयोजिते सोमनाथामृत महोत्सवे सहभागं करिष्यति। प्रधानमन्त्री अनेकेषु धार्मिकेषु सांस्कृतिकेषु च कार्यक्रमेषु सहभागं करिष्यति। सुवेन्दुः अधिकारी ह्यः पश्चिम बंगालस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन शपथं गृहीतवान्। इत्थं पश्चिम बंगाले भाजपेति दलस्य प्रथमं प्रशासनं संघटितम्। कोलकातायां ब्रिगेड परेड ग्राउंड इति स्थले आयोजिते भव्ये समारोहे राज्यपालेन आर एन रविणा श्री सुवेन्दुः अधिकारी पदगोपनीयतायै प्रतिश्रावितः। तेन सह अन्ये पञ्चमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं गृहीतवन्तः। अत्रावसरे प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री रक्षामन्त्री भाजपा दलाध्यक्षः अनेके मुख्यमन्त्रिणः मन्त्रिणः वरिष्ठाधिकारिणश्च उपस्थिताः आसन्। टीडीके दलप्रमुखः सी जोसेफ विजयः तमिलनाडु राज्यस्य नूतन मुख्यमन्त्रित्वेन अद्य प्रातः 10 वादने शपथं ग्रहीष्यति। तेन सह अन्ये नवमन्त्रिणः अपि पदगोपनीयतायै शपथं ग्रहीष्यन्ति। तत्रान्तरे ह्यः नूतन सर्वकार रचनायै टीवीके दलेन प्रमाणितं यत् तत्पार्श्वे 20-100 विधायकानां समर्थनं वर्तते। प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजनायाः 25वीं वर्षपूर्तिम् उपलक्ष्य मध्यप्रदेशे सीहोर जनपदस्य भैरुन्ता स्थले अद्य रजत जयन्ती समारोहः आयोजयिष्यते। केन्द्रीय ग्रामीण विकास मन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अस्य कार्यक्रमस्य अध्यक्षतां करिष्यति। भारतीय ऋतुविभागेन आगामिषु द्वित्रेषु दिवसेषु केरल लक्षद्वीप दक्षिण कर्णाटक तमिलनाडु पुदुच्चेरी कराईकलेषु प्रचण्ड वृष्टेः सम्भावना प्रकाशिता। प्रिया श्रोतारः, संस्कृत जगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः सम्बलितस्य संस्कृत साप्ताहिकीति विशिष्ट कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने 12:30 भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडा वार्तासु, इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ जयपुरे आयोजिते द्वन्द्वे गुजरात टाइटन्स दलेन राजस्थान रॉयल्स दलं 77 धावनांकैः पराजितम्। आदौ पणं विजित्य राजस्थान रॉयल्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। ततः गुजरात टाइटन्स दलेन 30-200 धावनांकानां विजय लक्ष्यं स्थापितम्। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था के 45वें वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री तेलंगाना के हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में कुडेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन भी करेंगे। प्रधानमंत्री अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। कल श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार के 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल होंगे। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह 10 बजे चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। पार्टी के 9 मंत्रियों को भी शपथ दिलाए जाने की संभावना है। 234 सदस्यों के सदन में 120 विधायकों का समर्थन मिलने के बाद राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने श्री विजय को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। वीसीके और आईयूएमएल पार्टी ने समर्थन पत्र सौंप दिया है। इन दोनों दलों के 2-2 विधायक हैं। राज्यपाल श्री विजय को 13 मई या इससे पहले विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने को भी कहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। वे 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। वे 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री होंगे। केरला में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कर दी जाएगी। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आरएन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और 5 कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने हैदराबाद में स्कैमजेट कमस्टर का सफल परीक्षण किया है। परीक्षण में 1,200 सेकेंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। यह रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकेंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ उद्योग भागीदारों और शिक्षाविदों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए ठोस नींव बताया है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इससे समय पर वेतन और सामाजिक सुरक्षा अंशदान का उल्लंघन करने वाली कंपनियों के लिए प्रतिबंध और कड़े दंड का प्रावधान है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कल ट्रिनिडाद और टोबैगो में प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर के साथ नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप में भारत के गिरमिचिया श्रमिक पहली बार ट्रिनिडाद और टोबैगो पहुंचे थे। श्री जयशंकर ने नेल्सन द्वीप में क्विक इंपैक्ट प्रोजेक्ट का भी जायजा लिया। विदेश मंत्री ने कहा कि भारत के सहयोग से निर्मित की जा रही यह परियोजना दोनों देशों की साझा विरासत को संरक्षित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हराया। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरलम, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. At around 11 a.m., the Prime Minister will participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru and also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Mr. Modi will also address the gathering during the program. Thereafter, Prime Minister Narendra Modi will travel to Hyderabad at around 3 p.m. He will lay the foundation stone and inaugurate the multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. The sacred Somnath Temple is celebrating 75 years of the modern journey evolving into a global center of spirituality and sustainable tourism. With Prime Minister Narendra Modi set to grace the Somnath Amrit Parv, the temple has entered a golden era under his leadership as the chairman of the Somnath Trust. Beyond its religious significance, Somnath is emerging as a pioneer in environmental conservation, aiming to become India's first net zero temple. TVK Chief C. Joseph Vijay will be sworn in as Chief Minister of Tamil Nadu in Chennai at 10 this morning. 9 TVK ministers are also expected to be sworn in along with Mr. Vijay. Tamil Nadu Governor Rajendra Vishwanath Arlekar appointed Mr. Vijay as Chief Minister Designate after he secured the support of 120 MLAs in the 234-member House. Mr. Vijay was appointed CM after he presented letters of support from the VCK and IUML, who have 2 MLAs each. The Governor has directed Mr. Vijay to seek a vote of confidence in the Assembly on or before May 13, 2026. President Draupadi Murmu has appointed N. Rangasamy as the Chief Minister of Puducherry. Following the appointment, Lieutenant Governor K. Kailash Nathan invited Rangasamy to form a new government in the Union Territory. Mr. Rangasamy will be sworn in as Chief Minister on May 13th. Mr. Rangasamy is set to assume office as Chief Minister for a fifth term after the AINRC-led NDA secured a comfortable victory in the Union Territory election. The top brass of the Congress party held a meeting in New Delhi yesterday to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leaders Ramesh Chennithala and VD Satishan. The party said Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala chief minister and the name will be announced very soon. Union Home Minister Amit Shah will chair a high-level meeting in New Delhi today to review the country's preparedness for dealing with possible floods and heat wave conditions. During the meeting, Mr. Shah will assess the readiness of central government agencies, review early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss to property. The centre has moved to significantly strengthen protections for outsourced and contractual workers engaged across central ministries, departments, autonomous bodies and central public sector enterprises through a new set of procurement-linked compliance measures for the labour codes. The Ministry of Labour and Employment said the reforms aim to ensure timely payment of wages, mandatory remittance of social security contributions, greater accountability of contractors and principal employers, and stronger enforcement mechanisms against violations of labour laws. Defence Research and Development Organisation has successfully conducted an extensive long-duration test of its actively cooled full-scale scramjet combustor in Hyderabad. Ministry of Defence said that the test achieved a runtime of over 1,200 seconds, surpassing the earlier 700 seconds test held in January this year. The successful test positions India at the forefront of advanced aerospace capabilities and continuously emerging war technologies. In IPL cricket, today Chennai Super Kings and Lucknow Super Giants will clash at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 3:30 p.m. In the second match of the day, Royal Challengers Bengaluru will take on Mumbai Indians in Raipur at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
3: अभी आप सुन रहे थे अंग्रेजी में समाचार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का ही सार केंद्र है अब से कुछ ही देर में सुनते हैं हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग

नई सुबह नए सवेरे की शुरुआत आकाशवाणी सार कार्यक्रम लोक रंग के साथ। हरियाणा का जनजीवन लोक संस्कृति आपसी प्यार प्रेम भाईचारा लोक विधाएं हमारी संस्कृति की पहचान है। ये बोली भी श्री लोक विधाएं आज जीवंत करने की जरूरत है।

हरियाणा की लोक विधाएं, जिसमें सांग, गायन, लोकगीत, नाच गाना, चौपाल, वेशभूषा, पगड़ी, हस्तकला, व्यंजन से लेके तमाम लोक विधाएं हरियाणवी संस्कृति की बढ़िया पहचान रही हैं।

गीत संगीत शिक्षा सूचना और मनोरंजन के कार्यक्रम आकाशवाणी एसआर आपके लिए रोज लेके आकर ये कार्यक्रम आप प्रसार भारती की ऐप न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सके हैं।

फोन का सदुपयोग करना चाहिए, कृषि तकनीकों के बारे में, कृषि प्रशिक्षण के बारे में फोन तम जानकारी ले सके हैं। अगर हम खुद चलाना नहीं जानते तो हमारे बेटे, बालक, पोते या घर परिवार में जो भी बड़ा एंड्रॉयड फोन ले रहा है उससे आप पूरी जानकारी ले सके हैं।

ये सुना भाइयों, आज आप में हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम के तहत हरियाणवी गीत संगीत, इसी के साथ आज का हरियाणवी लोक रंग कार्यक्रम समाप्त हुआ। सारे बन भैया ने राम राम।

0: मेहरबान कदरदान बच्चे बूढ़े और जवान, सब बात की एक बात है सही, सिर्फ पैसे भेजने के लिए QR स्कैन करते हैं या पिन डालते हैं, पैसे मिलने के लिए नहीं।
1: RBI कहता है QR कोड स्कैन करते समय या पिन डालते समय थोड़ा ध्यान से।
2: कानूनी मदद और सलाह दिलाते, ले लो हमें सही राह दिखाते।
3: अब टेलीलॉ के माध्यम से न सिर्फ घर बैठे मुफ्त कानूनी सलाह ले सकते हैं, बल्कि अनुभवी वकीलों से कोर्ट में कानूनी सहायता भी पा सकते हैं।
4: तो डाउनलोड करें आज ही टेलीलॉ फॉर सिटीजंस मोबाइल ऐप, अथवा लॉगिन करें www.tele-law.in या अपने नजदीकी CSE सेंटर से संपर्क करें।
5: अभी आप सुन रहे थे हरियाणवी गीतों पर आधारित कार्यक्रम लोक रंग, FM बैंड 102.3 MHz पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब से कुछ ही देर में सुनिए कार्यक्रम सुप्रभात।

स्वागत है श्रोताओं आपका कार्यक्रम सुप्रभात में और मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त मीना ठकराल। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग की। आज है दिन रविवार का, शक संवत 1948 और मास वैसाख, पक्ष कृष्ण पक्ष और तिथि अष्टमी। सूर्योदय लगभग 5:52 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा 6:54 पर। चंद्रोदय लगभग रहेगा 1:11 पर। चंद्रास्त का समय रहेगा 12:37 पर। राहुल काल का समय रहेगा 5:15 पर शाम और 6:54 तक। और यमन काल रहेगा लगभग 12:24 से 2:04 पर। और अब सबसे पहले करते हैं हम ईश्वर की वंदना।

और अब बात करते हैं हिसार के मौसम की। आज मौसम गर्म और शुष्क रहने की संभावना है। अधिकतम तापमान लगभग 39 से 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान लगभग 25 से 27 डिग्री सेल्सियस। हल्की गर्म हवाएं चल सकती हैं। आसमान ज़्यादातर साफ रहेगा। और अब आज का सुविचार। जीवन में कभी यह मत सोचिए कि आप अकेले रह गए हैं, क्योंकि सच्चा संघर्ष वही होता है जहां इंसान खुद को पहचानना सीखता है। समय, परिस्थितियां और लोग भले ही बदल जाएं, लेकिन जो व्यक्ति अपने हौसले, अपने संस्कार और अपने सपनों को जीवित रखता है, उसे दुनिया की कोई भी कठिनाई रोक नहीं सकती। हर सुबह केवल सूरज की रोशनी ही नहीं आती, वह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नया अवसर और फिर से शुरुआत करने का साहस भी लाती है। कल यदि कठिन था, तो इसका अर्थ यह नहीं कि आने वाला समय कल भी वैसा ही होगा। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर दिन हमें खुद को बेहतर बनाने का एक और मौका देता है। मनुष्य की असली ताकत उसके धन या पद से नहीं, बल्कि उसके धैर्य और व्यवहार में होती है। क्योंकि कठिन समय में जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है, वह जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। पेड़ हमेशा फल आने पर झुकता है और महान व्यक्ति हमेशा विनम्र रहता है। अहंकार इंसान का क्षण भर का सम्मान दिला सकता है, लेकिन विनम्रता उसे हमेशा लोगों के दिलों में जगह देती है। जब जीवन में रास्ते कठिन लगें, जब मेहनत का परिणाम तुरंत दिखाई ना दे, जब लोग आपकी क्षमता पर संदेह करें, तब रुकिए मत, क्योंकि नदी में कभी रास्ता पूछकर अपना मार्ग नहीं बनाया, उसने निरंतर बहकर पत्थरों के बीच भी अपना रास्ता स्वयं बना लिया। इसी प्रकार निरंतर प्रयास करने वाला व्यक्ति एक दिन अपनी मंजिल अवश्य प्राप्त कर लेता है। हमेशा याद रखिए, मीठे शब्द, सच्चा हृदय और अच्छा व्यवहार ऐसी दौलत है जो कभी कम नहीं होती। आपकी छोटी सी मुस्कान किसी के पूरे दिन को सुंदर बना सकती है। इसीलिए जहां भी जाइए, प्रेम, सम्मान, सकारात्मकता बांटते चलिए। कभी अपने सपनों को छोटा मत समझिए, क्योंकि बड़ा वृक्ष भी कभी एक छोटा सा बीज था। यही मेहनत सच्ची है।

0: नियत साफ हो तो मन में विश्वास हो तो समय अवश्य बदलता है। इसीलिए हर परिस्थिति में मुस्कुराइए, अपने कर्म करते रहिए, माता पिता और ईश्वर का सम्मान कीजिए और विश्वास रखिए कि जिस दिन आपका समय बदलेगा उस दिन आपकी मेहनत ही आपकी सबसे बड़ी पहचान बनेगी।
1: सुने तो जानू मेरी विनती, सुने तो जानू।
0: और अब लेते हैं एक श्रीमद् भागवत गीता का श्लोक। वासासी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहणाति नरोपराणि तथा शारीरिणी व्याहे जीर्णा। इसका अर्थ है, इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण आत्मा को अमरता का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार मनुष्य अपने पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने और जर्जर शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यह श्लोक हमें जीवन का सबसे गहरा सत्य समझाता है कि शरीर नश्वर है लेकिन आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। मनुष्य अक्सर अपने शरीर रूप और संसार में इतना जुड़ जाता है कि मृत्यु या परिवर्तन से भयभीत होने लगता है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। और अब एक दूसरा श्लोक। उद्धरे दात्मनात्मनम नात्मनम वासद्यते आत्मे हतवंतो बंधु आत्मे रिपुतानमनम। इसका अर्थ है, इसमें श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य को आत्मबल और आत्मनियंत्रण का महत्व समझाते हैं। वे कहते हैं कि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र और स्वयं ही अपना शत्रु है। यदि व्यक्ति अपने मन को सही दिशा देता है, अच्छे विचार अपनाता है और स्वयं पर विश्वास रखता है तो वही मन उसे सफलता और शांति की ओर ले जाता है। यदि मन नकारात्मकता, आलस्य,

से क्रोध और भय से फंस जाए तो वही मन मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जीवन में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, संदेह और कमजोरियों से होती है। जो व्यक्ति स्वयं को संभालना सीख लेता है वह हर कठिन परिस्थिति में भी मजबूत बन जाता है। आज के समय में लोग छोटी छोटी असफलताओं से टूट जाते हैं, दूसरों की बातों से निराश हो जाते हैं, लेकिन गीता कहती है कि यदि आपका मन आपके साथ है तो दुनिया की कोई शक्ति आपको हरा नहीं सकती। इसीलिए हमेशा अपने विचारों को सकारात्मक रखिए, अपने मन को अनुशासन में रखिए और स्वयं को कभी कमज़ोर मत समझिए, क्योंकि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसके भीतर ही छिपी होती है।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुप्रभात एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। कुछ ही देर में हम सुनते हैं समाचार प्रभात। इंतजार बस कुछ क्षण का।
1: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वह हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ चार श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान अविकास संगठन ने स्क्रामजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की और ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 9 भारतीय महिला मुक्केबाज फाइनल में। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की 45

0: दिल्ली से वर्षगांठ समारोह में शामिल होंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित करेंगे और यहां पर नए ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी करेंगे। फाउंडेशन द्वारा संचालित समाज सेवा से जुड़े कार्यक्रम का उद्घाटन भी उनके द्वारा होगा। आर्ट ऑफ लिविंग केंद्र जाने के पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट के बाहर बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। कर्नाटक विधानसभा के विपक्ष के नेता आर अशोका ने बताया कि विभिन्न राज्यों में पार्टी की जीत के कारण अभिनंदन कार्यक्रम भी आयोजित किया गया है। प्रधानमंत्री के आगमन के संदर्भ में बेंगलुरु पुलिस ने वाहन संचार पर कुछ पल के लिए रोक लगाई है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु।
0: प्रधानमंत्री इसके बाद तेलंगाना के हैदराबाद में कई विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज HICC में आयोजित कार्यक्रम दौरान 9,400 करोड़ की विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे, जिनमें मुख्य रूप से जहीराबाद इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी और वारंगल में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क की आधारशील रखना शामिल है। इसके साथ ही वह काजीपेट विजयवाड़ा रेलवे ट्रिपलिंग परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। जनसभा और सरकारी कार्यक्रमों के समापन के बाद प्रधानमंत्री जामनगर के लिए प्रस्थान करेंगे। श्रीनिवास मंकाली, आकाशवाणी न्यूज, हैदराबाद।
0: ऐतिहासिक सोमनाथ मंदिर आध्यात्मिक पर्यटन के वैश्विक केंद्र के रूप में अपनी यात्रा के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले शून्य उत्सर्जन वाले मंदिर के रूप में स्थापित होना है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: मिशन लाइफ पहल के तहत सोमनाथ मंदिर फूलों के कचरे को खाद में और प्लास्टिक कचरे को पेवर ब्लॉक्स में बदलकर स्थिरता के नए मानक स्थापित कर रहा है। इतना ही नहीं, आधुनिक सोयस ट्रीटमेंट प्लांट, वर्षा जल संचयन प्रणाली और मियावाकी वनों के माध्यम से ट्रस्ट तेजी से नेट जीरो कार्बन फुटप्रिंट की दिशा में आगे बढ़ रहा है। डिजिटल पहलों ने अब दुनिया भर के श्रद्धालुओं को घर बैठे पूजा बुक करने और प्रसाद प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की है। वंदे भारत एक्सप्रेस और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों जैसी विश्व स्तरीय बुनियाद ढांचे की कनेक्टिविटी के साथ ही देश और दुनिया भर से प्रतिवर्ष 97 लाख से अधिक श्रद्धालु सोमनाथ के दर्शन के लिए आते हैं। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: तमिलनाडु में तमिलगढ़ वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय को आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। शपथ ग्रहण समारोह चेन्नई के नेहरू इंडोर स्टेडियम में होगा। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर श्री विजय और 9 मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह के लिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है और बड़ी संख्या में लोगों के चेन्नई पहुंचने की संभावना है।
4: TDK की जीत के नायक सी जोसेफ विजय आज चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विजय ने फिल्म नालैया थिरुप्पू से फिल्म जगत में प्रवेश किया। बाद में उन्होंने कई ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम किया। इनमें कई राजनीतिक पृष्ठभूमि से जुड़ी फिल्में भी शामिल है। यह चुनाव मुख्य रूप से युवाओं और 45 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं के बीच था। इस बार उन लोगों ने भी वोट किया जो कभी अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करते थे। सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद TDK को 108 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि यह बहुमत सिद्ध करने के लिए काफी नहीं था, लेकिन फिर भी जोसेफ विजय कांग्रेस VC के वामपंथी दलों और IUML के समर्थन से बहुमत हासिल करने में कामयाब रहे। विजय इतिहास रचते हुए पहली बार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विजय ने उंगा विजय नान वारन के नारे के साथ विजय ने ये चुनाव जीता है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं इशिका।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को केंद्र शासित प्रदेश में नए सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया। एक रिपोर्ट।
5: एन रंगासामी 13 मई को पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। विधानसभा चुनाव में AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन की शानदार जीत के बाद श्री रंगासामी रिकॉर्ड 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में श्री रंगासामी थट्टन चावड़ी और मंगलम विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित हुए। शुक्रवार को श्री रंगासामी ने उपराज्यपाल से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। उन्होंने निर्वाचित विधायकों के समर्थन पत्र भी प्रस्तुत किए, जिनमें सरकार बनाने की अनुमति मांगी गई है। 30 सदस्यीय विधानसभा में NDA को 18 विधायकों का समर्थन प्राप्त हुआ है। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: केरल में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी

0: के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। पार्टी ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा की जाएगी। असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक आज सुबह 9 बजे गुवाहाटी में होगी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: भाजपा विधायक दल की यह बैठक भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक जगत प्रकाश नड्डा और सह पर्यवेक्षक नायब सिंह सैनी की उपस्थिति में होगी। बैठक के बाद इसी स्थान पर एनडीए विधायक दल की बैठक आयोजित की जाएगी। इसके बाद एनडीए विधायक दल सरकार गठन का दावा पेश करने के लिए राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात करेगा। इस बीच 12 मई को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह के लिए तैयारियां की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की संभावना है। इसके अलावा कई केंद्रीय मंत्रियों और विभिन्न भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी इस हाई प्रोफाइल कार्यक्रम में आमंत्रित किया है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल आर एन रवि ने कल कोलकाता में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी और पांच कैबिनेट मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। एक रिपोर्ट।
4: नए नियम में प्रवेश स्तर से लेकर सबसे अनुभवी स्तर तक 4 श्रेणियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाने का प्रस्ताव है। सरकार का तर्क है कि वर्तमान वेतन स्तर 20 वर्ष पहले तय किए गए थे और अमेरिकी श्रमिकों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान नहीं करते। इस नियम के अंतर्गत 26 मई तक लोगों से सुझाव मांगे गए हैं। प्रवेश स्तर के श्रमिकों के लिए वर्तमान वेतन बढ़ाकर $97,700 से अधिक करने का प्रस्ताव है। ये पुरानी दरों से करीब 43% अधिक है। वर्तमान प्रणाली से नियुक्ता विदेशियों को समान रूप से कार्यरत अमेरिकी कर्मचारियों की तुलना में काफी कम वेतन पर नियुक्ति कर लेते हैं। प्रस्तावित परिवर्तन से H1B, H1B1, E3 और PERM श्रम प्रमाणन कार्यक्रमों में लागू वर्तमान वेतनमान में वृद्धि होगी। समाचार कक्ष से मुकेश कुमार।
0: रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्क्रामजेट कमस्टर का सफल परीक्षण कर हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की है। एक रिपोर्ट।
5: इस सफल परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। सफल परीक्षण से भारत उन्नत एरोस्पेस क्षमता और लगातार उभरती युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इससे भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। कम्बस्टर को DRDO ने उद्योग भागीदारों के सहयोग से विकसित किया है। इसमें स्वदेशी रूप से विकसित तरल हाइड्रोजन ईंधन और उन्नत थर्मल बैरिंग कोटिंग तथा आधुनिक विनिर्माण तकनीकों का उपयोग किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO और उद्योग भागीदारों की सराहना करते हुए इस उपलब्धि को देश के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल कार्यक्रम के लिए महत्वपूर्ण बताया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
0: गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ और लू से निपटने की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। बैठक के दौरान श्री शाह राहत और बचाव उपायों में केंद्रीय सरकारी एजेंसियों की तत्परता का आकलन करेंगे। शुरुआती चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की भी समीक्षा की जाएगी ताकि जान माल का नुकसान कम से कम किया जा सके। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने ट्रिनिडाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर के साथ दक्षिण ट्रिनिडाद में एक कृषि प्रसंस्करण केंद्र का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत की सीड्स पहल के अंतर्गत संचालित ये केंद्र ट्रिनिडाद और टोबैगो के लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करेगी और कृषि क्षेत्र को नई गति देगी। और अब खेल खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
6: ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत की 9 महिला मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गई हैं। अंडर 15 में अक्षिता ने 30 से 33 किलो में अंजी

0: इन्हें 37 किलो में और सोनिया ने 40 किलो में जीत हासिल की। तन्वी ने 43 किलो में, हंसिका अत्री ने 46 किलो में और सुनैना ने 58 किलो में तथा भूमिका ने 61 किलो और तन्वी ने 64 किलो में जीत हासिल की। इसके अलावा आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। दूसरे मैच में रायपुर में शाम 7:30 बजे से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। प्रतियोगिता में कल जयपुर में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से मात दी।
1: मौसम विभाग ने आज केरलम, माहे, लक्षद्वीप, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ इलाकों में आंधी आने की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है फरहत नाज।
2: धन्यवाद लवलीन। शुभेंदु अधिकारी के पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर हिंदुस्तान ने लिखा है, शुभेंदु के साथ बंगाल में भाजपा युग आरंभ। दैनिक जागरण के अनुसार इतिहास के पन्नों में शनिवार को एक ऐसी इबारत लिखी गई जिसकी कल्पना भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने दशकों पहले की थी। पत्र ने इसे शीर्षक दिया है, 74 साल में पहली बार भगवा बंगाल। तमिलनाडु में राजनीतिक अनिश्चित समाप्त। अभिनेता से राजनेता टीवी के प्रमुख के आज शपथ लेने की खबरें सभी अखबारों में हैं। अमर उजाला की सुर्खी है, तमिलनाडु में कल सारे दिन चली राजनीतिक गतिविधियों को फिल्मी सीन बताते हुए लिखा है, दिन भर चला सस्पेंस, शाम को ऐलान के बाद जश्न। केंद्र सरकार द्वारा चारों नए लेबर कोड से जुड़े नियम नोटिफाई करने को नवभारत टाइम्स ने प्रमुखता से देते हुए 48 घंटे से ज्यादा काम नहीं लिया जा सकेगा, अतिरिक्त काम कराने के लिए कर्मचारी की सहमति जरूरी होगी और ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से करना होगा। एयर डिफेंस को चकमा देने वाली विशेष मिसाइल का कल सफल परीक्षण किए जाने पर हिंदुस्तान लिखता है, एक बार में कई दुश्मनों को भस्म कर देगी अग्नि मिसाइल। पत्र ने इसे आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते कदम बताया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस के अवसर पर गूंजे मंत्र, हिंदू परंपरा से शांति पाठ, राजस्थान पत्रिका में है। पत्र लिखता है कि इसकी शुरुआत 1952 अमेरिकी कांग्रेस के कानून के अंतर्गत हुई थी। अमर उजाला की ये खबर चिंतित करती है, इतिहास का सबसे गर्म अप्रैल, विशेषज्ञों के अनुसार दुनिया अब पेरिस समझौते में तय 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा के करीब पहुंच रहे हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में चरम मौसमी घटनाएं और गंभीर हो सकती हैं। नवभारत टाइम्स की खास खबर है, डायनासोर के बाद गधों की बारी, घट रही आबादी। पत्र ने इसे अस्तित्व का संकट बताते हुए लिखा है कि सरकार ने गधों की घटती आबादी पर चिंता जाहिर करते हुए इनके संरक्षण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। आज मदर्स डे पर सभी अखबारों ने विशेष आलेख लिखे हैं। दैनिक भास्कर लिखता है, माँ होने का हक बच्चों को मुश्किल से बचाना नहीं लड़ना भी सिखाना है।
3: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। वे हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय आज सुबह तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। केंद्र ने नियमों के प्रकाशन के साथ 4 श्रम संहिताएं लागू की। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने स्क्रैमजेट कम्स्टर के सफल परीक्षण से हाइपरसोनिक मिसाइल विकास में बड़ी सफलता हासिल की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं इस आरक्षण फिल्म के इस गीत के साथ, जिसे गाया है श्रेया घोषाल और मोहित चौहान ने। रचना है प्रसून जोशी की, शंकर एहसान लॉय की धुन।

0: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

मैं और एक तू। इस फिल्म का गीत सुनिए अमित त्रिवेदी, शिल्पा राव, निखिल डिसूजा और अमिताभ भट्टाचार्य की आवाजों में। इस गीत को लिखा है अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत अमित त्रिवेदी का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं सोना मोहापात्रा रविंद्र उपाध्याय की आवाजों में तलाश फिल्म का गीत। जावेद अख्तर ने इसकी शब्द रचना की है, राम संपत ने इसकी लय बनाई है।

Anybody Can Dance यानी कि एबीसीडी इस फिल्म का गीत सुने मोहित चौहान प्रिया पंचाल के का गाया ये गीत साथ दिया है तन्वी शाह और डेनी स्क्वरीज ने और इस गीत को लिखा है मयूरपुरी ने सागर जिगर का संगीत

और आइए अब आपको सुनवाते हैं अर्श किंग शिल्पा राव और शेखर रवि जानी की आवाजों में। ये गीत बैंग बैंग फिल्म से अन्विता दत्त और कुमार का लिखा, विशाल शेखर का संगीतबद्ध किया हुआ।

विविध भारती से प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। आप सुन रहे हैं आज नए गीत। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें पूरी दुनिया का सुकून छिपा होता है। वो खुद थक जाती है लेकिन हमारी थकान पहचान लेती है। हमारी छोटी सी खुशी के लिए अपने बड़े बड़े सपने चुपचाप समेट लेती है। मदर्स डे या मातृ दिवस सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि उस निस्वार्थ प्रेम को धन्यवाद कहने का अवसर है जो बिना किसी शर्त के हर पल हमारे साथ खड़ा रहता है। तो आज थोड़ा

वक्त अपनी माँ के नाम कीजिए, उनसे कहिए आप हैं तभी मेरी दुनिया खूबसूरत है। सभी माताओं को मदर्स डे की ढेरों शुभकामनाएं। और आइए अब आपको सुनाते हैं यारिया फिल्म का ये गीत। अनुपम अमोद की आवाज, इरशाद कामिल की रचना, धुन बनाई है अनुपम अमोद ने।

0: फुकरे फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना सोना महापात्रा की आवाज में। इस गीत को राम संपत ने सुरों में ढाला है।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा बड़ों की देख कर दुनिया

0: शानदार शख्सियत।
1: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
0: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
1: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने चरण से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
0: कुछ बेमिसाल किस्से,
1: मैंने पढ़ा जाने की उड़ान बाकी, इस पर इंडिया में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
0: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: जाने के

बाजीराव मस्तानी फिल्म का ये गीत है पंडित बिरजू महाराज और श्रेया घोषाल की आवाजें। सिद्धार्थ गरिमा ने इसे लिखा है और इसकी धुन बनाई है तभी पारिक, साहिल, प्रीतेश और संजीव सेन ने।

चित्रलोक कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए मोनाली ठाकुर का गाया ये गीत दम लगा के है शाह। इस फिल्म से वरुण ग्रोवर ने इस गीत को लिखा है, अनु मलिक की धुन।

अ फ्लाइंग जेट, इस फिल्म का गीत सुनिए सुमिधा करमे की आवाज में। प्रिया सरारिया का लिखा ये गीत, सचिन जिगर की आवाज़।

0: हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, पूरा गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: और इसी के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर।

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क देवेंद्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेन्द्रनाथ टैगोर से रवींद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रवींद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

0: 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।
1: ये

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्य की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रही और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।
1: दो नैना मतवाले तिहारे

1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

विधे देवी कल्याण विधे

एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जानी मानी गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

0: साउंड कैमरा एक्शन।
1: दोस्तों नमस्कार, बॉम्बे टॉकीज कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस
2: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम आज के फनकार। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का ही सार केंद्र है। प्रस्तुत है महिलाओं पर आधारित कार्यक्रम नारी मंच, जिसके अंतर्गत मातृ दिवस पर विशेष कार्यक्रम शक्ति प्रेम और त्याग का पर्याय माँ, जिसे पेश कर रही हैं रश्मि।

0: आपको नैनो उर्वरकों का कमाल।
1: कार्यक्रम नारी मंच पे स्वीकार कीजिए बहनों अपनी रेडियो सखी रश्मि का प्यार भरा नमस्कार। आज है रविवार 10 मई और मनाया जा रहा है पूरी दुनिया में माताओं को समर्पित मातृ दिवस। शक्ति, प्रेम और बलिदान, इसको सम्मानित करने पर केंद्रित है ये दिवस। मां बनना एक अलग एहसास, एक जिंदगी को दुनिया में लाने की जो जिम्मेदारी कुदरत ने दी है बहनों को, वो उसे निभाती हैं और उसको निभाते हुए अपना जीवन समर्पित कर देती हैं। पीढ़ियों को आकार देने वाली जिम्मेदारी होती है एक मां की। शक्ति, प्रेम और बलिदान का पर्याय होती है मां, और मां के बलिदान उसकी यादों को समर्पित इस दिन पर हम सुना रहे हैं आपको कुछ ऐसी बातें जिसमें एक 5 साल

0: की बच्ची जो अपनी माँ को किस तरीके से याद करना चाहती है, कैसे कर रही है, और इसी के साथ में लगभग उम्र के 7 दशक देख चुके एक ऐसे सज्जन जो आज भी अपनी माँ को कितना याद, किस अंदाज में करते हैं, वही कुछ आपको सुनवाएंगे। तो आज प्रणीका, अनुराधा जी, ऋतु कौशिक, जगदीप भार्गव जी, तरुणा जी और डॉक्टर गुंजन गोयल के साथ डॉक्टर विभोर कैसे याद करती हैं अपनी माँ को, आइए सुनवाते हैं।
1: मेरा नाम प्रणीका है। हमारी मम्मा जब हम बीमार होते हैं, हमारी मम्मा हमारे पास बैठकर हमारी केयर करती है। जब हमें भूख लगे तो हम उसे खा सके, इसीलिए हमारी मम्मा हमारे लिए टिफिन बनाती है। हमारी मम्मा रोज सुबह उठकर हमें प्यार से जगाती है, तैयार करकर स्कूल भेजती है। हमारी मम्मा हमें स्कूल इसलिए भेजती है ताकि हम अच्छे इंसान बन सके। आज मैं आपको एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मामा तेरी परछाई हो। मामा तेरी नन्ही सी दुनिया तेरी ही परछाई हो, तेरी गोदी की खुशबू से ही मैं हर दिन मुस्काई हो। जब भी मैं गिर जाती हूँ तू मुझे उठाती है, मेरी हर छोटी खुशी पर तू सबसे पहले आती है। तेरे बिना ये जीवन मेरा जैसे अधूरी कहानी है। माँ तू ही मेरी ताकत, तू ही मेरी जिंदगानी है। मैं बस डे पर बस इतना कहूँ, माँ मैं तुझसे बहुत प्यार करूँ, हर जन्म में तू मिले बस यही दुआ मैं बार बार करूँ। आपका धन्यवाद, हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू।
2: माँ एक ऐसा शब्द जिसको बोलते ही ना जाने कितनी यादें आंखों के सामने आ जाती हैं। माँ एक शब्द है, एक एहसास है, एक साथ है जो कभी भी आपसे अलग नहीं होता। मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं है पर फिर भी हर समय मेरे साथ है। दिन में ना जाने कितनी बार वह याद आ जाती हैं। मन में आता है मम्मी ने ऐसा कहा था, उन्होंने ऐसा बताया था, ऐसे बनाया था। मेरी माँ देखने में खूबसूरत स्मार्ट व्यक्तित्व वाली महिला थी। अच्छा पहनना, ओढ़ना, अच्छा लगना उनका शौक था। खाना बनाने में कढ़ाई, बुनाई, सिलाई हर चीज में माहिर थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की पढ़ी हुई, हिस्ट्री में मास्टर्स, उनके व्यक्तित्व पर इस सब की छाप थी। लगता है कि उनके कंपैरिजन में हमें तो कुछ भी नहीं आता। माँ आप कैसे घर का, बाहर का सारा काम परफेक्ट टाइम मैनेजमेंट के साथ कर लेती थी। हमने इंसानियत का पाठ भी उनसे ही पढ़ा, गरीब परिवारों की मदद करना, उनके बच्चों की शिक्षा और वोकेशनल ट्रेनिंग देकर उन्हें स्वावलंबी बनाने में पूरा योगदान देती थी। अपने जीवन जीने की कला से ही हमें बहुत कुछ सिखा गई। हमारी प्रेरणा, हमारी रक्षक, हमारी टीचर, हमारी मार्गदर्शिका, सब कुछ तो थी वह। उनके लिए थी शब्द का इस्तेमाल करना खटकता है क्योंकि वह तो हर पल हमारे साथ हैं। उनका आशीर्वाद हमारा सुरक्षा कवच है।
3: नमस्कार श्रोताओं, आकाशवाणी हिसार के स्नेहल मंच से आप सभी को सादर प्रणाम। आज का दिन बहुत ख़ास है क्योंकि आज हम मना रहे हैं मदर्स डे, वो दिन जो समर्पित है उस शख्सियत को जिसका नाम लेते ही दिल अपने आप झुक जाता है, जिसे हम कहते हैं माँ। माँ सिर्फ एक शब्द नहीं, ये एक पूरा संसार है, एक ऐसा एहसास जो जन्म से पहले ही हमारे साथ जुड़ जाता है। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो सबसे पहली आवाज़ जो हमें सुकून देती है वो माँ की होती है, और शायद आखिरी तक जो साथ निभाती है वो भी माँ ही होती है। माँ की ममता किसी किताब में नहीं मिलती, माँ का प्यार किसी तराजू में नहीं तौला जा सकता। वो हमारी हर खामोशी को समझती है, बिना कहे हमारी हर जरूरत जान लेती है, हमारी एक मुस्कान के लिए अपनी हर खुशी कुर्बान कर देती है। मेरी माँ मेरे लिए पूरी दुनिया है। मेरी माँ का नाम शांति शर्मा है। जो प्यार, ममता, सुरक्षा उन्होंने मुझे दी है वो कोई नहीं दे सकता था। खुद को पीछे रखकर उन्होंने मुझे और मेरे भाई बहन को हमेशा आगे रखा। ये जीवन उन्होंने मुझे दिया, यही अनमोल भेंट है मेरे लिए। मुझे लगता है जितना माँ अपनी संतान के लिए सोचती है दुनिया में कोई नहीं सोच सकता।

दुनिया में माँ ही एक ऐसी है जो निस्वार्थ होकर अपने बच्चों को प्यार करती है। माँ के लिए धन्यवाद जैसा शब्द बहुत छोटा है। मैं तो चाहूंगी कि मुझे जितने भी जन्म मिले, हर जन्म में वो ही मेरी माँ हो। माँ के नाम किसी शायर की ये पंक्तियां कहना चाहूंगी कि लेती नहीं दवाई अम्मा, जोड़े पाई पाई अम्मा, दुख थे पर्वत राई अम्मा, हारी नहीं लड़ाई अम्मा, दुनिया के सब रिश्ते ठंडे, गर्मा गर्म रजाई अम्मा, जब भी कोई रिश्ता उधड़े, करती है तुरपाई अम्मा, बाबूजी तनखा लाए बस, लेकिन बरकत लाई अम्मा, बाबूजी थे छड़ी बेंत की, माखन और मलाई अम्मा, बाबूजी के पांव दबाकर सब तीरथ हो आई अम्मा, सभी साड़ियां छीज गई थी मगर नहीं कह पाई अम्मा, बेटी की ससुराल रहे खुश, सब सेवर दे आई अम्मा, अम्मा से घर घर लगता है, घर में घुली समाई अम्मा, सभी पराये हो जाते हैं, होती नहीं पराई अम्मा, होती नहीं पराई अम्मा।

0: मैं स्वयं को बहुत भाग्यशाली मानता हूं कि मुझे अपनी मां का साया अपने जीवन के लगभग 68 वर्षों तक मिला। 3 वर्ष पहले वे इस दुनिया से विदा हो गईं, लेकिन सच कहूं तो उनका जाना कभी पूरी तरह से जाना नहीं लगा। आज भी मैं उनके प्रेम, उनकी ममता और उनके आशीर्वाद की सुगंध को महसूस करता हूं। मां सिर्फ एक रिश्ता नहीं होती, वो एक शक्ति होती है, एक मार्गदर्शक होती है जो हर परिस्थिति में अपने बच्चे के लिए केवल अच्छा ही चाहती है। हर मां की एक इच्छा होती है कि उसका बच्चा एक अच्छा इंसान बने, जो अपने लिए अच्छा करे और समाज में भी अच्छाई फैलाए। अगर कुछ लोग भटक जाते हैं तो उसके पीछे कई और कारण होते हैं, पर एक मां का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए पवित्र ही रहता है। मेरी मां ने जो मुझे सिखाया वही मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। उन्होंने सिखाया कि सच्चाई में शक्ति होती है, सीधे और सरल रहना ही सबसे बड़ा गुण है, और ईमानदारी इंसान की असली पहचान है। आज जब मैं 71 वर्ष की उम्र में इस मदर्स डे पर उन्हें याद करता हूं तो मन कृतज्ञता से भर जाता है। उन्होंने मुझे सिखाया कि हमेशा जिज्ञासु बने रहो, सीखने के लिए कभी बूढ़े मत बनो, जीवन को महसूस करो, उसे सराहो, हर पल को जी भर के जियो। उन्होंने सिखाया हंसना, रिश्तों को निभाना, दर्द को सहना और घावों को भरना, अपनों को अपनाना और जीवन में आगे बढ़ते रहना, मदद करना, क्षमा करना, जाने देना और जब जरूरत हो तो सॉरी कहना। सबसे बड़ी बात उन्होंने सिखाया कि अपने सच्चे स्वरूप को पहचानो और उसे खुलकर जियो। आज वो मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनके संस्कार, उनके विचार मेरे हर कदम में, मेरे हर निर्णय में मेरे साथ हैं। मां कभी दूर नहीं जाती, वो हमारे अंदर, हमारी सोच में, हमारे हर अच्छे कर्म में जीवित रहती है। इस मदर्स डे पर मैं अपनी मां को नमन करता हूं और दिल से कहता हूं, धन्यवाद मां, मुझे वह इंसान बनाने के लिए जिस पर आप हमेशा गर्व कर सके।
1: सभी सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम तरुणा नांदा है और मैं एक पाक कला विशेषज्ञ हूं। आज मदर्स डे है और मां के बारे में कहना बहुत ही कठिन है, क्योंकि हम मां से बने हैं, उन्हीं का ही एक अंश है और वो कहीं दिल में हर वक्त, हर आहट में, हर जगह हमारे साथ रहती है। और आज जब मैं माँ के बारे में बात कर रही हूं तो 3 रिश्ते एक साथ बोल रहे हैं मेरे अंदर। एक बेटी का, जिसकी माँ अब दुनिया में नहीं है, यानी मैं, हर मदर्स डे पर सबसे पहले उनकी याद आती है, उनकी साड़ी की खुशबू, सुबह की चाय के साथ उनकी डांट, बुखार में माथे पर उनका हाथ, सब कुछ जैसे कल की ही बात हो। माँ आप नहीं है तो क्या हुआ, आपकी दी हिम्मत तो मेरे साथ है। दूसरी, मैं एक माँ भी हूं, जब मेरी बेटी और मेरे बेटे पैदा हुए, पहली बार समझ में आया कि मेरी मां ने मेरे लिए क्या क्या सहा होगा। रात रात भर जाग

0: बातचीत सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ऐसे अच्छे अच्छे कलाकार, ऐसे अच्छे अच्छे इंसान क्यों इतनी जल्दी चले जाते हैं।
1: सच में।
0: खैर, ईश्वर की मर्जी के आगे तो कुछ चलता नहीं। एक और बहुत ही अच्छे कलाकार जिनका मैंने जिक्र किया, सज्जन
1: जी,
0: जिनको सज्जन कुमार भी कहते रहे हैं, सज्जन के नाम से ज्यादा फेमस रहे वो। मैं ये बता दूं आपको कि सज्जन साहब के जो फैंस हैं वो सिर्फ उम्रदराज लोग नहीं हैं, सज्जन साहब के फैन तो छोटे छोटे बच्चे भी रहे हैं।
1: उसकी वजह बहुत अच्छे से हमारे श्रोता समझते हैं, जानते भी हैं। एक जमाने में एक सीरियल आया करता था टेलीविजन का, जिसमें सज्जन साहब ने रोल किया था राजा विक्रमादित्य के, जो कांधे पे चढ़े हुए बेताल का।
0: जी,
1: मुझे लगता है एक बार उसका म्यूजिक हम अपने श्रोताओं को सुना दें तो जरा वो भी उस दौर में चले जाए।
0: सिर्फ म्यूजिक क्यों, हम सज्जन साहब की आवाज भी सुनवाएंगे आपको। फिलहाल उस म्यूजिक को सुन लीजिए, क्योंकि उससे ही आपको बड़ा मजा आ जाएगा।

0: जिन और सज्जन साहब की आवाज में वो जो डायलॉग है ना उनका, वो बच्चे बच्चे की जुबान पे था, और आज भी हमें विश्वास है कि आपको वो सीन याद आ गए होंगे और एक बार दोबारा आप उसे देखने को फिर से लालायित हो जाएंगे।
1: इनका पूरा नाम मनीषा जी सज्जन लाल पुरोहित था और 15 जनवरी 1921 में ये जयपुर में पैदा हुए थे। और वो दौर जो था वो अंग्रेजों के जमाने का दौर था, ब्रिटिश लोगों का राज था, और इनको लेकिन जो सबसे ज्यादा इनका जो मन था फिल्मों की तरफ ये झुकाव शुरू से रहा और ये गीतकार बनना चाहते थे
0: जी।
1: और इस चक्कर में 1941 में ये जयपुर से कलकत्ता चले गए, क्योंकि उस दौर में कलकत्ता में फिल्में बना करती थी, आप बेहतर जानते हैं।
0: गढ़ गढ़ था उस समय फिल्मों का
1: जी, जी जी और ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेजों की थी उस समय वहां उनकी लेबोरेटरी वगैरह भी थी, और ये यही वो दौर था जबकि इनको मासूम, चौरंगी इन फिल्मों में काम मिला, लेकिन वहां इनका मन ज्यादा लगा नहीं और वहां से ये आ गए मुंबई। और यहां आकर उस समय के बहुत ही नामी निर्देशक केदार शर्मा साहब से इनकी मुलाकात हो गई। बस मुलाकात इनसे हुई, उसके बाद जो एक और बड़े कलाकार थे गजानन जागीरदार साहब,
0: जी हाँ।
1: जिनके बारे में ज्यादा क्या कहें, सब
0: क्या
1: लोग जानते हैं उनको,
0: ऐसे बड़े बड़े नाम जी।
1: और उसके बाद तो इनकी गाड़ी जो है वो चल पड़ी। इनकी शुरुआत हुई थी सिर्फ 35 रुपए से शुरुआत हुई थी इनकी
0: 35 रुपए की सैलरी उस वक्त अच्छी खासी हुआ करती थी। और हम श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि फिल्म मीना जो 1944 में आई थी उसके डायलॉग्स भी सज्जन साहब ने लिखे थे, और 1946 की फिल्म जो दूर चली रिलीज हुई थी उसमें गीत लिखे थे। एक पोएट व्यक्ति थे, कवि थे वो, तो जाहिर है कि उनका ये जो शौक था ये फिल्मों में जाहिर हुआ। धन्यवाद फिल्म के भी गीत उन्होंने लिखे थे, और कुछ पृथ्वी थिएटर्स के जो ड्रामे हुआ करते थे उसमें वो एक्टिंग भी करते थे।
1: अब उनकी जो फिल्मों की बतौर हीरो जर्नी शुरू हुई 1950 में मुकद्दर फिल्म बॉम्बे थिएटर्स की थी, और उसमें उनकी हीरोइन थी नलिनी जयवंत।
0: क्या बात है,
1: आज के जो हमारे श्रोता हैं उनको मैं याद दिला दूं कि नलिनी जयवंत ये वही हैं जो नास्तिक फिल्म में अमिताभ बच्चन की मदर बनी थी।
0: हाँ, और नलिनी जी पर तो बहुत सुंदर सुंदर गीत एक जमाने में फिल्माए गए थे। मुझे याद है हम एक प्रोग्राम में विविधा के ही नलिनी जी की रिकॉर्डिंग भी सुनवा चुके हैं, तो हमारे श्रोता और भी इंतजार करें आगे भविष्य में।
1: अब ये समझ सकते हैं श्रोता कि किस जमाने में कहां से एक कलाकार की जर्नी शुरू होती है और वो वहां से शुरू होके कहां विक्रम बेताल तक पहुंचता है। अब अगर बीच के कुछ एक दो फिल्मों के नाम लूं तो बहुत से श्रोता जो हैं उनको तुरंत याद आ जाएगा कि सज्जन कौन है।
0: जॉनी मेरा नाम
1: जी,
0: उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था, याद है आप लोगों को,
1: राय साहब भूपिंदर सिंह
0: जी,
1: जो राय साहब भूपिंदर सिंह को उनका भाई रंजीत सिंह यानी प्रेमनाथ कैद करके रख लेता है।
0: जी हाँ,
1: वो
0: और उन पर एक बहुत मशहूर गीत भी फिल्माया गया है।
1: वो फिलहाल हम आपको गाना नहीं सुनवा सकते हैं, लेकिन आपको एक और फिल्म याद दिलाता हूँ मनीषा जी,
0: याद दिलाइए,
1: चलती का नाम गाड़ी।
0: हाँ, उसमें भी बहुत दिलचस्प किरदार सज्जन साहब का था और थोड़ा सा जी हाँ थोड़ा नेगेटिव रोल था। खैर, आपको बहुत कुछ याद आ गया होगा, हमने सज्जन साहब के बारे में बहुत बातें की, अब उनकी आवाज सुनते हैं।
1: बिल्कुल
2: सज्जन साहब, शुरुआत आपकी हुई फिल्मों में करेक्टर आर्टिस्ट से या कि हीरो से, आजकल आप दोबारा जब फिल्मों में आए तो ज्यादा आप करेक्टर रोल्स में देखे।
3: अब ये देखिए कि शुरुआत हुई हमारी फिल्मों में एक जूनियर आर्टिस्ट जो पहले एक्स्ट्रा कहलाया जाता था, उसके बाद में अरसे तक ये चला, 7-8 बरस तक चला, और उसके बाद में फिर पृथ्वीराज जी का पृथ्वी थिएटर से हमने ज्वाइन किया, कुछ अच्छे रोल मिलने लगे तो फिल्म वालों ने भी हमको बुलाया और फिर फिल्मों में हीरो बने, काफी अरसे तक हीरो रहे। नरगिस हमारी हीरोइन थी, मीना कुमारी थी, गीता वाली थी, और उसके बाद में हम बुढ़े हो गए समझे, तो हम हीरोइन के बाप बन गए, हीरो के बाप बन गए, और वो सिलसिला आज भी चालू है और रहे।
2: लेकिन आपको ये सब कुछ अजीब नहीं लगता?
3: बिल्कुल नहीं अजीब लगता, हमने तो ये समझा कि जैसे जूनियर आर्टिस्ट थे तब भी नशा लेके काम करते थे, हीरो थे तब भी मजा लेके काम करते थे, और आज भी जो रोल मिलता है हम उसके अंदर अपना पूरा मन लगाते हैं और उसके बाद में अपनी तरफ से अच्छे से अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं।
2: आजकल आपको अब भी इस नए जमाने में जब आप काम करते हैं और आर्टिस्टों के साथ और किरदारों के साथ फिल्म में, तो जैसा पहले आपको सुकून मिलता था आर्टिस्टों के साथ काम करते, क्या आजकल भी इस नए जमाने में ऐसा लगता है कि नहीं? तो या ऐसा लगता है कि समथिंग इज रॉन्ग समवेयर?
3: नहीं नहीं, ये तो असंभव है कि वैसा का वैसा सुकून कैसे मिल सकता है। आप जनरल बात ये समझिए कि पहले डायरेक्टर लोग भी कुछ कहानी ऐसी लेते थे जिसमें चरित्र चित्रण होता था, कुछ कहने को बात होती थी, कुछ दिखाने को बात होती थी, अभिनय करने का मौका होता था, और इत्मीनान से फिल्म बनती थी। तो मतलब कुछ सिखाया समझाया भी जाता था और फिर वो की वो बात उस चरित्र में से और उस कलाकार में से बाहर निकाली जाती थी। अब तो ऐसी आपाधापी चल रही है, भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, उसमें किसी को फुर्सत नहीं है कि वो कहानी को देखे, कि चरित्र चित्रण देखे, कि अभिनय देखे, कि बाकी की बातें देखे। और उसके बाद में जब दो दो शिफ्ट है, तीन तीन शिफ्ट है, अब कोई आदमी सिर्फ दो घंटे तीन घंटे ही फिल्मों में काम करने के लिए आता है और दिन में पांच छह जगह काम कर रहा है, तो उसके साथ के काम वालों की तरफ किधर जान जाएगा डायरेक्टर का, और उसकी तरफ भी जाएगा तो उसके तो नजर घड़ी पर है, अभी आया है, अभी घंटे डेढ़ घंटे में भाग जाएगा, तो अब वो बात रही नहीं है, उसमें कोई मजा नहीं रहा। हम जैसे स्टेज पे जाके वन मैन शो करते हैं अपने, मतलब एक शो करते हैं समझो कि छह आठ महीने के लिए बैटरी चार्ज हो गई, वहां कोई हमारे सामने बंदिश नहीं है। शाइलॉक भी करते हैं, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का सर जेफना पंडरनाथ करते हैं समझे, गुरुदेव टैगोर क्या करते हैं बिना पैसे का भोज करते हैं, हफीज जालंधरी का अभी तो मैं जवान हूं इसको अभिनय करके बताते हैं, पेंटोमाइम करके बताते हैं। हमने अब तक 74 शो किए समझे, लंदन में भी किए तो अमेरिका में भी किए। तो कहने का मतलब यह है कि हम हमारी ये जो भूख है या हमारी ये जो एक इच्छा है कि कुछ किया जाए वो हम वहां पूरा करते, घर पे थोड़ी बैठे रहते। अगर जो हमने वहां परेशान किया या परेशान हुए तो उसमें सबकी गड़बड़, इसलिए मैं अपनी पोजीशन जानता हूं, मैं इसलिए ना तो दखल देता हूं और मैं ये उम्मीद करता हूं कि मेरे दखल देने से यहां कुछ होने वाला।
2: मगर आपको सेटिस्फेक्शन तो मिलती रही?
3: सेटिस्फेक्शन इतनी है भाई कि हम अपना काम ईमानदारी से करने की कोशिश कर, बस ये
2: ज्यादा सेटिस्फेक्शन कहां मिली, थिएटर में या कि फिल्मों?
3: हमेशा थिएटर में, हमेशा थिएटर में मिली है, मिल रही है और मिलती भी रहेगी। हमने स्टेज पे काम करके वापस आए कि नहीं आए, हम जूनियर आर्टिस्ट थे समझे, अभिनय तो उसमें भी बराबर करना है। और आज का जमाना एक ऐसा आया है कि जिसमें हम स्टेज अभिनय या फिल्म अभिनय या टीवी अभिनय समझे, या कलर फिल्म की अभिनय और ब्लैक एंड व्हाइट की अभिनय, ऐसी तो कोई अलग अलग भेद तो है, सब जगह अभिनय।
2: हमारे यहाँ के जो लोग हैं आजकल तकरीबन 90% लोग हैं वो सब फिल्मों में आना चाहते हैं, चाहे वो इंजीनियर है साहब, चाहे वो क्लर्क हैं, चाहे वो डॉक्टर हैं, लेकिन सब चाहते हैं कि हम अपने आप को पर्दे पर देखें।
3: आपके दिल और दिमाग के अंदर ये जो परसेंटेज है वो शहरी आबादी को देखते हुए है समझे। आप एक काम कीजिए, जब आपको फुर्सत मिले 8-10 दिन की, तो किसी बहुत दूर देहात में चले जाइए जहाँ रेलगाड़ी नहीं जाती और बस भी नहीं जाती और सड़क भी नहीं है समझे, और कम से कम वहाँ 400-500 आदमी आपको मिलेंगे जो रहते हैं, उनमें से पूछे कितने लोग फिल्मों में जाना चाहते। तो ये 90% वगैरह ऐसे एग्जेजरेशन नहीं करना चाहिए अपने को, काफी लोग,
2: काफी लोग
3: जो मुंबई हिंदुस्तान नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग अगर जो इसकी तरफ झुकाव है उनका, तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं है, ये चीज ही ऐसी है। मगर उसके बाद में अगर जो मेरी आंखें कमजोर समझे, और उसके बाद में मेरे दिल में मैं ये ख्वाहिश पालूं कि मैं तो पायलट बनूंगा, मैं तो पायलट ही बन के रहूंगा, तो ये गलत बात है समझे। मेरा नाक टेढ़ा, मेरी शक्ल सूरत ठीक नहीं, मुझे पूरी हिंदुस्तानी बोलनी आती नहीं, मुझे अभिनय की ABC मालूम नहीं, मैंने भरतमुनि के नाट्यशास्त्र का नाम सुना नहीं, कुछ पढ़ा नहीं, कुछ ये अनुभव किया नहीं, रंगमंच के ऊपर पांव रखे नहीं, कभी रखे तो पसीना आ गया, और उसके बाद में दिल में ये अरमान पालना कि नहीं मैं तो बस एक्टिंग ही करूंगा और मैं तो अपने आप को पर्दे पे ही देखूंगा, तो उसका इलाज आप और हमारे पास नहीं है समझे। और उनको ऐसी बातें नहीं सोचनी चाहिए समझे, एक्टिंग करना है बर्न योर बोट्स, सारी तैयारी करके आइए उतरिए मैदान में, आजमाइए अपनी तकदीर।
2: जब आप खाली होते हैं तो अपने वक्त का इस्तेमाल कैसे करते हैं? क्या आप भी फिल्मी मैगजीन पढ़ते हैं?
3: नहीं नहीं नहीं, मेरे घर में देखिए
2: पोएट्री वगैरह लिखते हैं क्या?
3: ये भी लिखता हूँ, इसमें कहते हैं चोरी थोड़ी कर रहा हूँ, हमने कुछ गीत लिखे हैं समझे। हम शुरू शुरू में मतलब इंडस्ट्री में जब आए तो एज ए डायलॉग राइटर और सॉन्ग राइटर ही के तौर पे आए थे। फनी मजुमदार ने एक पिक्चर बनाई थी दूर चले, तो उसके गाने भी हमने लिखे थे और डायलॉग भी हमने लिखे थे।
2: समझे आप क्या क्या करते थे?
3: कमाल है, मैं अपनी मर्जी से तो नहीं करता, ऊपर वाले ने कुछ दिया है समझे, तो वो करते हैं। तो आज भी मैं अपने गीत लिखते रहता हूँ। जब चीन ने अटैक किया था टू की बात है शायद, समझे। उस वक्त हमने काफी वैसी वीर रस की कविताएं लिखी, चार एडिशंस उस किताब के छपे, नेहरू जी तक को सुनाई, लाल किले से पढ़ के सुनाई कविताएं, समझे। और उसके अलावा गीत तो चलते ही रहते हैं, ये गीत मैं चाहूं तब थोड़ी है तो अपने आप आते हैं। वियोगी होगा पहला कवि, आह से निकले होंगे गान, और निकलकर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो ये तो आ जाती है, तो लिख देते हैं समझे। अब मेरा प्यार मुझे लौटा दो, मैं चाह करके थोड़ी लिख सकता था। चुपचाप अकेले छुप छुप के मैं गीत किसी के गाता हूँ, और दिल के जख्मों को छील छील मैं अपना जी बहलाता हूँ। तो हम अपना जी बहलाते रहते हैं, समझे। तो वो है, बगीचे के अंदर काम है, बहुत कुछ पढ़ने को बाकी है, समझे। और उसके बाद में जैसे हमने आपको बताया कि हम रेडिएशन की एक एग्जीबिशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें जो सारा एटमॉस्फेयर रेडिएशन से सरचार्ज्ड हो जाएगा, तो ये जो जीवित लोग हैं उनके ऊपर क्या असर होने वाला है, समझे। तो वो हमने 250-300 पीसेस बना लिए हैं, और वायदा किया अपने आपको 500 पीसेस तैयार होंगे तो हम एग्जीबिशन बाहर निकालेंगे। बहुत करने को काम है जी, बहुत काम है।
1: मनीषा जी, ये रिकॉर्डिंग सुन के सचमुच बहुत अच्छा लगा
0: जी, बहुत अच्छा लगा।
1: सज्जन कुमार साहब, उन्होंने लगभग सभी बड़े बड़े कलाकारों के साथ काम किया
0: जी हाँ।
1: अमिताभ बच्चन साहब के साथ भी रहे वो। अब यहां मैं बताना चाहूंगा जो बड़ी दुखद बात है कि 17 मई सन 2000 में सज्जन साहब ने इस संसार से अपने आप को बिल्कुल दूर कर लिया, वो चले गए। और जब वो चले गए वाली बात है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि पता नहीं किस राजा विक्रम ने उनकी बात का जवाब दे दिया, तो वो नाराज हो गए और बोले, तू बोला तो मैं चला।
4: सच कहा विक्रम, पर मैंने तुम्हें कहा था ना कि तू बोला और मैं चला जाऊंगा, तू बोला और अब मैं जा रहा हूं।
0: शुदा, हम याद कर रहे थे अपने जमाने के मशहूर अभिनेता सज्जन साहब की, उनके रिकॉर्डिंग आपने सुनी। सज्जन साहब के बारे में जब हम बातचीत कर रहे थे तब आपको याद होगा कि अमर जी ने जिक्र किया था कि वो आए थे गीतकार बनने और बन गए अभिनेता। वैसे ही एक कलाकार और फिल्म इंडस्ट्री में आए, जो आए थे दिल में हसरत लिए गीतकार बनने की और बन गए निर्माता निर्देशक, और क्या ब्लॉकबस्टर फिल्में उन्होंने दी। जी हाँ, हम किसकी बात कर रहे हैं?
1: प्रकाश मेहरा साहब की। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, इसमें कोई सस्पेंस नहीं है दोस्तों, बस ये है कि रेडियो में काम करते हैं ना तो थोड़ी आदत हो जाती है हमारी इस तरह से बोलने की कि ढंटन टैन, वो फिल्मों में नहीं होता, वो बच्चे जब कहानी सुनाते हैं।
0: आप तो ऐसा लग रहा है कि जैसे सच में प्रकाश मेहरा साहब की
1: ये उस दौर की फिल्म है ना, कि जब हम पिक्चर देख के आते थे और हमसे कोई पूछता था कौन सी फिल्म देखी, आज तो यार हमने देखी मुकद्दर का सिकंदर। अच्छा, फिर क्या होता? क्या होता, अमिताभ बच्चन आता है और मोटरसाइकिल चलाता है, और उसके बाद क्या, डेंटन टैन, बस वो कुछ इसी तरह से हम बचपन में भी कहानियां सुनाया करते थे, सुनते थे। तो प्रकाश मेहरा साहब का नाम आते ही मुझे भी वो डेंटन टैन याद आ गया, क्योंकि उस दौर की फिल्में थी। और एक से एक फिल्में बनाई मनीषा जी उन्होंने। बिजनौर से आया एक बंदा, आया था गीतकार बनने। एक फिल्म दोस्तों याद होगी आपको, एक कुंवारा एक कुंवारी, उसका एक गाना, मैं मनीषा जी उसके बोल आपको बताता हूँ।
0: बताइए।
1: वो बोल है, अगर दिल हमारा शीशे के बदले पत्थर का होता।
0: बात है, बहुत प्यारा गीत है।
1: ना मानता ना रूठता, ना बार बार हंसता, ना जार जार रोता।
0: तो अमर जी, आपने इतने प्यारे गीत को याद दिलाया है
1: जी,
0: सुनना पड़ेगा, और फिर हम आगे एक रिकॉर्डिंग सुनवाएंगे श्रोताओं को।
1: तो चलिए सुन लेते हैं।

0: अमर जी
1: जी,
0: क्या गाना, वाह। बहुत दिनों बाद हमने इस गाने को सुना। न टूटता न फूटता, न मानता न रूठता, न बार बार हंसता, न जार जार रोता।
1: जार जार रोए प्रकाश मेहरा के प्रशंसक
0: जी
1: 17 मई 2009 को, क्योंकि प्रकाश जी ने फिल्मों से, जिंदगी से, दुनिया से सबसे नाता तोड़ा और चले गए। पता नहीं क्यों इतने अच्छे अच्छे कलाकार, इतने अच्छे अच्छे गुणी लोग जब चले जाते हैं तो ऐसा लगता है कुछ, बहुत कुछ खाली हो गया। लेकिन तो खैर, सृष्टि का नियम है, ईश्वर ने जन्म बनाया है तो मृत्यु भी बनाई है, यह अटल सत्य है। बहरहाल 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जन्म हुआ था
0: प्रकाश मेहरा
1: साहब का। और फिर ये आ गए मुंबई। आए तो थे ये गीतकार बनने, मनीषा जी
0: जी,
1: लेकिन शुरुआत में आप तो जानती हैं, फिल्म हमारी जो माया नगरी है यहाँ पे बहुत पापड़ बिलवाती है, तो इन्होंने पहले प्रोडक्शन कंट्रोलर का काम किया। उस हैसियत से अपना जब काम ये कर रहे थे, उसके बाद इनको फिल्म मिली हसीना मान जाएगी,
0: शशि कपूर साहब की,
1: बिल्कुल। और उसमें इन्होंने गाना भी लिखा और वो हिट भी हुआ।
0: कौन सा वाला गाना?
1: हसीना मान जाएगी टाइटल सॉन्ग जो था वो था। और भी कई गाने इन्होंने लिखे और बाद में तो बहुत से गाने लिखे। और मनीषा जी, यहाँ मैं आपको बता दूं कि खान ब्रदर्स फिरोज खान और संजय खान साहब की एक बड़ी मशहूर फिल्म थी मेला, गोरी के हाथ में चांदी का छल्ला, ऐसी हो किस्मत मेरी भी अल्लाह,
0: याद आ गया वो भी गाना। आज न जाने क्यों बड़े दिलचस्प गीत आपकी जुबान से।
1: ये भी डायरेक्ट उन्हीं ने की थी फिल्म, प्रकाश मेहरा साहब।
0: जी हाँ जी हाँ।
1: तो इस तरह से इनका ये सिलसिला चलता रहा। और उसके बाद इन्होंने वो किया जो इतिहास में, मतलब प्रकाश मेहरा को भी अमर कर गया और एक और कलाकार को अमर कर गया,
0: जिसने हमें महानायक दिया। फिल्म बनी जंजीर।
1: मनीषा जी, फिल्म जंजीर से जुड़े कुछ किस्से हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं।
0: बिल्कुल।
1: आप फिर रिकॉर्डिंग बाद में सुनवाएंगे?
0: बिल्कुल, इंतजार करेंगे हमारे श्रोता, आप जरा किस्सा सुनाइए।
1: और किस्से कुछ ऐसे हैं कि फिल्म जंजीर एक गीतकार की फिल्म थी
0: जी।
1: पहले तो जब प्लान की गई, जब लिखी गई, इसमें तब कोई गाने नहीं थे, लेकिन बाद में रिलीफ के लिए 4-5 गाने डाले गए, या जिसको आज आइटम सॉन्ग कहते हैं, उस जमाने में कैबरे कहलाते थे
0: जी।
1: और उसमें बिंदु जी पे जो फिल्माया गया कि दिल जला के पांच हाथ पे कव्वाली फिल्माई गई, एक हीरोइन पे गाना फिल्माया गया, एक और था गाना दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए। आप जानती हैं गाना पिक्चराइज किस पे हुआ था?
0: आप ही बता दीजिए ना।
1: गीतकार गुलशन बावरा थे वो।
0: क्या बात है,
1: जो हारमोनियम बजाते हुए नजर आते हैं वो गीतकार गुलशन बावरा।
0: देखिए श्रोताओं, अमर जी के साथ जब किस्सा गोई शुरू हुई तो न जाने कितनी कितनी बातें निकलती चली गई।
1: अब जो दूसरा किस्सा है वो बहुत से लोग हालांकि जानते हैं कि जंजीर फिल्म पहले गई थी देवानंद साहब के पास। देवानंद साहब से इन्होंने गुजारिश की कि साहब आप इस फिल्म में काम कीजिए। तो जैसे मैंने पहले बताया कि पहले इस फिल्म में गाने नहीं थे, तो देवानंद साहब ने कहा कि देखो भाई, मैं तो वो फिल्में करता नहीं जिसमें गाने ना हो, तुम मधुर रोमांटिक फिल्मों का हीरो हो। तो उन्होंने इनकार कर दिया। अब ये कहानी जो थी वो थी सलीम जावेद की
0: जी।
1: अब ये कहानी धर्मेंद्र साहब ने पहले ही खरीद ली थी।
0: अच्छा।
1: लेकिन वापस ले ली थी इन्होंने, सलीम साहब ने उनसे।
0: अच्छा।
1: और फिर प्रकाश मेहरा साहब से गुजारिश की कि भैया आप इसको बनाइए। और फिर ये फिल्म गई राजकुमार साहब के पास, लेकिन राजकुमार साहब ने तो अलग सा कारण बताकर उन्होंने इनकार कर दिया कि साहब मैं नहीं करूंगा। तब जाकर आपको पता है, अनवर अली जो महमूद साहब के भाई थे
0: जी,
1: उनके साथ अमिताभ बच्चन शेयरिंग में रहते थे,
0: यही मुंबई में।
1: और अमिताभ बच्चन महमूद की फिल्म बॉम्बे टू गोवा कर चुके थे
0: जी।
1: और अनवर से कहकर महमूद से सिफारिश करवाई प्रकाश मेहरा पे। तब जाकर प्रकाश मेहरा अमिताभ बच्चन से मिले और मिलते ही प्रकाश मेहरा ने कहा कि ये है मेरा हीरो।
0: क्या बात है, कहां से कहां, कैसी बातें निकली।
1: अब एक और

0: किस्सा है। अब ये बात तो आपको अच्छे से मालूम है कि प्राण साहब को खलनायकी से चरित्र भूमिकाओं में लेकर आए मनोज कुमार।
1: जी हाँ।
0: तो जब जंजीर फिल्म प्राण साहब ने साइन कर ली शेर खान के किरदार के लिए, उसी समय फिल्म शोर प्लान कर रहे थे
1: मनोज कुमार,
0: उसमें खान का किरदार था।
1: अच्छा।
0: और वो मनोज कुमार ने कहा कि भाई ये तो प्राण साहब ही करेंगे।
1: बिल्कुल।
0: और उन्होंने पूरे हक के साथ प्राण साहब से कहा कि ये तो आपका रोल है, आपको करना है। प्राण साहब का एक उसूल था कि प्राण साहब एक जैसा किरदार दूसरी किसी फिल्म में नहीं करते थे।
1: वाह।
0: और उस समय क्योंकि उन्होंने शेर खान वाला किरदार जंजीर के लिए एक्सेप्ट कर लिया था तो वो उन्होंने बना कर दिया। तब शोर में खान का किरदार प्रेमनाथ साहब ने किया।
1: क्या बात है। तो देखिए श्रोताओं, जिस तरह से मैं अवाक होकर के पूरे किस्से को सुन रही थी, मुझे लगता है इसी दिलचस्पी से आप भी सब रेडियो से कान लगाकर इस बात को सुन रहे होंगे कि अमर जी ने कौन सी जानकारी आपको दी। खैर श्रोताओं, अब हम आपको रिकॉर्डिंग सुनवा दें जो हम अपने खजाने से लेकर आए हैं। अमर जी, तो अभी सुनवाएं इस रिकॉर्डिंग को।
0: बिल्कुल।
1: प्रकाश मेहरा साहब से बातचीत की कमल शर्मा जी ने।
2: प्रकाश मेहरा साहब, ये तो हमें मालूम है कि आपका जन्म बिजनौर में हुआ, मुंबई किस उम्र में आया?
3: ये बड़ा डिफिकल्ट सवाल है क्योंकि मैं आया फिर गया अराउंड 58, तो मेरे पास टोटल 42 रुपए थे। मैंने कहा भाई ये काफी है, यहाँ आके थोड़ी सी मैं बुनियादें बना गया था। फिल्म डिवीजन में इधर उधर दो चार लोगों से मेरा कांटेक्ट हो गया। हमारे एक दूर के रिश्ते के मामा थे, कजन मामा, वो मरीन ड्राइव पर रहा करते थे। तो मरीन ड्राइव एक ऐसा इलाका था जहाँ हमारे मामा रहते थे, उसके ठीक बगल में सामने वाली खिड़की पर चौथे या पांचवें फ्लोर पर ओपन एयर थी। ये हारमोनियम पे गाने कंपोज किया करते थे, हम सुना करते थे। एक दिन हम पहुंच गए इनके पास, दो चार गाने मैंने उल्टे पुलटे जैसे भी थे मेरे पास मैंने सुना दिए। बोले भाई काबिलियत है तुम्हारे अंदर, तुम कर सकते हो, मेहनत की बहुत जरूरत है। ये तो पूरा महीना मैं रिकॉर्डिंग में बहुत बिजी हूँ, तुम अगले महीने आके मुझे मिलना। वहां से एक साहब थे मौर्या साहब, वो फिल्म डिवीजन में प्रोडक्शन मैनेजर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि भाई यहाँ कुछ स्टॉक शॉट लेने विनोद देसाई आए थे, तो मुझसे कह रहे थे कि आपके पास कोई काबिल लड़का हो तो आप उसे हमारे पास भेजिएगा। उन्होंने मुझे खत दिया, मैं विनोद देसाई के यहाँ पहुंच गया। क्या जानते हो, ये जानते, एक सीन दे लिखोगे? हमने कहा साहब बताइए। हमने एकांत में बैठ के वो सीन लिख दिया, उन्हें बहुत पसंद आया। बोले 150 रुपये महीना हम तुम्हें देंगे, तुम्हें कहीं रहने की इसकी उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मरीन ड्राइव का इतना बड़ा फ्लैट है, हमारी पत्नी जो है वो सेपरेट अलग जगह रहती है, वो अब पत्नी से सेपरेट हो गए थे, बेटा हमारा साथ है, और ये सामने जो बालकनी है समुद्र की हवा थी, तो बालकनी में सोफा कम बेड था, सिटिंग बनाई हुई थी, ग्लास से कवर कर ली थी। बोले ये बालकनी तुम्हारा बेडरूम है, बाकी हर चीज की फैसिलिटी यहाँ है, तुम काम करो। उसी बिल्डिंग में शंकर जयकिशन थे, जयकिशन 5 माले पे, और 6 माले पे थे मोम सहगल। अब हमारी एम्बिशन ये नाग देवता और नाग पंचमी और ये सब थी नहीं, हमारी एम्बिशन थी सोशल फिल्म। मोहन सहगल की हमने न्यू दिल्ली कुछ 20 मरतबा देखी थी। नीचे ये दीवार पर शाम को, मरीन ड्राइव की जो दीवार है, शाम को ये सब खलीफा जितने भी थे, जयकिशन भी और मोहन सहगल भी, विनोद देसाई भी, ये सब वहां दीवार पर बैठते थे। वहाँ दीवार पे बैठ के फ्यूचर प्लानिंग, कल सीन क्या होगा, परसों क्या होगा, उनके राइटर्स भी होते थे वहाँ, मोहन सहगल भी आते थे। मोहन सहगल का विनोद का एक ही बिल्डिंग में चूंकि रहना था, तो और विनोद क्या चल रहा है, तुम्हारी पिछली फिल्म बहुत अच्छी गई भाई। बोले हाँ मोहन जी। अब मेरे दिमाग में ये कि मैं मोहन सहगल से बात कैसे करूँ, वरना विनोद देसाई मुझे निकाल दें। एक दिन लकीली मोहन सहगल लिफ्ट में अकेले थे, लिफ्ट में अकेले थे, तो मैंने बोला मोहन जी ऐसे ऐसे है ना, वेरी एम्बिशियस पर्सन, मुझे कुछ करना है। अभी माइथोलॉजिकल ग्रुप में आगे कोई भविष्य नहीं है, कोई फ्यूचर नहीं, आपके ग्रुप में है। कहने लगे मेरी एक फिल्म खत्म हो रही है, अभी दूसरी शुरू होगी, मगर मैं भी उससे पूछ लूंगा, तुम यू डोंट वरी। वो ऐसा आदमी नहीं है कि एक आदमी दो जगह काम कर सकता है भाई। काबिलियत है तो करो, और मुझे मालूम है तुम्हारे बारे में, विनोद बहुत तारीफ करता है, बोलता ऑन द स्पॉट कोई भी सीन वो बैठ के लिख देता है। इन्होंने कहीं विनोद देसाई को बोला तो विनोद ने बोला जब मेरी शूटिंग नहीं होगी तो आपके यहाँ काम करे मुझे कोई एतराज नहीं है। बोले आप फिर तुम यहाँ फ्लैट से तो नहीं उसको निकाल दोगे, वो रहेगा यहाँ? बोले नहीं नहीं रहेगा मेरे पास ही, क्योंकि मैं इसे छोड़ नहीं रहा हूँ। इस तरह सिलसिला हमारा शुरू हुआ।
2: वो भी आपको बिल्कुल बेटे जैसा मानते थे,
3: वेरी वेल बिहेव पर्सन, इतना खूबसूरत उनका ट्रीटमेंट था मेरे साथ, उनसे ज्यादा सरशाद सैलानी मरहूम जो राइटर थे, ग्रेट राइटर।
2: तो प्रकाश जी आप बेसिकली बनना क्या चाहते थे, राइटर बनना चाहते थे फिल्म इंडस्ट्री?
3: आए थे राइटर बनने। अच्छा, उससे पहले का जो पीरियड है मौर्या साहब से और यहाँ तक, वो बहुत खतरनाक गया है। जब तक हम अपने मामा को मिले हैं तब तक हम फुटपाथों पर सोते थे, चने खाते थे, मैं उसके बाद जो किस्मत ने पलटा लिया तो वही हमारी फिर दोस्ती हो गई काम करते करते बोनसागर के। उसके तो हमारे दोस्त थे इंदुभूषण, बहुत पैसे वाले के बेटे, तो इंदुभूषण से दोस्ती हो गई। इंदुभूषण को बड़ा शौक था कि यार एक पिक्चर बनाएंगे, तो मैं इंदुभूषण को यहाँ तक बोलता था कि इंदुभूषण तू थोड़ा सा ठहर जा, बेसिक चीजें मैंने जो है वो सीख ली, थोड़ा सा प्रैक्टिकल मुझे एक साल बोनसागर के साथ और काम करने में। व्हील मेक फिल्म और एक सब्जेक्ट है, हमारे मित्र हैं, मित्र हो गए थे वहां से, मनोहर के वहां से एसएम अब्बास, उनके पास एक सब्जेक्ट है, उन्होंने वो सब्जेक्ट मुझे सुनाया है हसीना मान जाएगी। मैंने कहा अब्बास साहब एक साल के बाद रुक जाइए, बहुत जबरदस्त प्रोड्यूसर इसके लिए हमारे पास है। एक साल के बाद हमने उनसे कहा कि सब्जेक्ट सुने, वो इंदुभूषण यंगस्टर, वो भी खाने पीने वाला आदमी, बड़े बाप का बेटा, परवाह उसे थी नहीं पैसे की, नोट तो ऐसे फेंकता था कि जैसे कोई वर्थ ही नहीं है। तो हसीना मान जाएगी शुरू हो गई। एक और वाकया हुआ हमारे साथ, जो मोनसागर के यहाँ काम कर रहे थे तो हमारे पास एक ऑफर आई, किसी ने कहा होगा कि यार ये लड़का बहुत इंटेलिजेंट है, इसमें कुछ बना। निरूपर आए जयराज को लेके, अमर सिंह राठौर, बोले तुम बनाओ, तुम्हें 50,000 रुपए देंगे, एक फीएट गाड़ी देंगे और एक फ्लैट देंगे। तो मैंने कहा आप थोड़ा सा ठहर जाइए, मैं 2-4 दिन के बाद आपको बताऊंगा। तो मैंने ये बात मोनसागर का जो कैमरामैन था सरदार बलदेव सिंह, असिस्टेंट कैमरामैन बलदेव सिंह से पूछा, यार ऐसे ऐसे ऑफर आई है डायरेक्शन की। बोले सत्यानाश हो जाएगा, हाँ मत करना, मैथोलॉजिकल ग्रुप में तू घुसा है तो फिर उसके बाद तो निकल नहीं सकता, जब तेरी अगले साल हसीना मान जाएगी शुरू हो रही है, देन कीप पेशेंस। बात मेरे दिमाग में जम गई, मैंने उन्हें मना कर दिया। बहरहाल किस्मत में वो था, क्योंकि ऑलवेज आई यूज टू बिलीव इन डेस्टिनी, आपके प्रारब्ध, आपकी डेस्टिनी, आपकी तकदीर आपको खींच के किस तरफ ले जा रही है, वही होना। आपकी मेहनत तो है, आपकी सिंसियरिटी तो है, मगर ये लक जो है ये बहुत बड़ी चीज। तो एक साल के बाद वो सिनेमा जाएगी शुरू हो गई, पिक्चर इतनी बड़ी हिट हुई है, हमको तो मालूम ही नहीं था कि ये हिट और पिट का मतलब, हिट होने के बाद आप कौन सा आसमान पे होते हैं, ये उस फिल्म के रिलीज होने के बाद मालूम पड़ा। जब हसीना मान जाएगी की रिलीज के एक महीने के बाद मैं वापस आया हूँ वहाँ मांदरा में, तो मेरे पास कुछ 40-50 ड्राफ्ट थे, 20 चेक थे, और जिस फैमिली के साथ मैं रहता था आंटी थी वो डिसोजा, तो मिसेस डिसोजा को कोई साहब अपना नाम लिख के 51,000 रुपए कैश दे गए, वो थे नडियाड वाला। मैं बौखला गया बिल्कुल, मेरी समझ में नहीं आया। तो मैंने जॉनी वॉकर से, वही मेरे फ्रेंड फिलोसफर गाइड हुआ करते थे, हसीना मान जाएगी में वो थे, हसीना मान जाएगी कंप्लीट कराने में हमारे पास पैसे खत्म हो जाया करते थे तो अपने घर से लाके हमें देते थे, बोले मगर एक हफ्ते में ले लूंगा तो हम एक हफ्ते में वापस कर दिया। तो जॉनी वॉकर से पूछा कि एक ऑफर है नजाड़ वाले की, एक ऑफर है मलिक चंद कोचर की, उनकी 4 ऑफर थी, बोलो सब कर लो। मैंने कहा जानू भाई डायरेक्शन में ऐसे कभी होता है, एक फिल्म में मेरा तेल निकल गया था हसीना मान जाएगी में, एक एक सीन सोचते वक्त मेरा सिर फटता था कि मैं इसको स्क्रीन पे कैसे लेके आऊंगा, सोच तो लिया। तो जानू अगर ने कहा सब कर ले।
2: निर्माता निर्देशक बनने से पहले आपने और भी बहुत सारी भूमिकाएं निभाई फिल्म इंडस्ट्री में, तरह तरह के काम किए आपने।
3: प्रोडक्शन का काम ज्यादातर साइड में मैं करता था
2: जी,
3: बिकॉज आई यूज टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। बाकी मैंने कहा ना, मैंने एयरपोर्ट पर सामान उठाया, कुलीगिरी की बरसात में मैं विले पार्ले से महालक्ष्मी पैदल चल के आया करता था।
2: तो ये जो जंजीर की हम बात करें,
3: अमिताभ बच्चन एक्टर तो बहुत जबरदस्त थे
2: जी,
3: बट एज ए हीरो वो एस्टेब्लिश नहीं कर पाए थे, उनकी सारी उम्मीदें थी। ओपी रंजन की फिल्म बंदेहाल बन गई थी जिसमें ये और मुमताज, और जब मैं जंजीर में मैंने मुमताज को साइन किया, मुमताज को मालूम पड़ा कि हीरो मैंने अमिताभ साइन किया, तो वो छोड़ के भाग गए, मेरे पैसे वापस कर दिए। फिर मैंने अमित कुबर यार कैफियत की, तो फिर मैंने जया से बात की, जो समाधि में जया जी काम कर रही थी। समाधि कहानी धर्मिंदर को बहुत पसंद, उसने बोला यार ये तो मैं करूंगा। मैं हमेशा भाजी उनको बुलाता था, मैंने कहा भाजी अगर आप ये करेंगे तो मैं क्या करूंगा। ये सब्जेक्ट मैं मुखराम शर्मा से, मुखराम शर्मा ग्रेट राइटर, यानी उनके मुकाबले का कोई राइटर नहीं था उस वक्त, दो ही नाम लिए जाते थे, पंडित मुखराम शर्मा और इंदिराज आनंद। तो मैं मुखराम शर्मा के हाथ पर जोड़ के सब्जेक्ट लेके आया हूँ, मुझे दे लिए तो नहीं, मैंने केदार कपूर को बोला वो बना रहा है, तो मैंने कहा नहीं पंडित जी ये तो मुझे देना पड़ेगा, मैं बच्चा हूँ आपका, मैं अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहा हूँ, वो दे दिया। और ये सुन के भी दे दिया कि बिजनौर का दे दिया, तो मैंने बोला, मैंने कहा धर्म भाजी ये उनसे मैं बड़ी मेहनत करके सब्जेक्ट लेके आया हूँ। बोले मैं तुझे एक सब्जेक्ट दूंगा, इंस्पेक्टर की एक कहानी है। अच्छा, धर्मिंदर ने जिंदगी भर कभी आज तक उनसे पूछो वो कहानी कौन सी थी, बोले एक इंस्पेक्टर की और पठान की कहानी। मैंने कहा इसके आगे तो कुछ बोली है इंस्पेक्टर और पठान के आगे? बोले यार आगे उसे मालूम है, वो सलीम जावेद नहीं है राइटर, मैंने 5,000 रुपए उसे दे दिए हैं, आगे उससे सुन ले यार, इंस्पेक्टर और पठान की कहानी है, समाधि मुझे दे दे और वो इंस्पेक्टर और पठान की कहानी तू ले ले। एक्सचेंज हो गया। तो आपको उस वक्त भी कहा था कि देखो भाई हर फिल्म में तुम अपना इमेज चेंज करते रहना, क्योंकि अब तुम हो गए हो बहुत बड़े स्टार, हर फिल्म में अपना इमेज चेंज करते रहना, वरना ये यहाँ के प्रोड्यूसर इतने बेदर्दी हैं, तुम्हारी वर्दी सिलवा देंगे वो इंस्पेक्टर की। हर फिल्म में तुम इंस्पेक्टर ही दिखाई दोगे। और हंसा बहुत वो, मैंने ही फिर अपनी सेकंड फिल्म हेरा फेरी, जिस प्रेस ने लिखा था कि एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन इन जंजीर, उसी प्रेस ने आफ्टर हेरा फेरी ये लिखा कि बेस्ट कॉमेडियन एवर बॉर्न इन द इंडियन स्क्रीन दैट इज अमिताभ बच्चन एंड विनोद खन्ना। मैंने कहा ना कीप ऑन चेंजिंग द इमेज, दैट्स व्हाई आई हैव मेड मुकद्दर का सिकंदर, क्योंकि कोई फिल्म मैच्योर्ड लव स्टोरी उस जमाने में नहीं बनी थी। तो मैंने संगम एंड देवदास, मेरी तमन्ना थी इन दोनों को ब्लेंड करके मुकद्दर का सिकंदर बनाया। तो मैंने कहा इनसे, एक फेस्टिवल से आ रहे थे तो प्लेन में सब साथ में ही थे, तो यूसुफ भाई भी बैठे थे, राज कपूर भी बैठे थे, तो राजकीवाग जी ने जिक्र छेड़ा, बोले भाई तेरी मुकद्दर का सिकंदर की वो इंदिराज आनंद बहुत तारीफ करता है, चाचा जी बुलाते थे उन्हें या मामा जी कुछ, वो इंदर जी बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने कहा राजी अभी 4-5 दिन में सेंसर हो जाएगी, तो मैं प्रिंट आपको, नहीं मैं थिएटर पर देखूंगा। यूसुफ भाई से बोले भाई हम भी देखेंगे। बहरहाल मफहूम क्या है, लुबल वाब क्या है जो इतना जबरदस्त क्रेज उसका बना हुआ। मैंने कहा कुछ भी नहीं यूसुफ भाई, आपकी देवदास है राज्य की संगम है, आप देवदास में झाड़ के पीछे मितवा गाया करते थे, मेरा सिकंदर जो है थोड़ी सी मारपीट कर लेता था।

0: रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर जाने मन कहलाएगा। और
1: हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं मनीषा जी, कि हमें विविध भारती के माइक से बोलने का मौका मिलता है, हमें अपने श्रोताओं के दिल तक पहुंचने का मौका मिलता है, हम अपने श्रोताओं के साथ अपना विविधा का खजाना, विविध भारती का खजाना बांट पाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए हम भी मुकद्दर के सिकंदर हैं।
0: और अमर जी, आज की इस विविधा को हमारे श्रोता याद रखेंगे इस उम्मीद के साथ।

0: अब इजाजत लेते हैं क्योंकि अगली विविधा में क्या लेकर आना है इसकी भी तो तैयारी करनी है।
1: बस
0: तो
1: निकलते ही लग जाएंगे अपने काम में।
0: और इस वक्त तो ले लेते हैं इजाजत, तो आप सभी को आपकी दोस्त मनीषा जैन
1: और अमरकांत का नमस्कार।
0: ये थी विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं जयंती समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने आज आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुडेबेल्लूर से महबूब नगर तक की 4 लेन के राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। पीएम मित्र योजना के तहत विकसित इस पार्क को काकतीय मेगा टेक्सटाइल पार्क भी कहा जाता है। प्रधानमंत्री हैदराबाद में कैंसर मरीजों के लिए सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
1: सी जोसेफ विजय एनम नान तमिलनाडु अरसिन முதலமைச்சர் என்ற முறையில் எனது கவனத்திற்குள்ளாவதும் தெரியவருவதுமான எந்த பொருளையும் முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்கவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
0: श्री विजय के साथ 9 अन्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। असम में आज भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक गुवाहाटी में हो रही है। बैठक में हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने श्री एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है। उपराज्यपाल कैलाश नाथन ने श्री रंगासामी को सरकार के गठन के लिए आमंत्रित किया है। श्री रंगासामी 13 मई को 5वीं बार पुदुचेरी के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य समय पर वेतन का भुगतान, अनिवार्य सामाजिक सुरक्षा अंशदान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही तथा श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन व्यवस्था सुनिश्चित होगी। निर्देशों में इस बात पर बल दिया गया है कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य परिस्थिति संहिता 2020 की धारा 55(3) के अंतर्गत मुख्य नियोक्ता के लिए यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि ठेकेदार समय पर वेतन का भुगतान करें। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने हैदराबाद में स्क्रैमजेट कंबस्टर का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण में 1200 सेकंड से अधिक का रन टाइम प्राप्त हुआ। ये रन टाइम इस वर्ष जनवरी में किए गए 700 सेकंड के परीक्षण से अधिक है। इस सफल परीक्षण से भारत उन्नत एयरोस्पेस क्षमता और लगातार उभर

0: युद्ध प्रौद्योगिकियों में अग्रणी स्थान पर आ गया है। इस परीक्षण से भारत के हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल विकास कार्यक्रम को मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। धार्मिक महत्व के अतिरिक्त सोमनाथ मंदिर पर्यावरणीय संरक्षण में भी अग्रणी स्तर पर उभर रहा है। इसका लक्ष्य देश के पहले कार्बन उत्सर्जन मुक्त मंदिर के रूप में स्थापित होना है। जम्मू कश्मीर में 100 दिन के नशा मुक्ति अभियान में बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी हो रही है। राज्य में अब तक 2,16,000 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई छठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कुछ ही पलों में आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम यादों की महफिल।

यादों की महफिल कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में आपके साथ हूं मैं राजुल, और शुरुआत कर रहे हैं मोहम्मद रफी के गाए इस गीत से। बागी फिल्म का गीत है, हसरत जयपुरी के बोल हैं, चित्रगुप्त का संगीत है।

आशा भोसले का गाया हुआ भाभी फिल्म का ये गाना आपने सुना। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब आपको सुनवा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का ही लिखा और चित्रगुप्त के संगीत निर्देशन में सुहाग सिंदूर फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज है।

0: आप सुन रहे थे बारात फिल्म का ये गाना मोहम्मद रफी और गीता दत्त के युगल स्वरों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने।
1: आएगी जरूर,
2: पता है अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं।
1: क्यों?
2: क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियाँ आती थी विविध भारती में।
3: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
2: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
3: पल पल दिल के
2: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे
1: हम इंतजार करेंगे।
2: तो फटाफट पोस्ट कार्ड लीजिए, लिखिए अपनी फरमाइश और भेज दीजिए इस पते पर। मनचाहे गीत कार्यक्रम विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। मनचाहे गीत विविध भारतीय राष्ट्रीय सेवा, पोस्ट बॉक्स नंबर 19750, मुंबई 400091। आपकी चिट्ठियों का हमें इंतजार है।
0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको जो गाना सुनवाने जा रहे हैं उसे हमने लिया है किंग कॉन्ग फिल्म से, लता मंगेशकर की आवाज में। बोल मजरूह सुल्तानपुरी के हैं, धुन चित्रगुप्त की है।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। आइए अब सुनते हैं 7 समंदर पार फिल्म का गाना मोहम्मद रफी और कमल बारोट की आवाजों में। शब्द रचना फारूक कैसर की है और सुरों में पिरोया है चित्रगुप्त ने।

लगे नैना, पल पल छिन छिन पड़े न तैना, रात तक थक थक गए नैना, पल पल छिन छिन पड़े न तैना, जमुना तट पे बंसी बट में प्रेम रंग में डूबी राधा बोली, हाय बोली क्या बोली बोली।

0: बूट पॉलिश फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे। प्रेम धवन का लिखा, चित्रगुप्त का संगीत बद्ध किया हुआ। आवाजें थी मन्ना डे और लता मंगेशकर की।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत।
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था। उस टीम का जवाब नहीं जिसने मुझे इतने अच्छे ढंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से।
3: मैंने पढ़ा जाने कितनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए। ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब सुनते हैं नवरात्रि फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया हुआ। जी एस नेपाली के लिखे गीत को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया हुआ सैमसन फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। और अब सुनवा रहे हैं हम मतवाले नौजवान फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज है, जोड़ी है मजरू सुल्तानपुरी और चित्रगुप्त की।

बेजुबान, ये था फिल्म का नाम। लता मंगेशकर की आवाज में गाना आपने सुना, प्रेम धवन के बोल थे और चित्रगुप्त का संगीत था। और अब सुनवा रहे हैं कल हमारा है, इस फिल्म का गाना मोहम्मद रफी की आवाज में। मजरूह सुल्तानपुरी के बोलों को संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

आसमान का प्यार आए मेरी गाड़ी बोल जाए कहीं दे दे जो एक धक्का। घर से तो कट चुका पत्ता हूँ नौजवान मैं अलबत्ता, ओ मेरे लिए अब एक है।

प्यार की बाजी। इस फिल्म का गाना आपने सुना, गीता दत्त और मोहम्मद रफी का गाया हुआ। इंदीवर के लिखे गीत को संगीत से सवारा था चित्रगुप्त ने। और अब सुनवा रहे हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, अली बाबा 40 चोर फिल्म से। आशा भोसले और उषा मंगेशकर की आवाजों में सुनते हैं ये गीत।

अलीबाबा 40 शोर फिल्म का ये गाना बना कार्यक्रम का आखिरी गीत। और अब डीजे यादव की महफिल से राजुल को इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।

नमस्कार। दिन का एक बजे का वक्त और एक सुरीला सा सफर शुरू होने का समय, कितना मिलता जुलता है ये समय। और इसी समय को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। राजुल है आज आपके साथ इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत है सुरीला सफर में। तो सुरीले सफर की शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि आज जो हमने इबारत पोस्ट की है वो कुछ इस तरह से है वाक्यांश की, समय का बैकग्राउंड संगीत हर पल बदलता रहता है और उसकी धुन पर दुनिया का मेला बिगड़ता सवरता है। समय के लिखे गीत में कभी ख्वाबों के सिलसिले गुनगुन करते हैं तो कभी वीराने, कभी मिलन के स्वरों में बहार की पायल झनक उठती है तो कभी तन्हाई के स्वर गूंज जाते हैं। उसके गीतों में माँ की मीठी लोरी होगी या अपने लिए जीने का सबक, दिल मिलने का नगमा होगा या मिलकर घबराए दिल का फसाना। वो कब कौन सा तराना छेड़े वो ही जाने, बस उसके सुर में सुर मिलाकर चलती रहे जिंदगी और हर कदम करती रहे एक नए गीत का इंतजार। तो यह है आज की इबारत और इसमें से आपको शब्द सोचने हैं कि कौन से शब्द हो सकते हैं आज के कार्यक्रम में जिन पर गीत सुनवाया जा सकता है। वैसे काफी श्रोताओं ने तो बिल्कुल सही कयास लगाया है, क्या बात है। वैसे आपने जो शब्दों का सिलसिला छेड़ा है उसमें बहुत सारी बातें हैं। जैसे हमारे एक साथी लिखते हैं कि आज की इबारत बहुरंगों से सजी है, कई शब्द बहुत सुंदर बन रहे हैं और बहुत मजेदार गाने होने वाले हैं आज। इन्होंने कुछ गानों की बारे में भी जिक्र किया है। एक और साथी ने कहा है कि अब तक के मानस पटल पर गद्य के पढ़ते ही इतने गीत याद आ गए हैं और इससे अधिक भी हो सकते हैं। यद्यपि बजने 4-6 ही हैं और देखें इनमें से कौन सा गीत है जो इस कार्यक्रम का हम सफर हो सकता है, पर आपके गीतों का हमने इंतजार किया, एक आधी गीत दिखा सारे गीतों में नजर नहीं आए। चलिए, आप अगर छूट गया है तो अब बता दीजिए। जोधपुर राजस्थान से तपती दोपहरिया में प्यार भरा सलाम भेजने वाले हमारे एक श्रोता ने कुछ गाने भेजे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज की भारत में शामिल शब्द समय, हर पल दुनिया का मेला, गीत बहार, पायल, कभी तन्हाई, माँ की मीठी लोरी, जीने का दिल, नगमा फसाना, कौन सा वो ही जाने, सुर चलती रहे जिंदगी, इंतजार। इन्होंने तो बहुत सारे शब्द बता दिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमारा रोजमर्रा का जीवन संगीत की रेखा और रंगों के अलाप से शुरू होता है, स्वरों के समन्वय

0: लेकर कल्पना का खेल चलता रहता है। हम तन्हाई में हो या वीराने,
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई द्वारा प्रसारित कार्यक्रम। FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक जारी है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और अन्य कई स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ, जो शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। पंचकुला नगर निगम चुनाव के लिए मतदान को लेकर सुबह से ही लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। सभी 204 मतदान केंद्रों पर बड़ी संख्या में मतदाता अपना वोट देने आ रहे हैं। पंचकुला नगर निगम के क्षेत्र में आज कुल 2,07,379 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1,535 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है। वोट देने आई कांग्रेस प्रत्याशी सुधा भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है, जनता का जो फैसला होगा वह मंजूर होगा। वहीं पंचकुला भारतीय जनता पार्टी के महापौर पद के प्रत्याशी श्यामलाल बंसल ने भी पंचकुला वासियों पर भरोसा जताते हुए कहा कि मतदाता सही फैसला करेंगे। सोनीपत नगर निगम के महापौर और 22 वार्ड से नगर निगम सदस्य के चुनाव के लिए भी लोग उत्साह से मतदान कर रहे हैं। सोनीपत नगर निगम चुनाव के लिए महापौर पद के लिए भाजपा प्रत्याशी पूर्व महापौर राजीव जैन ने अपनी पत्नी पूर्व मंत्री कविता जैन बेटे दीवांग के साथ मतदान किया। वहीं कांग्रेस के महापौर पद के प्रत्याशी कमल दीवान ने अपनी पत्नी मेघा दीवान के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। सभी प्रत्याशी मतदाताओं से लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए मतदान करने की अपील कर रहे हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ौली ने कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। अंबाला में भी लोग लगातार अपने मतदान के मौखिक अधिकार को उत्साह के साथ प्रयोग कर रहे हैं। समाचार लिखे जाने तक अंबाला में 25% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। अपना वोट देने आए राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि वोट सबका संवैधानिक अधिकार है, अपने इस अधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। उन्होंने सभी मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर आकर लोकतंत्र के इस पर्व में वोट डालकर भागीदारी करने की अपील की। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कल पवित्र ब्रज 84 कोस यात्रा के पलवल जिले में पड़ने वाले विभिन्न मार्गों का निरीक्षण किया। उपायुक्त ने परिक्रमा मार्ग में श्रद्धालुओं के लिए लगाए गए वाटर कूलर का शुभारंभ भी किया। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नीतीश अग्रवाल व अन्य अधिकारी उनके साथ मौजूद रहे। उपायुक्त ने कहा कि 17 मई को शुरू होने वाली इस यात्रा में श्रद्धालुओं को पलवल जिले से गुजरते समय कोई असुविधा न हो, इसलिए यह निरीक्षण किया गया है।
1: हरियाणा सरकार का आदेश है कि इस यात्रा में किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, उसको ध्यान में रखते हुए छोटी छोटी कमियां हैं रास्ते में, कहीं गड्ढे हैं, कहीं सफाई की जरूरत है, उसको दुरुस्त किया जा सके, ये यात्रा बहुत अच्छे से हो, सुचारू ढंग से ले और कोई भी एक्सीडेंट ना हो, उसके लिए हमने निरीक्षण किया है और अधिकारियों को निर्देश भी दिए।
0: वीरता, स्वाभिमान और राष्ट्रभक्ति के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के अवसर पर कल भिवानी के महाराणा प्रताप चौक गेट पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व सामाजिक कार्यकर्ता नेत्रपाल भिवानी एवं उनके साथियों ने किया। सबसे पहले वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर विधायक घनश्याम सर्राफ व आयोजकों ने कहा कि महाराणा प्रताप केवल एक योद्धा नहीं बल्कि राष्ट्र स्वाभिमान के प्रतीक हैं, जिनकी वीर गाथा सदियों तक आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। जींद के उपायुक्त मोहम्मद इमरान रजा ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कल 11 मई को जयंती देवी मंदिर में जिला स्तरीय सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन होगा। इस दौरान धार्मिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करवाया

0: जाएगा। कार्यक्रम के तहत गुजरात के सोमनाथ में आयोजित राष्ट्रीय समारोह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लाइव संबोधन भी प्रसारित किया जाएगा। उपायुक्त ने बताया कि स्थानीय शिव चौक से जयंती देवी मंदिर तक कलश यात्रा निकाली जाएगी। नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने के लिए भी भजन कीर्तन, ओंकार जाप और शिव तांडव जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जाएगा। पलवल पुलिस की अपराध जांच शाखा ने कल अवैध देसी कट्टा सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस जांच अधिकारी जगमिंदर सिंह ने बताया कि आरोपी की पहचान पलवल के गांव भिडुकी निवासी राहुल के तौर पर हुई है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आपको वापस लिए चलते हैं विविध भारती के कार्यक्रमों की ओर।
2: और सही जवाब भी आ गया है कि ये गाना रामपुर का लक्ष्मण का है, जिसमें रणधीर कपूर और रेखा दिखते हैं। और घड़ी के बाबत जो हमने पूछा था तो उसका जवाब सिर्फ यही आया है कि पिताजी के पापा ने सिखाई थी घड़ी देखना, सूर्य घड़ी थी वो। वो संदेश अब मुझसे खो गया है और मुझे मिल नहीं रहा है। हाँ, सूर्य वाली घड़ी थी और पहला परिचय घड़ी से मेरे पापा ने करवाया था। तो भाई आप भी अब बताइए ना कि घड़ी से पहला परिचय किसने कराया था। और अब बात जब हो रही है इबारत की, तो अगला शब्द जो बन रहा है, समय पर तो बात बहुत सारे हमारे श्रोताओं ने की है और दुनिया की भी बात है, क्योंकि दुनिया जो है वो गोल तो है और कहीं ना कहीं हमारे रास्ते भी मिल जाते हैं। ये गीत भी हो सकता है, लेकिन कौन सा गीत आने वाला है ये सोचिए। एक श्रोता कह रहे हैं कि समय हर पल बदलता रहता है, जिंदगी उसी के अनुसार चलती रहती है। ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनकार, तन्हाई, माँ की लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर में सुर मिला के चलते जाना है, यही है जिंदगी। और कुछ गानों का भी जिक्र किया है हमारे इन साथी ने। निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समर्पण की मूरत, माँ सभी को मातृ दिवस की बधाई और शुभकामनाएं, ऐसा हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं। परिवर्तनशीलता और उसकी अनिश्चितता और समय की परिवर्तनशीलता, उसकी अनिश्चितता और जीवन पर उसके गहरे प्रभाव का एक बहुत ही काव्यात्मक और दार्शनिक चित्रण है आज की इबारत। समय ऐसा संगीतकार है जो लगातार धुन बदलता रहता है। दुनिया का मेला इसी धुन पर बिगड़ता सवरता है। समय का गीत कभी सपनों की गूंज है तो कभी निराशा का वीराना। आशा और निराशा से इन्होंने मिलाया है, बिल्कुल सही बात है। आशा और निराशा भी होती है जब कुछ मिलता है या जब कुछ खो जाता है। ये भी कहा है कि ये जीवन के द्वंद्वों, मिलन और जुदाई, बहार और खामोशी की धुन छेड़ता रहता है। ये माँ की लोरी जैसा ममतामयी भी हो सकता है और आत्मसंघर्ष का प्रतीक भी हो सकता है। और भी कुछ बातें लिखी हैं, शब्द बताए हैं, समय हर पल सिलसिले, ख्वाब, मेला, मिलन, बहार, पायल, झनक, तन्हाई, माँ, लोरी, दिल के तराने या फसाने, सुर हो सकते हैं। वाह क्या बात है। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि समय के साथ बदलते संगीत की बात कितनी सही है। वाह बिल्कुल सही है। आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कार्यक्रम से जुड़कर आप बराबर अपने फीडबैक्स देते रहते हैं और हमें बताते रहते हैं कि कैसा लगता जा रहा है ये सफर। तो अब दुनिया के बारे में क्या कह रहे हैं।

बदली बदली सी इस दुनिया का ये जो राग है, ये किस फिल्म का है ये आपको बताना है। और घड़ी को लेकर बहुत सारे संदेश आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता बता रहे हैं कि हमारे पास पहले घड़ी जो थी उसमें चाबी दी जाती थी, यानी चाबी भरी जाती थी और दीवार पर टांगी जाती थी। लंबी घड़ी हुआ करती थी जिसमें कि हर समय घंटे के ऊपर आवाज आती थी टन टन की। और एक और श्रोता कह रहे हैं कि हमें हमारी बड़ी बहन ने घड़ी में समय देखना सिखाया था। और एक और श्रोता ने कहा है, ये संदेश पढ़ लेती हूँ, ये घड़ी से अलग है लेकिन कार्यक्रम के बारे में है। मुझे कई बार लगता है कि आप लोगों के टेक्स्ट और प्लेलिस्ट में कोऑर्डिनेशन की कुछ कमी है। बुरा ना माने पर टेक्स्ट कुछ वेग सा लगता है, वैसे कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत है। देखिए टेक्स्ट को लेकर अगर आप उसके भाव पर जाएंगे तो आपको शायद उसी के हिसाब से, अगर आप प्लेलिस्ट के बारे में सोच रही हैं तो वो तो नहीं है। हाँ, उस टेक्स्ट में से आप जो बातें हो रही हैं उन बातों में हिस्सा लीजिए और कार्यक्रम में उस शब्द को चुनकर जो बहुत ही खास शब्द दिख रहा है उसको चुनकर अपनी पसंद का गीत सुनिए। अगर आपकी पसंद इस प्लेलिस्ट से मिलती है जो कि गाने हमने चुने हैं आज के इस इबारत से। हाँ, घड़ी के बारे में एक और संदेश है। मेरे दादाजी ने मुझे सुइयों वाली घड़ी लाकर दी थी। सबसे पहले 1984 में 10वीं की बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंकों से पास होने पर घड़ी मिली थी। क्या बात है, समय की और घड़ी की बात हो रही है। 1975 में नौकरी कर 250 रुपए पहली बार कमाए और 245 रुपए की जीएमटी सोना घड़ी लेकर हाथ में बांधकर समय देखा जिसमें सेकेंड मिनट घड़ी घंटे के कांटे होते हैं। जी हाँ, पहले तो ऐसी ही घड़ी होती थी। एक और साथी बता रहे हैं कि मेरे को घड़ी देखना मेरे बाबूजी ने और बड़े भैया दोनों ने एक बार में सिखाया था। और ऐसे ही परीक्षा लेने के लिए थोड़ी देर बाद पूछा कि बता घड़ी में अभी कितने बजे हैं। मैंने घड़ी देखी और बोला 1:30 बजे हैं। तब बाबूजी ने समझाया कि अभी 1:30 बजे हैं। शुद्ध हिंदी में 1 और 2 के साथ जब आधा जोड़ा जाए तो 1.5 और 2.5 कहा जाता है। जी हाँ, ये 1:30 1:2 का चक्कर जो है ये कई बच्चों के साथ होता है। एक और श्रोता कहते हैं कि पहले के जमाने में चाबी वाली गोल अलार्म घड़ी थी। सबसे पहले मेरे दादाजी ने उसे घड़ी में समय कैसे देखा जाता है ये सिखाया था। और एक और श्रोता बता रहे हैं कि बचपन में मेरी माताजी ने मुझे मुंबई से घड़ी लेकर दी थी और पहचान कराई थी जिसमें सुइयां थी और चाबी रोज घुमाना होता था। पेंडुलम वाली बड़ी घड़ी थी, ये भी एक साथी ने बताया है। और एक और श्रोता कह रही है कि सबसे पहले मुझे घड़ी की पहचान मेरे नाना जी के घर दीवार पर एक ब्लैक घड़ी लगी थी, वो टिक टिक करती थी और जब घंटा होता तो तेज आवाज में टन की आवाज होती, तब मेरे नाना जी ने समय देखना सिखाया था। क्या बात है, समय की कितनी सारी यादें ताजा हो गई। और बात आज माँ की भी हो रही है, घड़ी की भी हो रही है, समय की भी हो रही है। और जो समय है वो जिस तरह सबसे बड़ा शिक्षक होता है उसी तरह माँ भी होती है। आप क्या कहते हैं इस बारे में? और ये गीत सुनकर बताइए किस फिल्म का है।

भाई हमारे साथियों ने तुरंत ही कहा कि इसमें पूछने की क्या बात है, ये तो गाना सुनकर ही समझ में आ गया है कि गीत गाता चल फिल्म का गाना है। बिल्कुल, जसपाल सिंह और साथियों की आवाजें हैं, गीत और संगीत रविंद्र जैन का। बहरहाल आसान सवाल भी रहने चाहिए जिंदगी के इस सुरीले सफर में, क्योंकि कभी कभी आसान सवालों का भी दिल करता है। घड़ी से जुड़ी यादों के बारे में हमारी एक साथी ने शेयर की है अपनी बात। पुरानी घड़ी और बचपन का समय, बचपन की सबसे सुनहरी यादों में एक याद उस पुरानी घड़ी की है जो घर की मुख्य दीवार पर टंगी रहती थी। उसकी टिक-टिक की आवाज सन्नाटे में भी एक संगीत की तरह महसूस होती थी। मुझे याद है स्कूल से घर आने के बाद मेरी पहली नजर उसी पर जाती थी, ये देखने के लिए कि खेल का समय होने में अभी कितने मिनट बाकी हैं। क्या बात

है। और एक और श्रोता कह रही है कि हमें तो अभी भी कुकू घड़ी ही सबसे अच्छी लगती है। क्या बात है भाई, घड़ियों के बारे में भी ये होता है कि कौन सी घड़ी कब मिली, उससे भी बात होती है, जैसा कि हमारे इन श्रोता ने बताया है। सबसे पहले मुझे घड़ी मेरी सगाई के दौरान 21 साल की उम्र में मिली थी। वो जापानी घड़ी थी, बड़ी साइज और पीतल की चेन की थी और चाबी भरने वाली थी, तारीख भी दिखाती थी। हाँ, ये उस वक्त बड़ा चार्म होता था जब तारीख दिखाने वाली घड़ियां भी आ गई थी। एक और श्रोता ने बताया, सुरेंद्रनाथ त्रिपाठी जी के मखमली स्वर संगीत से सजा, संगीत सम्राट तानसेन का बेहतरीन गीत, स्वर लता जी महेंद्र कपूर जी के स्वर में, शैलेंद्र जी का लिखा सारगर्भित गीत। एक और श्रोता ने कहा है कि राजू जी, मेरी दादी माँ और नानी दोनों घरों में बड़ी पेंडुलम वाली घड़ी बैठक वाले कमरे में लगी थी और हर घंटे टन टन बोलती थी चाबी भरने वाली। फिर पापा लाए थे इलेक्ट्रॉनिक वॉल क्लॉक। एक और श्रोता बता रहे हैं कि मुझे हमारे टीचर ने घड़ी में टाइम देखना सिखाया था और हमारे घर एक टाइम पीस होता था जो मेज पर रखा होता था और उसमें सुबह 4 बजे का अलार्म देकर सोते थे। हाँ, वो सुबह 4 बजे वाला अलार्म लगाने वाला किस्सा भी तो है। बताइए आप सब में से किसने किसने वो अलार्म लगाया है। और एक सवाल और है, ये बैकग्राउंड संगीत की बात जब हमने कही तो बताइए कि बहुत सी फिल्में ऐसी होती हैं जिनका बैकग्राउंड संगीत बड़ा खींचने वाला होता है, आकर्षित करने वाला होता है और कई बार याद भी रह जाता है। क्या आपको किसी फिल्म का कोई बैकग्राउंड संगीत अभी तक याद है? हो तो हमें बताइए और जरा इस गाने को सुनकर बताइए कलाकारों के नाम।

वैसे एक श्रोता ने बताया कि आज की भारत में कई ऐसे संकेत हैं जिनसे कुछ मुख्य शब्द उभरते हैं। मेरे हिसाब से आज के संभावित शब्द ये हो सकते हैं, समय, बैकग्राउंड संगीत, धुन, दुनिया, मेला, ख्वाब, सिलसिला, वीराना, मिलन, बहार, पायल, तन्हाई, गीत, माँ। आगे लिखा है, लोरी, सबक, दिल, नगमा, तराना, जिंदगी, इंतजार। एक और श्रोता कह रहे हैं कि यूं ही कट जाएगा सुरीला सफर कार्यक्रम का गीत नजर आएंगे इबारत को पढ़ने से। और ये ख्वाब के सिलसिले शब्द लेकर गीत।

0: बहुत बहुत शुक्रिया। फिल्म के कलाकारों का नाम बताया, अमिताभ बच्चन और रेखा का नाम हमारे ज्यादातर श्रोताओं ने लिखा है, जया भादुड़ी और संजीव कुमार भी थे इस फिल्म में। अब मदर्स डे की बात है तो हमारी एक श्रोता कहती हैं कि आज मदर्स डे भी है और आज विविध भारती पर घड़ी की बात, तो वो दिन याद आया जब मैंने अपनी माँ की बात नहीं मानी और उनकी दी हुई एक बहुत महंगी और रेयर घड़ी खो दी थी। बात उन दिनों की जब मैं स्कूल में थी, स्कूल के लिए रेडी हो रही थी, बाहर बहुत तेज बारिश, पर उस दिन स्कूल जाना जरूरी था। माँ ने चलते चलते कहा आज घड़ी मत पहन कर जा, बारिश में खराब हो जाएगी। मैंने बात नहीं मानी और ना जाने कैसे वो घड़ी रस्ते में गिर गई। बहुत दुख हुआ, लगा माँ की बात को मानना चाहिए था। हाँ, माँ की बात हमेशा माननी चाहिए। एक और श्रोता कह रहे हैं कि गणित विषय पढ़ते समय सचित्र अध्ययन किया गया था और घड़ी का ज्ञान तभी से है। विवाह में मिले घड़ी को इनके एक रिश्तेदार जो थे वो घड़ी देखने के बहाने कलाई से उतार कर ले भागे थे। अब घड़ी की पूर्ति गैजेट्स के रूप में मोबाइल और दीवार घड़ी भी है। क्या बात है। एक और साथी कह रहे हैं कि आज कलाई घड़ी कम पहनी जाती है क्योंकि मोबाइल फोन का चलन बढ़ गया है, मगर मैं हमेशा घड़ी पहनता हूं। जी हां, घड़ी पर नजर रखने के लिए बहुत सारे लोग आज भी हमेशा कलाई में घड़ी पहनते हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि सुरीला सफर कार्यक्रम की परिकल्पना बड़ी निराली और मनोरंजक है। इसके पहले कुछ बातें, कुछ गीत बाद में गीतमाला के विषय में कई बार दोहराए जाते थे, फिर भी चाहे वो कलाकार से जुड़ी हो या किसी विषय पर हो जिससे रुचि कम होती जा रही थी, लेकिन अब एक इबारत देकर उसमें कुछ शब्दों पर आधारित गीत सुनाए जा रहे हैं और श्रोताओं को भी सहभागी बनाया जा रहा है। अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। एक श्रोता कहती है कि राजू जी, बचपन में हमारे घर में अलार्म की घड़ी थी और उसके नंबर रात को चमकते थे, शायद रेडियम के थे। उस घड़ी का अलार्म बार बार सेट करने और सुनने में बड़ा मजा आता था, उसके कारण डांट भी मिलती थी। समय देखना तो माँ और पिताजी ने सिखाया। और हम घड़ी की बात कर रहे हैं, समय की बात कर रहे हैं, तो कालखंड का कैसा बदलाव है वो अगले गाने में, लेकिन एक संदेश और है। हम छोटे भाई बहनों को हमारी दादी ने घड़ी देखना सिखाया था। वो हर एक घंटे बाद हमें पूछती थी अभी कितने बजे, अभी कितने बजे। जो सही जवाब देता था उसे चॉकलेट मिलती थी। बैकग्राउंड संगीत वाले सवाल की बाबत हमारी श्रोता कह रहे हैं कि शोले फिल्म के बैकग्राउंड संगीत को सुनकर पहचान जाते हैं फट से। क्या बात है। अपनी एचएमटी के रिस्ट वॉच वाली चाबी वाली घड़ी को याद किया हमारे एक श्रोता ने, जो उन्होंने पहली तनख्वाह मिलने पर 1980 में ली थी और आज भी पहनते हैं। एक और संदेश है, आज समय घड़ी की बात हो रही है तो बचपन की घड़ी वाला एक बात याद आ गई। मेले में तरह तरह की घड़ी मिलती थी, दशहरे के मेले में हमने खरीदी और स्कूल में पहन के चली गई। उस समय घड़ी देखना आता नहीं था और ना ही इतने घर में घड़ी हुआ करती थी। सिर्फ एक बाबूजी के पास घड़ी थी एचएमटी की, बाद में एक अलार्म घड़ी माँ के पास देखी थी। मैं घड़ी पहनकर जब स्कूल गई तो हमारी दीदी जी ने कहा कि घड़ी पहन के आई हो तो बताओ कितना टाइम हुआ, और मैंने हंस के कहा कि ये तो नकली घड़ी है, कितना बज रहा है, मुझे तो कुछ पता नहीं था। पर मैंने स्कूल का टाइम 10 बजे तो मैंने बोल दिया 10 बजे, इनके स्कूल का टाइम होगा 10 बजे, और संयोग से वो घड़ी की सुई भी 10 पर ही थी। उन्होंने पूछा घड़ी देखना आता है, मैं बोली मैं नहीं, तो उन टीचर ने हमें घड़ी देखने सिखाया था। तब ज्यादातर घड़ियां रोमन लिपि में ही आती थी जो हमारे समझ में नहीं आती थी, अलार्म घड़ी रहती थी। जब मैट्रिक बोर्ड का एग्जाम शुरू हो रहा था तब मुझे घड़ी मिली थी। बाद में सासू माँ जब मुझे देखने आई थी तब मुझे घड़ी दी थी। और एक और श्रोता ने बताया कि मुझे मेरे भाई और बहन ने मिलकर एक साथ बताया था कि कैसे समय देखते हैं, तब मुझे आसानी से समझ में आ गया था। अब मैं बहुत सारे बच्चों को समय देखना भी सिखाता हूं क्योंकि मैं गणित का अध्यापक हूं, तो ये तो मेरा कर्तव्य भी हो चुका है। अब अगला गाना बहार शब्द आ रहा है, तो चलिए हम कालखंड के उस तरफ चलते हैं और सुनते हैं गाना। बताइए स्वर किसका है।
1: आई बहारा जाई बहार, बहारा आई बहार, गुलशन में

सिलसिला फिल्म के संगीत निर्देशक का नाम शिव हरि बताया हमारे साथियों ने, बहुत बहुत शुक्रिया। और घड़ी की भी कई सारी बातें हैं। एक श्रोता कह रहे हैं कि तब घड़ी की वैल्यू इतनी थी जितनी आज मोबाइल की है। एक और संदेश है, आजकल की तमाम डिजिटल तथा खूबसूरत घड़ियों के रहते हुए भी मुझे अब भी वही घड़ी अच्छी लगती है जो बचपन में पहली बार देखी थी, पेंडुलम वाली बड़ी सी लकड़ी की घड़ी, और जिसमें हर संडे को मेरे चाचा जी चाबी दिया करते थे। बाबा के जाने के बाद बहुत साल तक मैंने उसे मेंटेन रखा, लेकिन बाद में वो खत्म हो गई। एक और श्रोता बता रहे हैं, कितनी भी महंगी मोबाइल हाथ में ले लीजिए पर घड़ी पहनने का एक अलग ही अंदाज होता है। एक और श्रोता ने जानकारी दी है कि जर्मन के ताला बनाने वाले पीटर हैनलिन ने सबसे पहले 1505 में घड़ी बना ली थी। क्या बात है। एक और संदेश है कि हमारे विवाह में लेडीज घड़ी और जेंट्स घड़ी दोनों मिली थी, ज्यादा समय तक संभाल नहीं सके, खराब हो गई। एक और संदेश है, समय बड़ा कीमती है, समय का अपना महत्व है। नाना जी ने

देखना सिखाया था कि घड़ी की बड़ी सुई जिस पर हो उसको 5 से गुणा कर दो, छोटी सुई जिस पर हो उतने बचकर उतने मिनट। और एक और संदेश में गुजराती की एक कहावत है, माते माँ बीजा बागड़ा नावा, मतलब में आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना है जितना रेगिस्तान में हवा का। कुछ शायद छूट गया है इस कहावत में, या जो अर्थ इन्होंने लिखा है उसमें कुछ छूटा है। अगर मैं सही हूँ तो सही अर्थ के साथ एक बार फिर से अपना जवाब लिख भेजिए कृपया। और एक श्रोता कह रहे हैं कि समय का वक्त का वाकई बहुत बलवान है, समय कब कौन सा रंग बदलेगा कोई नहीं जानता। और आज चलते हैं सुरीले सफर पर, मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी दी हैं। समय कहता है मैं फिर ना आऊंगा, क्या पता मुझे हंसाऊंगा या रुलाऊंगा। इंसान जीना है, इस पल को जी ले क्योंकि इस वक्त को अगले पल तक ना रोक पाऊंगा। अभी भी वक्त है समझ लो, कीमत पैसों की नहीं समय की करो, फिर आपकी कीमत वक्त तय करेगा। क्या बात है, और बड़ा प्यारा सा संदेश। अम्मा तो गोंद की तरह होती है, जो दिखती तो नहीं है पर जोड़ती सबको है, ब्रह्मांड की सभी माँ के लिए प्यार और आशीर्वाद का इमोजी बनाकर भेजा है। भाई हाँ, सच में सारी ब्रह्मांड की माओं के लिए ढेर सारा प्यार दुलार। और अब अगला शब्द आ रहा है पायल पर, तो देखिए जरा ये गाना सुनिए और बताइए कि किस फिल्म का है। और हाँ, हम आपको बता दें कि जो अभी हमने गाना सुना था वो डॉक्टर फिल्म से था। आवाज के बारे में हमने पूछा था कि किसकी आवाज है, अभी उस जवाब का हम इंतजार कर रहे हैं। ये गाना सुनिए।

कानपुरी के का लिखा गीत और लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीत, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथियों ने घड़ी की बात भी की है और माँ के बारे में भी बात की है। एक श्रोता कह रहे हैं कि माँ की कदर जरूर करनी चाहिए, क्योंकि माँ जीवन में सिर्फ एक बार मिलती है, वो किस्मत वाले होते हैं जिनकी माँ होती है। पंकज मलिक साहब का नाम बताया हमारे सभी साथियों ने, कुछ ने वैसे केएल सहगल जी का भी नाम लिया है, लेकिन ये गीत जो डॉक्टर फिल्म का हमने आपको सुनवाया था वो पंकज मलिक के स्वर में था। एक श्रोता कह रहे हैं कि मोबाइल में घड़ी आने के बाद लगभग सभी प्रकार की घड़ियां विलुप्त सी हो गई हैं। और एक ने संदेश में कहा है कि जब मैं बैंक में जाता था तब दीवार पर घड़ी टंगी घड़ी को 15 मिनट आगे रखता था ताकि देर ना हो और वक्त पर पहुंच जाऊं। एक और श्रोता का संदेश है कि कुछ घड़ियों में तो केवल डॉट होते हैं, नंबर होते ही नहीं, दिमाग घूम जाता है अभी भी उसको देखकर। अपनी पहली घड़ी अपने स्कॉलरशिप के पैसों से खरीदी थी, हमारी एक साथी ने बताया। वाह क्या बात है। एक श्रोता कह रहे हैं कि खराब घड़ी भी सही समय बताती है। जी हाँ, दिन में दो बार बताइए कब कब। और एक श्रोता ने कहा है कि आजकल बहुत बड़ी बड़ी घड़ियां आ गई हैं, न्यू जनरेशन को बहुत अच्छी लगती हैं, पर मुझे छोटी नाजुक सी घड़ी अच्छी लगती है। मॉर्निंग वॉक के लिए सिर्फ स्टेप गिनने के लिए मैं पहनती हूँ। घर पर होते हैं तो दीवार पर लगी घड़ी, बाहर जाते हैं तो रिस्ट वॉच जो पति देव ने खरीद कर दी है। क्या बात है। दुनिया में माँ वो शब्द है जिसमें पूरी कायनात सिमटी हुई है। माँ का प्यार निस्वार्थ और असीम होता है, जिसे शब्दों में पिरोना आसान नहीं है। हर साल माँ के बलिदान, त्याग और समर्पण के लिए मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं। इस दिन हम सभी अपनी माँ के प्रति सम्मान और प्यार जाहिर करते हैं। वैसे एक दिन की जरूरत नहीं होती, लेकिन इस दिन हम उन्हें महसूस करा सकते हैं कि वे हमारे लिए जीवन में कितनी अनमोल हैं। समय का सुरहल पर बदलता रहता है, कभी उसमें ख्वाबों की मिठास होती है, कभी वीरानियों की सिसकी, कभी मिलन की बहार झनकती है, तो कभी तन्हाई की गूंज। उसके गीतों में माँ की लोरी भी है और जीवन का सबक भी। बचपन की वो शरारतें याद हैं, जब छुपाई हुई टेस्ट कॉपी अचानक सफाई में मिल जाती, या डिनर से पहले किचन में हमारी चोरी पकड़ी जाती तब अचानक हवा में तैरती चप्पर रिमोट या गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देता वो बेलन प्रकट हो जाता था। हमें सही गलत का फर्क समझाने की उनकी अपनी एक अनूठी भाषा थी। शायद वही हमारा पहला सबक था कि कर्मों का फल तुरंत मिलता है। माँ को का वो निशाना कभी खाली नहीं गया, चाहे वो शरारत रोकना हो या हमें सही रास्ते पर रखने की उनकी जिद। उन्होंने हमें अनुशासन की उस आग में तपाया ताकि हम कुंदन सके। आज हमारी हर कामयाबी और हमारा संभाला हुआ चरित्र दरअसल उनकी उड़ती हुई नसीहतों की देन है, उस सख्त प्यार को नमन जिसने आज हमें आसमान छूने के काबिल बनाया। क्या बात है। और इसी बात पर कार्यक्रम का अगला गाना बताइए किस फिल्म का है और आवाज की

बहुत बहुत शुक्रिया सही जवाब के लिए। तलाश फिल्म का गीत सचिन देव का संगीत निर्देशन, उन्हीं की आवाज में ये गीत आपने सुना जिसे लिखा था मजरूर सुल्तानपुरी ने। एक श्रोता लिखते हैं कि माँ शब्द एक छोटा सा भला ही हो, माँ वो इमारत है, वो पेड़ है जिसकी छांव में बैठकर दुनिया के सारे सुकून मिलते हैं। भगवान हर जगह नहीं रह सकता, इसीलिए माँ, आज मेरी माँ को दुनिया से गए 5 साल हो गए, लेकिन उनका एहसास आज तक मेरे साथ है, उसे मैं हर जगह महसूस करती हूँ। घड़ी के बारे में भी बहुत सारे संदेश हैं। मेरे पिताजी की शादी में मिली हुई घड़ी अभी तक मेरे पास चालू हालत में मौजूद है। वाह, सप्ताह में एक दिन निकालकर चाबी भर के रख देता हूँ, क्या बात है। गुजराती की कहावत के लिए हमने कहा था कि एक बार फिर से भेज दें, बिल्कुल भेजा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। माते माँ वीजा वगड़ा नावा, मतलब माँ के आगे दूसरे लोगों का महत्व इतना ही है जितना रेगिस्तान में हवा का। तो सोचिए भाई, रेगिस्तान में हवा का क्या महत्व है। एक संदेश में कहा है कि जब बच्चे छोटे थे तो मैं सभी घड़ियों को 10 मिनट बढ़ा कर रखती थी, आजकल इसे 5 मिनट कर दिया है, क्या बात है। और माँ को लेकर भी बड़ा एक दिल को छूने वाला संदेश है। लिखा है कि हर रिश्ते में मिलावट देखी, कच्चे रंगों की सजावट देखी, लेकिन सालों साल देखा है माँ को, उसके चेहरे पर ना कभी थकावट देखी, ना ममता में कभी मिलावट देखी। माँ भले ही पढ़ी लिखी हो या नहीं, पर संसार का दुर्लभ और महत्वपूर्ण ज्ञान हमें माँ से ही प्राप्त होता है। माँ को शब्दों में बांध पाना असंभव है। आगे लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि दुनिया का कोई रिश्ता छोटा या बड़ा नहीं होता, लेकिन माँ के बराबर, मेरी माँ के बराबर कोई और खड़ा नहीं होता। मेरे इंतजार में खुली आंखों में बस वही सो सकती है, मेरे दुख में से ज्यादा बस वही रो सकती है, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं, क्या बात है। दिल को छूने वाला संदेश, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और श्रोता ने कहा है कि खुशी को ढूंढने से गम मिलते हैं, ये गम या गम जिंदगी में हरदम मिलते हैं, जो दिल के सहारे दर्द बांट ले ऐसे लोग जिंदगी में कम मिलते हैं। तो जरा दिल से दिल मिलाकर बात करिए और इस गाने को सुनकर बताइए किस फिल्म का है। और हाँ, बैकग्राउंड संगीत के विषय में बहुत कम जवाब आ रहे हैं।

मेम साहब, फिल्म का गाना किशोर कुमार की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, मदन मोहन का संगीत। और अभी हमें जवाब तो नहीं मिला है, चलिए देखते हैं कि बैकग्राउंड म्यूजिक को लेकर क्या क्या जवाब आने वाले हैं। एक बड़ा ही मार्मिक संदेश मिला है। हमारे यहाँ जबलपुर में बरगी डैम में अभी कुछ दिन पहले क्रूज पानी में डूब गया था, जिसमें एक मां ने अपने बेटे को आंचल में इस तरह से लपेटा हुआ था कि वो मरने के बाद भी छूटा नहीं था। इस दुर्घटना में मां बेटे दोनों नहीं बच पाए। ऐसी ही होती है मां, बस अपनी धड़कनों को अंतिम समय तक अपने लाडले या लाडली को देने के लिए उत्सुक। सिर्फ वही एक रिश्ता प्यारा सा। घड़ी को लेकर संदेश आया कि शादी के समय फोटोग्राफर ने मुझसे सवाल किया, घड़ी का वो समय बताएं जब घंटे और मिनट का कांटा एक दूसरे पर हो और बजे भी उतने ही मिनट हो। तो उत्तर है 15:15 या 3:15 या 3:15। घड़ी मिनट दोनों कांटे एक सीध में होंगे। क्या बात है, ये जवाब आपने फोटोग्राफर को बता दिया था या नहीं? मेरी दुनिया है माँ तलाश फिल्म का जो गाना था, उसके लिए कई श्रोताओं की बात आई है कि ये तो मेरी भी पसंद थी। और एक श्रोता ने कहा है कि मैंने एक ही पसंद लिखी थी, वो स्वीकार हो गई, तो धन्यवाद का है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब चलते चलते इस गाने की झलक, वक्त ज्यादा नहीं है, गाना सुनिए, बताइए फिल्म का नाम।

जी हाँ, गैम्बलर फिल्म का ये गाना किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, नीरज के बोल सचिन देव बर्मन का संगीत। ये था आज के कार्यक्रम का आखिरी गाना जो कि झलक के रूप में आपने सुना, और अब इस कार्यक्रम से इजाजत लेने का वक्त आ गया है। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन, विविध भारत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने, 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंता बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया, सरकार बनाने का दावा पेश किया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु ने आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी है। ध्यान, प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: प्रधानमंत्री आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है, जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी, बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: तमिलक वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: सी जोसेफ विजय एनुम नान तमिलनाडु अरसिन मुदलमेच्चर एन्र मुरैयिल एनदु गवनत्तिर्कुल्लावदुम तेरियवरुवदुमान एन्द पोरुलैयुम முதலமைச்சரின் கடமைகளை உரியவாறு நிறைவேற்ற தேவையான அளவுக்கன்றி ஒருவரிடமோ பலரிடமோ நேர்முகமாகவோ மறைமுகமாகவோ அறிவிக்க

0: சொல்லவோ வெளிப்படுத்தவோ மாட்டேன் என்று ஆண்டவன் மீது ஆணையிட்டு உறுதிமொழிகிறேன்.
1: श्री विजय के साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली है. इनमें के जी अरुणराज, आधव अर्जुन, एन आनंद, सेल्वी एस कीर्ताना और डॉक्टर टी के प्रभु शामिल हैं. इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं.

0: महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरकुमार दिसनायका ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि एनडीए का नेता चुना जाने के बाद श्री शर्मा ने राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य से मुलाकात की।
1: आज सुबह गुवाहाटी में आयोजित भाजपा विधायक दल की बैठक में भाजपा के 8 विधायकों ने, जिनमें रंजीत कुमार दास, विश्वजीत दोईमरी और अजंता नियोग शामिल है, डॉक्टर हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव नेता पद के लिए रखा। बैठक में उपस्थित अन्य सभी विधायकों ने इस प्रस्ताव

0: तो दो विधायकों के हस्ताक्षर प्रस्तुत करते हुए डॉक्टर शर्मा ने नई सरकार गठन का औपचारिक दावा पेश किया। एनडीए सरकार के लगातार तीसरे कार्यकाल का शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित होगा। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं।
2: 90 मीटर ऊंची क्रेन की सहायता से एक विशाल धार्मिक कुंभ को मंदिर के शिखर तक पहुंचाया जाएगा, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पवित्र जलाभिषेक अनुष्ठान संपन्न होगा। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के विशेष अवसर पर भारतीय वायुसेना भी प्रभास पाटन की पावन धरती पर रोमांचक हवाई करतब प्रस्तुत करेगी, जिसमें हवा से हवा और जमीन से हवा में समन्वित उड़ान प्रदर्शन दिखाई जाएंगे। आज सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो के लिए हवाई निरीक्षण और रिहर्सल किया, जिससे आसमान में मनमोहक दृश्य देखने को मिले। आज हेलीकॉप्टर से मंदिर के शिखर पर पुष्प की गई। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि लोकतंत्र को मजबूत करने में प्रत्येक मतदाता की भागीदारी होनी चाहिए। आज तिरुपति में संवाददाताओं से चर्चा में उन्होंने पश्चिम बंगाल, असम, केरलम, पुदुचेरी और तमिलनाडु में शांतिपूर्ण चुनाव पर संतोष व्यक्त किया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त 2 दिन के तिरुपति दौरे पर हैं। नागालैंड सरकार ने गाड़ियों पर ऐसे नारों, स्टिकर, संकेतकों और पहचान चिन्हों के उपयोग पर पाबंदी लगा दी है जो धर्म आधारित है, गैर सरकारी संगठनों से जुड़े हैं और गैर कानूनी है। ये प्रतिबंध निजी और सार्वजनिक वाहनों पर लागू होगा। 30 अप्रैल को जारी अधिसूचना में वाहन मालिकों से कहा गया है कि वे अधिसूचना जारी होने के 45 दिन के भीतर इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। शिक्षा मंत्रालय गर्मी की छुट्टियों में देश के सभी स्कूलों में भारतीय भाषा ग्रीष्मकालीन शिविर का आयोजन करेगा। एक सप्ताह का यह शिविर भारतीय भाषाओं में बुनियादी संवाद कौशल सीखने, शब्दों को जानने, अपना परिचय देने, वास्तविक जीवन की बातचीत और संस्कृति की सराहना पर केंद्रित होगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। गुरुग्राम की धन शोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्कार्ड रियल्टी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके 4 परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन के साथ युद्ध अब समाप्ति की ओर है। उन्होंने पश्चिम एशिया संघर्ष के भी जल्द समाधान की आशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यदि तनाव और बढ़ता है तो सभी पक्षों को भारी नुकसान होगा। वर्ष 2022 में यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों के साथ पहले से खराब रूस के संबंधों में और कड़वाहट आ गई है। यूरोपीय नेताओं से वार्ता के बारे में पूछे जाने पर श्री पुतिन ने कहा कि ऐसी किसी भी बातचीत के लिए जर्मनी के पूर्व चांसलर गेरहार्ड श्रोएडर उनके पसंदीदा नेता हैं। श्री पुतिन ने यह भी कहा कि स्थायी शांति समझौते को अंतिम रूप दिए जाने के बाद ही वे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की से मिलेंगे। इस बीच दोनों देश रूस के वार्षिक विजय दिवस परेड के दौरान 3 दिन के संघर्ष विराम पर सहमत हुए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने कल कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अस्सानी से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच पश्चिम एशिया संघर्ष को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर चर्चा हुई। श्री अस्सानी ने एक दिन पहले वाशिंगटन में उपराष्ट्रपति जेडीवेन से भी मुलाकात की थी। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में अमरीका और ईरान के बीच हुई वार्ता का पहला दौर असफल रहा था। वार्ता का दूसरा दौर नहीं हो पाया था। कतर भी अमरीकी अधिकारियों के साथ मध्यस्थता के लिए काम कर रहा है। अमरीका ने ईरान के साथ बातचीत में कतर को विशेष रूप से प्रभावी बताया है। आज विश्व ल्यूपस दिवस मनाया जा रहा है। यह दिवस ऑटो इम्यून रोग ल्यूपस के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। ल्यूपस का कोई ज्ञात इलाज नहीं है और यह रोजमर्रा के जीवन पर असर डालने वाली बीमारी है। और अब खेल खबरों के साथ है प्रशांत कुमार।
3: चीन के शंघाई में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने चीन को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। दूसरे चरण में आज दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहोत की तिकड़ी ने मेजबान और खिताब के प्रबल दावेदार

0: बार चीन को शूट ऑफ में हराया। इससे पहले भारत ने सेमीफाइनल में रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में जगह बनाई थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दो मुकाबले खेले जाएंगे। चेन्नई में आज दोपहर 3:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मुकाबला होगा। वहीं रायपुर में शाम 7:30 बजे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस आमने सामने होंगे। अंक तालिका में चेन्नई 6ठे, लखनऊ 10वें, बेंगलुरु 4थे और मुंबई 9वें स्थान पर है।
1: हंता वायरस से संक्रमित रहा जहाज स्पेन के टेनरिफ द्वीप पहुंच गया है। डच ध्वज वाला एमवी होंडियस आज स्पेन के ग्रेनाडेला बंदरगाह पर पहुंचा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपीय संघ द्वारा स्पेन से यात्रियों को निकालने का अनुरोध किए जाने के बाद यह जहाज 6 मई को टेनरिफ के लिए रवाना हुआ था। इस जहाज पर 4 मई को हंता वायरस के 3 मामलों की पुष्टि हुई थी। 8 मई को 3 मौतों सहित कुल 8 मामले सामने आए। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का 73वां संस्करण आज सुबह दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में आयोजित किया गया। इसमें रक्षा बलों के जवान भी नागरिकों के साथ शामिल हुए। कार्यक्रम में 800 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया। और अब जानकारी मौसम की। गुजरात और राजस्थान में कल तक लू चलने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी बनी रह सकती है। अगले 7 दिन में उत्तर पश्चिम भारत में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि की आशंका है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों में केरलम, माहे, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारिक्काल में मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2-3 दिन उत्तर पूर्वी भारत, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, लक्षद्वीप, ओडिशा, पश्चिम बंगाल तथा सिक्किम के हिमालय से सटे इलाकों में गरज चमक का अंदेशा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने। 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली। हिमंत बिस्व शर्मा को असम में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल का नेता चुना गया। अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री को 100 करोड़ रुपए से अधिक के जीएसटी धोखाधड़ी मामले में 7 दिन की रिमांड पर भेजा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा यूक्रेन के साथ संघर्ष जल्द समाप्त हो सकता है। और शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को हराकर स्वर्ण जीता। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आपने ट्यून किया है देश का सबसे लोकप्रिय चैनल विविध भारती। आइए सुनते हैं कालजयी गीतों का कार्यक्रम सदाबहार नगमे। चलो चलो।

माँ की ममता भरी गोद का कोई अनमोल है और उसका कोई सानी नहीं है। जागृति फिल्म का ये गाना आपने सुना, आशा भोसले की आवाज में प्रदीप के बोलों को संगीत में ढाला था हेमंत कुमार ने। और आइए अब सुनते हैं फिल्म लाजवंती का ये गाना।

0: बताना, सच सच कहना, कुछ न छुपाना। हम तो तुम्हें थे रोज बुलाते, रोज तुम्हारे गीत थे गाते, और कभी तो तुम न आए, आज तुम्हें हम कैसे भाए।
1: अच्छा अच्छा बतलाता हूँ बिल्कुल सच्ची सच्ची, ठहरो पीछे बतलाऊंगा, पहले दो एक पत्ती। नु, नु, नु, नु, नु, नु, नु, नु, नु, ये

0: अम्मा जी नजदीक तो आओ, ये बुढ़िया है कौन बताओ, टुक टुक हमको ताक रही है, बैठी चरखा काट रही है।
1: हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ, ना ना यूं ताना मत मारो, ये तो

0: मेरी माँ भी मामा प्यारे रहती है अब देश तुम्हारे, उससे तुम एक बार मिला दो, उसको मेरे पास बुला दो।
1: हाँ हाँ मुन्नी दूर नहीं अब तुझसे तेरी माता, तुझ पर तो उसकी ममता का साया है लहराता। एक तू ही क्या

0: आशा भोसले, मन्ना डे और साथियों का गाया हुआ लाजवंती फिल्म का ये गाना आपने सुना, जिसे लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी सचिन देव बर्मन ने। सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।
1: एक बेमिसाल शायर
2: मेरे दिल के किसी कोने में एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देख कर दुनिया बड़ा होने से डरता है।
1: एक शानदार शख्सियत,
3: मैंने रंगमंच में कम से कम 10 साल जयपुर में थिएटर किया, वो एक लड़कपन का दौर था हमारा।
1: विविध भारती परिवार के सदस्य राजेश रेड्डी,
3: वो मेरे पूरे करियर का स्वर्णिम दौर था, स्टीम का जवाब नहीं, जिसने मुझे इतने चढ़ंग से इन चीजों को संवारने और साकार करने का अवसर दिया।
1: कुछ बेमिसाल किस्से,
3: मैंने पढ़ा जाने की इतनी उड़ान बाकी है, इस परिंदे में जान बाकी, और जगजीत म्यूजिक के साथ शुरू हो गए, ये किसी शायर के साथ नहीं हुआ।
1: आज के मेहमान राजेश रेड्डी, 13 मई शाम 4 बजे और 14 मई सुबह 10 बजे, सिर्फ विविध भारती पर।
2: जाने कितने

सदाबहार नगमे प्रोग्राम की अगली पेशकश टैक्सी स्टैंड फिल्म से है, आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में। बोल मजनू सुल्तानपुरी के हैं और संगीत से सवारा है चित्रगुप्त ने।

फिल्म काली टोपी लाल रुमाल का ये गीत आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, धुन बनाई थी चित्रगुप्त ने, और अब एक मीठा सा नगमा चंदन फिल्म से सुनते हैं, राजेंद्र कृष्ण का लिखा और मदन मोहन का संगीतबद्ध किया हुआ।

मोहम्मद रफी का गाया। औलाद फिल्म का ये गाना बहार लेकर आया। शब्दों की मोती पिरोए मजरूह सुल्तानपुरी ने और धुन की खुशबू बिखेरी चित्रगुप्त ने। और अब कार्यक्रम का अगला गाना।

दिल से प्यारा ये गीत इशारा कर रहा है मोहर फिल्म का कि आज के कार्यक्रम की यही है अंतिम प्रस्तुति। लता मंगेशकर और साथियों की आवाजों में आपने सुना ये गाना, राजेंद्र कृष्ण की रचना को संगीत में पिरोया मदन मोहन ने। तो अब आज के सदाबहार नगमे कार्यक्रम से दीजिए इजाजत, सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती। अगला कार्यक्रम मन चाहे गीत बस थोड़ी देर में।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वें जयंती समारोह में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने सेवा, आध्यात्मिकता और सामाजिक परिवर्तन में आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन की भूमिका की सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के निर्माण में स्वस्थ युवाओं की अहम भूमिका है।
1: विकसित भारत का निर्माण ऐसे युवाओं से ही होगा, जो युवा मानसिक रूप से शांत हो, जो सामाजिक रूप से जिम्मेदार हो और जो समाज के प्रति संवेदनशील हो। इसलिए स्पिरिचुअल वेलबींग, मेंटल हेल्थ, योग, मेडिटेशन, इस पर काम करने वाली आपकी ये महत्वपूर्ण गतिविधि, इन सब की भूमिका बहुत बहुत अहम है।
0: श्री मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद भी जाएंगे, जहां वे कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। तमिलग वेत्री कड़गम टीवी के पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री सी जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। इस अवसर पर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और तमिल फिल्म उद्योग की कई हस्तियां मौजूद थीं। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने फोर्ट सेंट जॉर्ज स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय जाकर कई फाइलों को मंजूरी भी दी। इनमें प्रत्येक परिवार को 200 यूनिट मुफ्त बिजली, महिला सुरक्षा और मादक पदार्थों की तस्करी से निपटने के लिए विशेष इकाइयों की स्थापना से जुड़ी फाइलें शामिल हैं। राज्य में विधायकों का शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार तमिलनाडु सरकार के साथ मिलकर लोगों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए काम करेगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायक ने भी टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय को तमिलनाडु का मुख्यमंत्री बनने पर बधाई दी है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल का आज विस्तार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल शाम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की थी। राज्य सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय प्रसाद के अनुसार यह कार्यक्रम लखनऊ के जनभवन में 3:30 बजे से आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉ हिमंत बिस्व शर्मा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में हुई बैठक में 8 भाजपा विधायकों ने डॉ हिमंत बिस्व शर्मा के नाम का प्रस्ताव रखा। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की रिमांड पर भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 के रोमांचक फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। रिकर्व टीम में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत शामिल थीं। इससे पहले सेमीफाइनल में भारत ने 10 बार के ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

लव इन टोक्यो का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा था हसरत जयपुरी ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। और अब अगली फरमाइश किसकी है? अगली फरमाइश ने छू लिया है मन को। याराना फिल्म का गाना सुनवा रहे हैं, जिसे सुनना चाहते हैं नोहा टाउन राजस्थान।

स्थान से नरेंद्र सुथार, मनोज सुथार, हिमांशु सुथार, गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता। तो सुनते हैं किशोर कुमार की आवाज में अनजान के बोल, राजेश रोशन की धुन और ये प्यारा सा नगमा।

मन का मौसम बदल जाता है जब कोई हौले से आकर दिल छू जाता है। अब दिल छूते ही क्या होता है, जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत करीब आती है। जो आ रही है इस गीत के साथ, आंखें फिल्म का गीत सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर की आवाज में। गीत लिखा है साहिल लुधियानवी ने और संगीत रचना रवि की है।

मनचाहे गीत प्रोग्राम का आखिरी नगमा बना है जलालाबाद पंजाब से सुरेश गगनेचा और पूनम गगनेचा की पसंद का फिल्म आशा का ये गाना। लता मंगेशकर की आवाज में सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा और लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का संगीतबद्ध किया हुआ ये गाना।

0: आशा फिल्म के इस गीत के साथ ही अब आज का मनचाहे गीत कार्यक्रम समाप्त करने की दीजिए इजाजत। सुनते रहिए देश की सुरीली धड़कन विविध भारती।
1: मनचाहे गीत।
2: मनचाहे गीत।
1: मनचाहे गीत।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। नाट्य तरंग आज के कार्यक्रम में सुनिए नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक के रघुपति, हिंदी अनुवादक P.S. कृष्णा स्वामी। तो सुनिए पोस्टमैन नाटक का दूसरा और अंतिम भाग।
1: जब तुम मुझे माँ कहकर बुलाते हो तो मुझे बेहद सुख मिलता है बेटे। सुनो, मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी बात बताना चाहती हूँ।
2: कहिए माँ जी।
1: ये बात किसी को मालूम ना हो, इस रहस्य को तुम प्रकट ना होने दोगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इसीलिए मैं तुमको यह रहस्य बताने का निश्चय कर चुकी हूँ।
2: बता दीजिए माँ जी, मैं वचन देता हूँ कि मैं आपके रहस्य को अपने तक ही रखूंगा, किसी तीसरे व्यक्ति तक ये बात नहीं पहुँचेगी।
1: तो सुनो बेटा, मेरे पास मेरी अपनी पैतृक संपत्ति करीब 10 लाख रुपए की है। वो सब सोना, चांदी और हीरे जवाहरात के रूप में है। उन सबको मैंने एक बड़े घड़े में भरकर इस घर के पिछवाड़े पुराने कुएं के पास गाड़ रखा है। ये रहस्य किसी को मालूम नहीं है, मेरे अपने सगे बेटे कुमार स्वामी को भी मालूम नहीं। अगर मुझे कुछ हो हवा जाए तो तुम्हें उस संपत्ति की रक्षा करनी होगी, करोगे ना?
2: माँ जी, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा, जरूर करूंगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होगा, भगवान आपका साया।
1: न जाने कुमार स्वामी कब लौटेगा, ये लड़की नीला।
2: जी, आप कहते कहते रुक क्यों गई, कहिए ना।
1: ये लड़की नीला है ना, इसकी शादी मैं कुमार स्वामी से करना चाहती हूँ, ये मेरी बहुत दिनों की इच्छा है। देखो बेटा, एक काम मैं तुम्हें और सौंपती हूँ, अगर मैं उन दोनों की शादी से पहले ही चल बसूं तो तुम उन दोनों की शादी करा देना, करा दोगे ना?
2: जरूर करा दूंगा माँ जी, आप फिक्र मत कीजिए।
1: मेरी बात याद रखोगे ना?
2: जीवन भर याद रखूंगा माँ जी, अपना वचन जरूर पूरा करूंगा।
3: बात बहुत बड़ी जान पड़ती है।
4: हाँ भैया शिंगारम, बात बहुत बड़ी है, अगर चाहो तो तुम बहुत जल्दी लखपति बन सकते हो।
3: नहीं, लखपति? अरे क्या कह रहा है,
4: ये जरा गंभीर मामला है। देखो, हवा के झोंके के साथ उड़ो तभी तुम आसमान पर पहुंच सकते हो, वरना ये समझ लो कि वो डाकिया कंद स्वामी तुम्हारी आंखों में धूल झोंक देगा।
3: लगता है मारी तू दारू पीकर आया है, अबे सच कह दे नहीं तो मेरे हाथों कुत्ते के पड़ेगा तू। अरे 10 लाख रुपया है कहाँ, और उसके साथ उस डाकिये का क्या संबंध है?
4: है, बहुत गहरा संबंध है, वही 10 लाख रुपया हड़प जाएगा और साथ ही तुम्हारी प्यारी नीला को भी उड़ा ले जाएगा।
3: क्या कहा? नीला को भी उड़ा ले जाएगा?
4: तुमने कहा था ना, मैं कभी कभी तुम्हारी बहन के घर की ओर चक्कर लगाया करूँ, उसी के मुताबिक मैं वहाँ गया था। अंदर कंद स्वामी तुम्हारी बीमार बहन की चारपाई के पास बैठा था, मैं छिप कर खिड़की के पास हो गया और सुना कि तुम्हारी बहन कंद स्वामी से अपने जमीन में गड़े धन की चर्चा कर रही है।
3: अच्छा, तो क्या मेरी बहन ने यह भी बताया था कि उसने धन कहां गाड़ रखा है?
4: वही तो मैं सुन नहीं पाया, उस वक्त पास से दन दनाता हुआ एक ट्रक जा रहा था, उसी के शोर के कारण मैं तुम्हारी बहन की आगे की बात नहीं सुन पाया।
3: जब मैं इस डाकिये को अपने रास्ते से हटा दूंगा तभी चैन की सांस लूंगा। उसी को क्यों, अपनी बहन? और
4: नहीं भैया नहीं, खून करके जेल जाने से क्या फायदा, अब कोई ऐसा उपाय सोचो कि उनकी आंखों के सामने ही हमें दौलत मिले और साथ ही लड़की भी।
3: ऐसा ही होगा दोस्त, अपनी बहन शिवकामी की चाल में समझ गया हूँ। कुमार स्वामी मोर्चे से वापस नहीं आएगा, इसी ख्याल से शिवकामी कंद स्वामी को अपना वारिस बना लेना चाहती है, और ये डाकिया कंद स्वामी धन और नीला दोनों को पाने की आशा से वहां मंडरा रहा है। हमें दोनों की जड़ को काटना है। दोस्त, इस समय अगर हमारा दिमाग ठीक तरह से काम करे तो कुछ हो सकता है, जरूर कुछ हो सकता है।

0: कंद स्वामी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था।
1: क्यों, क्या बात है पोस्टमास्टर साहब, आपका चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब कुशल मंगल तो है?
0: क्या किया जाए कंद स्वामी, मनुष्य का ये जीवन अनित्य है, पानी के बुलबुले सा, एक न एक दिन सब यहाँ से जाएंगे ही। लेकिन जब कोई जवानी में मर जाता है तो बहुत दुख होता है। यदि वो मरने वाला विधवा बुढ़िया माँ का इकलौता बेटा हो, उसी की कमाई से बेचारी का गुजर बसर होता हो, तो दुख से हृदय फट जाता है।
1: आपकी बातों से तो मेरा दिल बुरी तरह घबरा रहा है। आप किसकी मौत की बात कर रहे हैं?
0: क्या बताऊं, तार को लेते वक्त मैं खुद स्तंभित रह

0: गया था।
1: तार? कैसा तार?
0: लो तुम खुद ही पढ़ लो ये तार, इसे पहुंचाने के लिए तुम ही तो जाओगे।
1: है? ये क्या लिखा है? कुमार स्वामी जो सीमा रक्षा के एक मोर्चे पर तैनात था, एक भिड़ंत में दुश्मन की गोली से मर गया। भगवान, शिव कामी अम्माल का लड़का मर गया।
0: क्यों कुमार स्वामी, इस खबर से गहरा सदमा पहुंचा है ना तुम्हें भी? उठो जाकर ये तार शिवकानी अम्माल को दे आओ।
1: मैं दे आऊं? मैं खुद अपने हाथ से उन्हें ये तार दूं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता पोस्टमास्टर साहब। मैं कैसे उनके सामने जाऊं? उनके इकलौते बेटे की मौत की खबर लेकर?
0: जाना तो पड़ेगा ही, क्या किया जाए, ये नौकरी ही ऐसी है। उठो जल्दी तार उस बेचारी बुढ़िया को दे आओ। वो तो बेचारी रोज अपने बेटे की चिट्ठी का इंतजार करती रहती है। आज वो ये जान ले कि आगे से चिट्ठी का आना हमेशा के लिए बंद हो गया है।
1: चाहता हूं बाबूजी, चाहता हूं। ये कैसी मजबूरी है? शिव कामी अम्माल मुझ पर मां के स्नेह प्यार की वर्षा कर रही थी, आज मैं अभागा उन्हीं के दिल के टुकड़े टुकड़े करने के लिए, उन्हीं को दारुण दुख से तड़पाने के लिए

0: माँ जी
1: आओ कंद स्वामी, आओ आओ, तुम्हारी ही राह देख रही थी। अरे दरवाजे पर ही खड़े क्यों रह गए, अंदर आओ ना। आज सवेरे सवेरे ही आ गए, आज ड्यूटी पर नहीं गए क्या?
2: ड्यूटी? ड्यूटी आपका तार है माँ जी।
1: क्या कहा, तार? मेरा तार आया है?
2: जी हाँ, सीमा रक्षा के मोर्चे से है।
1: अरे तो क्या मेरे कुमार स्वामी का तार है?
2: जी हाँ, यहाँ दस्तखत कीजिए।
1: अभी करती हूँ। तार का नाम सुनकर ही लोग घबरा जाते हैं, रोने पीटने लगते हैं, लेकिन मैं यूं ही घबराने वाली नहीं हूँ। अरे तुम्हारा हाथ क्यों कांप रहा है?
2: नहीं तो
1: ये क्या, तार मेरे हाथ में दे दिया? मुझे तो सिर्फ दस्तखत करना ही आता है, और फिर ये तार तो अंग्रेजी में है। बेटा तुम ही पढ़कर इसका मतलब बता दो। इस महीने कुमार स्वामी का न कोई खत आया और न कोई मनी ऑर्डर ही आया, कहीं वो छुट्टी लेकर यहाँ, यहाँ आने का ही समाचार होगा। भला तार देने की क्या जरूरत थी, पागल कहीं का।
2: माँ जी बात यह है कि।
1: अरे बताओ ना, तार में क्या लिखा है, तार को इस तरह घूर क्यों रहे हो?
2: माँ जी तार में कुमार स्वामी ने लिखा है, लिखा है कि वो आज गांव पहुंचेगा, उसे सिर्फ एक दिन की छुट्टी मिली है।
1: अरे तो क्या मेरा बेटा आज आ रहा है? मेरा अनुमान ठीक निकला। अरे बेटा तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों?
2: कुछ नहीं माँ जी, यूं ही आंखों में कुछ धूल पड़ गई है। अच्छा तो मैं चलता हूँ।
1: तो चले क्या, अच्छा कल अपना काम खत्म करके यहाँ जरूर आना। कुमार स्वामी से तुम्हारी जान पहचान करा दूंगी, खाना भी यही खाना। अच्छा
2: अच्छा तो मैं जाता हूँ माँ जी।

0: अरे ये तुमने क्या किया? तुम पागल तो नहीं हो गए? कुमार स्वामी के देहांत के समाचार को बदलकर झूठ मूठ कह दिया कि वो आज आ रहा है?
1: और क्या कहता?

0: शिवकामी अम्माल की हालत देखकर मुझे ये झूठ बोलना पड़ा।
1: तुमने कर्तव्य का पालन नहीं किया।
0: हाँ हाँ, कर्तव्य का पालन करूंगा, लेकिन इस बार, केवल इस बार मुझे झूठा अभिनय करना ही होगा।
1: झूठा अभिनय? तो क्या तुम झूठी खबर को सच साबित करने के लिए कुमार स्वामी का स्वांग भरोगे? ये जुर्म है, सोच लो। ऐसे स्वांग का क्या नतीजा होगा?
0: नतीजा? एक बुढ़िया बीमार मां के हृदय को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और मैंने सब सोच लिया है। वर्दी, मूछे और गाल पर मस्सा और फौजी लहजा। मुझे देर नहीं करनी चाहिए।

0: माँ
1: कौन है? अरे आप नानी, नानी देखो कौन आए हैं मोर्चे से।
2: हेलो नीला, हाउ डू यू डू? दो साल में तुम कितनी बड़ी हो गई हो। माँ कहाँ है? अरे अंदर कमरे में लेटी है। क्या हुआ माँ को? माँ
1: कौन? कुमार स्वामी आओ मेरे बेटे, मेरी तबीयत आजकल कुछ ठीक नहीं चल रही।
2: मुझे क्यों नहीं लिखा माँ? अच्छी से अच्छी दवा खरीद कर भेज देता।
1: बेकार ही तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ती, मामूली खांसी बुखार है। तो तुम कुमार स्वामी ही तो हो?
2: मुझे पहचान लिया है क्या? ये कैसा सवाल कर रही हो माँ? मैं तुम्हारा कुमार स्वामी ही हूँ।
1: कुछ दिनों से मेरी आंखें कमजोर हो गई है बेटा।
2: माँ तुम इस तरह बार बार बाहर क्यों झांक रही हो?
1: मैं कंद स्वामी को देख रही हूँ।
2: कंद स्वामी कौन?
1: अरे वही तो, तुम्हारा दूसरा अवतार। तुम्हारे यहाँ न होने से मैं उसी को देखकर अपने मन को तसल्ली देती रही हूँ।
2: क्या कह रही हो माँ? मैं तो कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे पहचान कर इस तरह मजाक कर रही है क्या?
1: बेटा तुम में और उसमें जरा भी फर्क नहीं। नीला तुम जरा बाहर जाकर देखाओ कि कंद स्वामी आ रहा है या नहीं।
3: नानी माँ आज कोई नया डाकिया आया है, उसने बताया कि कंद स्वामी को अचानक कोई जरूरी काम आ पड़ा, सो वे छुट्टी लेकर गांव गए हैं, कल रात वापस आएंगे।
1: कंद स्वामी अपनी माँ से बढ़कर मुझे प्यार करता है। नीला जाकर पानी गर्म करो, कुमार स्वामी नहा धोकर जरा आराम कर लें, एक ही दिन तो यहाँ ठहरेगा बेचारा।

0: भैया श्रृंगारम, भैया श्रृंगारम, गजब हो गया।
1: क्या हुआ मारी?
0: वो डाकिया कंद स्वामी है ना, कल उसने बहुत बड़ा छल किया।
1: छल? कैसा छल?
0: कल उसने गांव जाने के बहाने डाकखाने से छुट्टी ली और इधर उधर चला गया।
1: फिर?
0: फिर उसने फौजी वर्दी पहनकर मूछे और मस्सा लगाकर तुम्हारी बहन के फौजी बेटे कुमार स्वामी का सांग भरा और पहुंच गया तुम्हारी बहन के घर।
1: उसकी ये हिम्मत!
0: अरे भैया आगे तो सुनो, तुम्हारी बहन की आंखों में उसने ऐसी धूल झोंकी कि वो कंद स्वामी को पहचान ही ना सकी। वो बेटे की तरह दिन भर घर में रहा और फिर रात को चला गया।
1: सच कह रहा है तू?
0: हाँ भैया, तुम्ही ने तो कहा था कि अगर कंद स्वामी के मूछे और मस्सा हो तो वो कुमार स्वामी ही लगेगा। उसी बात को उसने अब सच साबित कर दिया है।
1: अरे तो इसका मतलब है कि नीला ने भी उस पर विश्वास किया होगा। नीला ने उससे हंस हंस कर बातें की होंगी उसके साथ।
0: क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये खेल आगे भी जारी रहा तो समझ लो एक दिन ये डाकिया फिर भेष बदल कर छुट्टी के बहाने से आएगा और तुम्हारी नीला से शादी करके चंपत हो जाएगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरे मारी, जल्दी से कोई उपाय सोच कि इस डाकिये का खेल आगे न बढ़े।
0: आज से मैं रेलवे स्टेशन के आसपास चक्कर लगाना शुरू कर देता हूँ। कंदु स्वामी जब फिर फौजी वर्दी पहनकर आएगा तो मैं फौरन आकर तुमसे कह दूंगा, तुम उसे हमेशा के लिए ठिकाने लगा देना।
1: वाह, बहुत बढ़िया उपाय है ये। लेकिन सुनो, होशियार

0: कुली कुली।
1: ओह डैम इट, इस गांव के स्टेशन पर कोई कुली भी नहीं, सामान खुद ही उठाना होगा।
2: अच्छा तो ये साला डाके आज फिर भेष बदल कर आया है, अभी खबर देता हूँ श्रृंगारम को।

0: Mom? Mother? Mummy? Where are you? Oh, silly old lady.
1: आइए आइए बाबू साहब, आज फिर
0: कौन? नीला? क्योरी छोकरी कैसी है, माँ कहाँ है?
1: वो आज फिर डॉक्टर के यहाँ गई हैं, लेकिन मैं पूछती हूँ आज फिर क्यों सोंग भरा है? उस दिन जैसे नानी माँ धोखा खा गई थी, वैसे मैं धोखा खाने वाली नहीं हूँ।
0: What nonsense, ये क्या कह रही हो?
1: बस बस बंद कीजिए नाटक, मुझे सब मालूम है। जल्दी से ये बनावटी मूछें और मसा उखाड़ कर फेंक दीजिए, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा मैं खुद उखाड़े देती हूँ।
0: ये क्या बदतमीजी है? अरे छोड़ मेरी मूछें, दर्द हो रहा है। अरे ये बनावट नहीं, असली मूछें है, हट जा सामने से। कहाँ है मेरी माँ?
1: कहाँ ना, वो डॉक्टर के यहाँ।
2: अरे ये क्या मामा की रट लगा रखी है, ये कैसी एक्टिंग कर रहा है, डाकिया कहीं का। कौन है तेरी माँ?
0: कौन? ओहो सिंगाराम। हेलो, हाउ डू यू डू यू सिली कंट्री ब्रूट, आई मीन अंकल।
2: वाह, अंग्रेजी के चार शब्द बोलने से क्या होता है। क्या मैं तेरी आवाज नहीं पहचानता, चोर उचक्का कहीं का।
0: अंकल ये तुम क्या कह रहे हो, क्या मैं चोर उचक्का हूँ?
2: हाँ हाँ, डाकखाने से छुट्टी लेकर किराए की वर्दी पहन और नकली मूछे और मस्सा लगाकर तू मेरी बुढ़िया बहन को धोखा दे सकता है, इस ना समझ नीला को धोखा दे सकता है। लेकिन तू इस शिंगारम की आंखों में धूल नहीं झोंक सकता। वो तार मैंने ही दिया था कि कुमार स्वामी मर गया है, तूने उस तार का असली मजबूत अम्माल को नहीं बताया, उसके बजाय झूठ मूठ कह दिया कि छुट्टी लेकर कुमार स्वामी आ रहा है और खुद कुमार स्वामी का भेष बनाकर चलाया। इस तरह आसानी से तूने शिवकामी के जमीन में गड़े धन का पता लगा लिया। अब बोल कहाँ है वो धन, कहाँ गाड़ रखा है तूने उसे, पहले ये बता दे, बाद में चाहे तू कुमार स्वामी की एक्टिंग कर चाहे कंद स्वामी की, मुझे कोई ऐतराज नहीं होगा। बोल बोल बोल, वो जमीन में गड़ा धन कहाँ है?
0: जमीन में गड़ा धना? अंकल सिंगारम ये तुम क्या बेपर की उड़ा रहे हो?
2: चुपचाप अपनी असलियत कबूल कर ले और शिवकामी के उस गड़े हुए धन का पता बता दे, नहीं तो
0: तू क्या करेगा बदमाश, चला जा यहाँ से, मैं किसी गड़े हुए धन के बारे में कुछ नहीं जानता। ओह कल रात से मैंने कुछ नहीं खाया, पहले मैं कुछ पेट में डाल लूं।
2: अबे अंदर कहाँ जाता है, पहले बता।
0: नहीं बताता, मुझे कुछ नहीं मालूम, हट जा मेरे सामने से।
2: अच्छा कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम है तुझे, कुछ नहीं मालूम तो ले।
0: सिंगारम तूने ये
2: चाकू के एक ही वार से ये दम तोड़ने लगा है, इधर नीला भी बेहोश हो गई है। क्या ये कहीं सचमुच ही कुमार स्वामी तो नहीं? शिवकामी के आने से पहले मुझे यहां से भाग जाना चाहिए। हाँ हाँ भाग जाना चाहिए।

0: श्रृंगारम श्रृंगारम, मेरे भाई गलती हो गई, वो डाकिया कंद स्वामी नहीं कुमार स्वामी ही था।
1: है?
0: तुमने कुमार स्वामी का
1: कमीने, तूने मुझे गलत खबर देकर। कंद स्वामी कहाँ है?
0: डाकखाने में। खैर ये बातें तो बाद में होंगी, पहले पुलिस से बचने का उपाय करना चाहिए। जल्दी से अपने खून से ये लथपथ कपड़े बदल डालो।
1: अच्छा मारी, तू भाग कर किसी को कंद स्वामी के पास भेज।

0: उसे कहला दे कि शिवकामी बहुत बीमार है, उसे फौरन बुलाया है। मैं तब तक पुलिस चौकी पहुंचता हूं।
1: माजी
2: है? ये क्या, ये कौन खून से लथपथ पड़ा है? अरे ये चाकू, हाँ तो इसे धीरे धीरे निकाल लो। हाँ अरे ये नीला क्यों बेहोश पड़ी है? ये सब क्या हुआ, किसने ये खून किया?
3: हाँ कंद स्वामी, तुम्हारे हाथ में ये चाकू, ये खून कैसा बह रहा है? कौन यहाँ गिर पड़ा है? मैं!

0: क्या कहा माँ जी, ये कुमार स्वामी है। मुझे कुछ पता नहीं, मैं अभी आया हूँ। कुछ देर पहले मुझे खबर मिली थी कि आप सख्त बीमार हैं। मैं भाग आया और
1: अरे पापी, मेरा सत्यानाश करके झूठ बोलता है। मैंने अपनी दौलत की बात तुझे इसलिए बताई थी कि तुम ईमानदारी से उसकी रक्षा करो। अरे इससे तो ये अच्छा था कि तुम मुझे ही मार डालते।
0: माँ जी, मैं आपको क्या जवाब दूँ? मुझे कुछ भी तो नहीं सूझ रहा।
2: सब सूझ जाएगा कंदस्वामी, हम आ गए हैं।
0: कौन? इंस्पेक्टर साहब।
2: हाँ, हम ठीक मौके पर पहुँचे। तुम वारदात की जगह पर रंगे हाथों पकड़े गए हो। सिपाहियों, इसे हथकड़ी लगा दो।
3: इसने मेरी बहन के बेटे को, मेरे भांजे को मार डाला है। इस वक्त साहब, अगर मैं फौरन आपको इत्तला न करता तो ये भाग जाता।
2: जी, क्या आपने इसे खून करते हुए देखा था? देखा था तो रोका क्यों नहीं?
3: बात ही है इंस्पेक्टर साहब, नीला होश में आ गई।
2: ए, कहाँ जा रहे हैं आप? रुकिए।
1: इंस्पेक्टर साहब, इसी श्रृंगारम ने मेरे मामा कुमार स्वामी की हत्या की थी। इसी ने ही चाकू भोंका, तभी कंद स्वामी यहाँ नहीं थे। अरे रोकिए, वो भाग रहा है।
2: सिपाहियों, ये बदमाश श्रृंगारम भागने न पाए, पकड़ो। बेटी, तुमने क्या श्रृंगारम को खून करते हुए देखा था?
1: जी हाँ, इसने कुमार स्वामी को कंद स्वामी समझकर चाकू भोंक दिया। दोनों की शक्ल मिलती है ना, मामा की हत्या होते देखकर मैं दहशत से बेहोश हो गई। बाद में जो कुछ हुआ मैं नहीं जानती। कंद स्वामी ने कुछ नहीं किया, ये निरपराध है। हत्या के समय ये यहाँ थे ही नहीं।
2: अच्छा, श्रृंगार में एक बेकसूर को फंसाकर खुद बचना चाहता है। सिपाहियों, पकड़ लाओ इसे, डाल दो इसके हाथों में हथकड़ी। कंद स्वामी को छोड़ दो।
1: अरे, अरे, मेरा बेटा होश में आ रहा है, ये अभी जिंदा है। बेटा, बेटा।
2: आप सब खामोश रहिए, ये कुछ कह रहे हैं।
0: इंस्पेक्टर साहब, लगता है मेरे पीछे यहाँ कुछ गड़बड़ हो चुकी है। मैं आज यहाँ छुट्टी पर आया था। ये श्रृंगारम मुझे कंद स्वामी मानकर मुझसे किसी गड़े धन के बारे में पहले पूछताछ और फिर तकरार करने लगा। इसी ने मुझे चाकू मारकर घायल किया। माँ,
1: मैं तुम्हारे पास हूँ मेरे बच्चे।
0: माँ, तुम रोती क्यों हो? माँ, मैं तुम्हारी कोई सेवा नहीं कर सका। मैंने हमेशा तुम्हें परेशान ही किया। अब मैं जा रहा हूँ, मेरी सब भूल माफ कर दो। मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। मैं छुट्टी लेकर आया था सिर्फ तुम्हें देखने के लिए। तुम्हें देख लिया, मैं कितना भाग्यशाली हूँ। तुम्हारी गोद में, तुम्हारे चरणों में मेरा अंत हो रहा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इतना भाग्यशाली हूँ।

0: आइए पोस्टमास्टर साहब, अच्छा किया जो आप इस कंद स्वामी को साथ लेकर आए हैं। इसने एक महीने से इधर ताका भी नहीं।
1: नीला, देखो तो कौन आया है।
0: क्यों कंद स्वामी, क्या तुम नाराज हो मुझसे? ये मैं मानती हूँ कि मुझे उस दिन तुम पर एकाएक शक नहीं करना चाहिए था, लेकिन क्या बताऊं, उस दुष्ट शिंगारम ने ऐसी चाल चली कि
2: जो होना था सो हो गया। शिंगारम को अपने किए की सजा मिल गई है।
3: पोस्टमास्टर साहब, उस दिन भगवान ने ही मेरी रक्षा की, वरना शिंगारम ने मुझे फंसा ही दिया था। ऐन मौके पर नीला ने होश में आकर इंस्पेक्टर को सच्ची बात बता दी और कुमार स्वामी ने भी अपना बयान दे दिया। अगर ये सब न होता तो फांसी का फंदा मेरे गले में पड़ता, मैं तो बाल बाल बचा।
0: देखो गंद स्वामी, तुम उस दिन बच गए थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कसूर नहीं किया। तुम्हें जरूर सजा दी जाएगी।
3: क्या कह रही हैं आप?
0: मैं ठीक ही कह रही हूँ। ये न समझना कि मैं कुछ नहीं जानती। भले ही मैं अनपढ़ हूँ तो भी मैं मूर्ख बिल्कुल नहीं।
3: मैं तो कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ कर दीजिए।
0: मैं क्यों माफ करूँ, तुम्हें चुपचाप मेरा हुक्म सुनना होगा।
3: आप जो भी कहेंगी मैं मानने को तैयार हूँ।
0: हाँ, इसी में बुद्धिमानी है। पोस्टमास्टर साहब, आप गवाह हैं ना?
2: भाई मैं तो सब देख रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ।
0: मैं कंद स्वामी को जिंदगी भर की सजा देना चाहती हूँ। अगले महीने मैं नीला की शादी इस कंद स्वामी के साथ कर देना चाहती हूँ। क्यों कंद स्वामी, मंजूर है ना?
3: जी मैं, लेकिन आप नीला से भी पूछकर।
4: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नाटक पोस्टमैन का दूसरा और अंतिम भाग। मूल लेखक थे के रघुपति, हिंदी अनुवादक पी एस कृष्णा स्वामी और निर्देशक थे महेंद्र मोदी। इस नाटक में जिन कलाकारों ने हिस्सा लिया उनके नाम हैं शिवराज सोमवाल, करुणा कुमावत, विजय सिंह पवार, महुआ बैनर्जी, राजेंद्र पांडे, यवदत्त मेहता, चंद्र प्रकाश पारीक, चंबलेश भट्ट और महेंद्र मोदी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम समाप्त करें इससे पहले आपको बता दें कि ये आकाशवाणी के उदयपुर केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का नाट्य तरंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है।
5: आप सुन रहे हैं विविध भारती पिटारा।

0: पिटारा में आज
1: उजाले उनकी यादों की।

0: उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977, दूसरा आदमी।
1: अरे चल कहीं दूर निकल जाए।
0: 1981, बसेरा।

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं जिस धरती का बंजा।
0: 1985 जमाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
0: क्या? 1993 फिल्म।

0: बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज सुनिए तीसरा भाग। पिछले एपिसोड में आपने सुना,
1: अब मुझे पूरा दिल लगा के पिक्चर बनानी है
0: जी।
1: ये पिक्चर अच्छी बने और वो हमने मेहनत करके पिक्चर अच्छी बनानी शुरू की। 12 रील में पिक्चर बंद हो गई।
0: अरे बाप रे।
1: क्योंकि वो जो फाइनेंसर था उसने कहा मैंने जयपुर में होटल खरीद लिया है और मेरे पास अभी पैसे नहीं है,
0: ये लो।
1: और मेरे पास राजेश खन्ना के भी डेट है, ऋषि कपूर भी डेट है,
0: हीरोइने भी
1: हैं, हीरोइनों के भी डेट है, और ठहर गए।
0: अब
1: साहब 2-3 साल और वेट करना पड़ा। अब अचानक 2-3 साल के बाद वो आए कि भाई मैं कंप्लीट करना चाहता हूँ। अब लोगों के कपड़ों की स्टाइल बदली हो गई थी, बेल बॉटम नहीं रहा था, कपड़े और तरह के लोग पहनने लगे थे, कार्टून पिक्चर में पहले जो बनी थी सब कुछ बदली हो गया था। मतलब 5 साल में फिल्म बनी, 5 ईयर्स लगे उस पिक्चर को। उसके बीच मेरी दूसरी पिक्चर मिल भी गई, वो भी करना शुरू कर दिया। और उस बीच मुझे जावेद साहब ने अलग अकेले होके मुझसे वो पिक्चर को दुनिया उसमें जावेद साहब अकेले हो गए थे, सलीम साहब से अलग हो गए थे।
0: और वो तो दिलीप कुमार साहब थे वहां,
1: दिलीप कुमार साहब के हीरो हैं। तो जावेद साहब ने कहा कि वो एक्चुअली उसमें भी एक ये पंगा था कि यश जोर साहब जो थे वो आते थे यश जी के पास डर करके मेरी पिक्चर। यश जी कहते थे एक मैं गुलशन राय के लिए कर रहा हूँ, एक मैं खुद की करता हूँ, इससे ज्यादा पिक्चर में डायरेक्ट कर नहीं सकता। तो चलता रहा यश जोर आते रहे। तो वो एक स्टेज पे ऐसा हुआ कि वहीदा रहमान जी से प्रोडक्शन भी बहुत करते रहे ना देवानंद की भी, तो इसलिए वहीदा जी को भी जानते सबको, तो उन्होंने रख रखाव बहुत अच्छी थी उनकी,
0: कनेक्शन सबके।
1: तो वहीदा जी से कहने लगे यार यश पिक्चर नहीं कर रहा, कब से पीछे लगा हूं, 2-3 साल से रोज जा रहा हूं, मेरे इधर कंपनी में कोई पिक्चर नहीं है। तो वहीदा जी ने कहा तो रमेश तलवार से करवा लो।
0: अरे गजब।
1: रमेश तलवार से? वो तो यश तो बड़े असिस्टेंट है, लेकिन उनका डायरेक्टर में 2 पिक्चर डायरेक्ट कर चुके हैं। एक पिक्चर सवाल में मैंने भी काम किया है रमेश के साथ, संजीव कुमार मैं हम सबने किया है, शशि कपूर है उस पिक्चर में।

0: वेरी गुड डायरेक्टर, बहुत समझदार है अच्छे। तो इन्होंने मुझे जय जोर ने कहा कि भाई आप, अब मैं 5 मिनट मिलने आना चाहता हूँ। मैं पाली हिल शिफ्ट हो चुका था, सभी उसको ऑफिस बना लिया था मैंने। तो मैंने वो पाली हिल पे वहाँ पर आए, वहाँ पे तो कहने लगे कि भाई वो ऐसा है कि ये जी के पास में जाता रहा तो ऐसे ही अभी वैदा जी ने कहा है कि रमेश के साथ मैंने काम किया है तो आप मेरी पिक्चर कर लीजिए। मैंने कहा भाई मैं जी की पिक्चर कैसे करूं, मैं उनका चेला हूं। तो मुझे टाइम दीजिए, मैं जी से बात करता हूं, एक दो दिन में मैं उनसे बात कर लूंगा, फिर हम मिल लेते हैं, जो भी बात होगी मैं आपको कह दूंगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो जी से मैंने बात की कि ऐसा, उन्होंने कहा अभी तक करो, क्यों नहीं करो। ओहो, मैंने कहा ये जी मैं आप कंपनी में भी कर रहा हूँ और ऐसे, नहीं नहीं नहीं तुम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे बैक पे हूँ, फिक्र नहीं करो, अभी मेरी जरूरत हो जाओ। अब पहले नेक्स्ट टाइम को कह दिया हाँ मैं करूंगा। तो हम लोग कहानी वानी सुनने इस तरह शुरू, क्या होगा, अभी ड्रिप कर लिए नहीं थे अभी हमने,
1: अच्छा
0: कुछ नहीं था, खाली कभी यही है बिटवीन।
1: सागर साहब लिख रहे थे?
0: कोई नहीं, कुछ किसी को लिया नहीं था हमने।
1: अच्छा,
0: अभी बातचीत ही शुरू हुई
1: जी।
0: तो इतने में जावेद साहब ने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा रमेश जी एक राज की बात बताता हूँ, आप किसी से कहेंगे नहीं। उनको बताइए, मैं और सलीम साहब अलग हो रहे हैं। इस बीच में हुआ ये था कि जावेद साहब के घर पे मेरा आना जाना बहुत ज्यादा हो गया था। वो इस तरह कि यहाँ एक छोटी पिक्चर बन रही थी साथ साथ, रमन कुमार डायरेक्टर थे, रमन इप्टा के मेरे असिस्टेंट भी रह चुके थे और कुलदीप सिंह म्यूजिक दे रहे थे उसमें,
1: और जावेद साहब,
0: जावेद साहब गाने लिख रहे थे। उससे पहले जावेद साहब ने गाने नहीं लिखे थे
1: जी,
0: यश चोपड़ा के लिए एक दो गाने लिखे, ये पूरी पिक्चर के गाने उन्होंने लिखे थे।

0: सेटिंग करते थे इनके घर पे गानों की भी, कुलदीप याजत से बाजा लेके आते और हनी मेरी असिस्टेंट भी थी इन फिल्मों में
1: जी,
0: बसेरा में असिस्टेंट थी।
1: अच्छा, डायरेक्टर।
0: तो हमारे बाकी लोग भी, हमारा उत्तर को ठिकाना नहीं था कहाँ जाए, आज दोपहर कहाँ मिले, तो हम इप्टा के लोग वहां पर बैठा करते थे, रमन, राकेश बेदी, अवतार गिल, भरत कपूर, हम सारे लोग वहां जाके इनके हॉल में बैठते थे, चाय वाय पीते थे, गपशप मारते थे, एक आध वीडियो पे पिक्चर देख लेते थे उस जमाने में जो VHS होता था, और चले जाते थे ऐसा। तो जावेद साहब मुझे अंदर ले गए और उन्होंने कहा कि ये बात है, आप अब कौन सी पिक्चर कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी ऐसा है कि एक पिक्चर ऑफर हुई है यश जोहर की तरफ से, और एक अपनी वो वाली कर रहा हूँ और जो भी। तो बोले भाई देख लो, अगर तुमको मेरे संग फिल्म करनी है तो। मैंने यश जोहर से कहा, उन्होंने कहा भाई हमारी आपस में जमती नहीं है, कुछ गड़बड़ है।
1: अच्छा,
0: सलीम जावेद के साथ हमारी गड़बड़ हुई है।
1: जी जी।
0: तो मैंने कहा भाई देखो, राइटर तो बहुत अच्छे हैं, अलग हो गए हैं, डायलॉग तो ये लिखते हैं, तो बाकी देख लेंगे चीजें, अगर आप चाहें तो मैं एक मीटिंग आप कर लीजिए उनके साथ, आपस में जो कुछ जो झगड़े हैं वो सॉल्व कर लीजिए। उनकी पिछली पिक्चर जो लिखी थी सलीम जावेद ने, उसमें कुछ हुआ था यश जोहर की फिल्म में, दोस्ताना थी या कौन सी थी,
1: दोस्ताना
0: ज्यादा, उन लोगों ने अलग मीटिंग की जावेद साहब ने और जोहर साहब ने, और उनका आपस में सॉल्व हो गया मामला। जैसे इंडस्ट्री में होता है ना, परमानेंट दोस्ती ना परमानेंट
1: दुश्मनी,
0: थोड़ी देर में लोग आपस में मिल जाते हैं। हमारी इंडस्ट्री इस मामले में बहुत अच्छी है।
1: जी जी।
0: तो उन्होंने कहा भाई हमारा हो गया। मैंने इनको एक कहा, यश जोहर को एक पॉइंट बोला जिसलिए उन्होंने, देखिए भाई आपने कितने पैसे दिए उनको पिछले पिक्चर में, तो बोले 10 लाख दिए थे। तो बोले 5 लाख में अगर ये आपकी फिल्म भी लिखे और गाने भी लिखे, बोले गाने तो मेरे आनंद बख्शी लिखते हैं। मैंने कहा सोच लीजिए, मेरे साथ साथ वाले गाने इन्होंने बड़े अच्छे बनाए।
1: जी जी जी।
0: देख लीजिए आप, आपको 5 लाख में सब चीजें मिल जाएंगी, जो बख्शीश आपको आप फीस देते नहीं, अगर आपको प्रूव करता है तो। उनको एज बिजनेस पॉइंट ये बात समझ आ गई कि आधे रेट में सलीम जावेद मिल रहे हैं, मतलब जावेद मिल रहा है, जिसमें गाने भी मिल रहे हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने उनसे बात की कि भाई आप पैसे 5 लाख लेंगे।
1: हाँ
0: लूंगा 5 लाख। मैंने रमेश से कह दिया था, रमेश जी से कहा था कि मैं उसमें पैसों में गाने में फ्री लिखूंगा अगर चाहिए हो तो। मैंने कहा था बख्शी जी को मत लीजिए, लेकिन अगर आप चाहें तो मैं लिख सकता हूँ। तो ओके हो गया। तो गाने वाले अब सब, उन्होंने कहा मुहूर्त करनी है, मुझे क्या कास्टिंग होनी चाहिए, मतलब दिलीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: और ऋषि कपूर होने चाहिए, रमेश का दोस्त है ऋषि कपूर।
1: हाँ, इसलिए
0: दिलीप साहब काम भी नहीं करते किसी और के साथ, मतलब उस तरह ऋषि के साथ काम भी उनका हो जाएगा, कोई पिक्चर नहीं आ रही है उनकी, दिलीप साहब ऋषि कपूर की, कॉम्बिनेशन वाइज कमर्शियली आप सोच लो एंगल्स।
1: हाँ।
0: तो हो गया। बोले अब अगला स्टेप, सब्जेक्ट ढूंढने शुरू किए, सब्जेक्ट मिल नहीं रहा, टाइटल सोचने लग गए, ये टाइटल वो टाइटल, दुनिया पे आके रुके, दुनिया टाइटल। बोले चलो मुहूर्त करते हैं, मुहूर्त कर डाला साहब,
1: कहानी नहीं है,
0: कहानी नहीं है।
1: बाबा
0: मुहूर्त किया महबूब स्टूडियो में, दुनिया भर के लोग आए, सारे स्टार,
1: दिलीप
0: कुमार, दिलीप साहब, यश चोपड़ा जी ने क्लैप दी मेरे को ब्लेसिंग करने के लिए, पहला शॉट डायरेक्ट किया उन्होंने ऑल द बेस्ट बोलने के लिए, और भी जो हमारे इंडस्ट्री के दोस्त सारे जमा हुए थे। तो अब साहब वो जैसे मुहूर्त हो गया, अब हम लोग दिलीप साहब से पहले कह लिया हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, आपको सुनाएंगे, आपकी पसंद का ही सब्जेक्ट होगा तो ही करेंगे, तो कर लो, मान गए। यश जोहर की भी इज्जत करते थे, मान गए, पुराना आदमी है यश जोहर, भला आदमी है। अब साहब हम लोग जाके जू बीच पे बैठे समंदर के किनारे,
1: कहानी ढूंढ रहे
0: क्या बनाए। वो सब्जेक्ट तो बन चुकी है, वो ऐसे पुरानी फिल्मों को याद करके उनका पैरेलल ढूंढने लग। तो साहब ऐसे करते करते कोई एक सब्जेक्ट ओके किया। उन दिनों मैं यश जी के साथ, यश चोपड़ा जी के साथ मिलता था, बताता था कि क्या क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं। तो उनसे भी कहा कि भाई मैं ऐसे जावेद साहब अलग हो रहे हैं, आप देख लीजिए, अगर आपको चाहिए हो तो आप लिख सकते हो उनको एज राइटर। उन्होंने कहा अच्छा। मैंने कहा रेट भी आधा हो गया, वो भी छोटे पिक्चर लेने। तो उन्होंने भी कहा ठीक है। उन्होंने भी जावेद साहब को बुला के
1: सिलसिला वाला काम शुरू
0: कर दिया
1: जी।
0: अब जो है इधर ये मेरे साथ जब बात ये कभी पिक्चर बना दे वो दिलीप साहब की पिक्चर जो है वाली
1: शक्ति
0: नहीं शक्ति नहीं इनकी पिक्चर का नाम कुछ और था
1: मशाल
0: का। अब मशाल का सब्जेक्ट मैंने ओके किया हुआ था
1: यशी ने डायरेक्ट की वो
0: और वो मैंने ओके किया मैंने अच्छा सब्जेक्ट बहुत बढ़िया जावेद साहब ने ऐसे मुझे कहा अगर आप कहें तो ये सब्जेक्ट में यश चोपड़ा को सुना दूं
1: जी
0: यश जी को सुना दिया यश जी को सब्जेक्ट पसंद आ गया। अब मैं कैसे बोलूं कि
1: तो मैंने ओके किया
0: मैं नहीं बोल सकता सर
1: जी
0: उनको भी नहीं बोल सकता जावेद साहब को नहीं बोल सकता था मेरी हिम्मत नहीं थी आज तक नहीं बोल सकता जावेद साहब
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा मैं आपके लिए दूसरा सब्जेक्ट ले रहा हूँ।

0: उसको उन्होंने मुझे इसका आइडिया सुनाया या जो कुछ सुनाया,
1: दुनिया का
0: आइडिया थोड़े दिनों के बाद, दो चार दिन। और फिर ये शबाना शूटिंग कर रही थी आउटडोर।

0: कौन सी पंख अपने उसकी कपूर क्या डायरेक्टर हमारा फॉरन में चला गया जो देश साहब का भांजा क्या नाम है
1: शेखर कपूर
0: सॉरी हाँ। शेखर कपूर नामों में आजकल में गड़बड़ होती है। शेखर कपूर की शूटिंग कर रही थी
1: हाँ।
0: पहली फिल्म की
1: हाँ।
0: कहीं देहरादून या उस तरफ कहीं नॉट और जावेद साहब के साथ दोस्ती थी इनके से जावेद साहब लिखने वहां चले गए शमाला के यहाँ शूटिंग पे और 34 सीन लिख के ले आए वहां से और आके हमको सुनाए बहुत अच्छे सीन थे बढ़िया। लेकिन वो कहते थे कि मैं स्क्रिप्ट कंप्लीट ही देता हूँ तो मैंने कहा भाई अब मैं 2-3 प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जब मैं कंप्लीट देता हूँ मैं एक ही पिक्चर लिख रहा होता हूँ तुम यार अपने दोस्त हो तुम समझ सकते हो ना तुम एक शेड्यूल करो। मैंने कहा आप दिलीप साहब को कैसे कन्विंस करेंगे 34 सीन से शुरू करके पिक्चर मतलब खाका मेरे दिमाग में तैयार है स्क्रीन पे तैयार है मुझे स्क्रीन पे सुना दिया उन्होंने तो ये हम चलते दिलीप साहब से अपॉइंटमेंट लेते सुनाते तो फिर रॉक बुक किया गया।
1: अच्छा
0: वहां पे दिलीप साहब ने कहा मैं एक दिन में पूरी कहानी नहीं सुनूंगा।
1: अरे बाप रे
0: उनका स्टाइल है जो इतनी देर सुन सकता हूँ इतने जो भी उन्होंने सुना उन्होंने पहले 24 सीन तो पूरे क्लियर थे वो थोड़ा सुना दिए आगे के सीन सुनाए उनके कुछ एक सजेशन जो आए इन्होंने कुछ आर्गुमेंट दिया कोई ली कोई नहीं ली जो भी जावेद साहब को ठीक लगता था मुझे भी ठीक लगता था वो सजेशन ले ली गई वो फिल्म में रखी गई जो दिलीप साहब की और बाकी जावेद साहब ने लिखा। अब वो क्या करते थे कि जब शूटिंग होती थी तो एक दिन पहले मुझे मेरे लिए सीन लिख देते थे कई बार बोलते थे यार अच्छा नहीं बन रहा मैं रात को लिखूंगा या सुबह 5 बजे उठ के लिखूंगा तो मैं 10 बजे सेट पे ला के दूंगा।
1: वाह वाह
0: क्योंकि दिलीप साहब तो 12 बजे आएंगे
1: जी
0: तो तेरा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो वाकई ऐसा होता रहा वो देते रहे करते रहे और ऐसे हमने वो फिल्म की
1: दुनिया
0: दुनिया

0: दिलीप साहब को डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपके लिए?
1: दिलीप साहब के साथ मैंने पहली जो मीटिंग मेरी हुई ना, जब मैं साइन करने गया पहली बार
0: जी
1: कि ऐसे फिल्म करने का, तो मेरा क्या होता है कि जो दोस्त यार आपके होते हैं ना,
0: हाँ,
1: वो आपकी तारीफ करते हैं। पंडरी जुक्कर उनका मेकअप करता था
0: जी, बहुत बड़े मेकअप मैन,
1: बहुत बड़े मेकअप मैन, मेरी फिल्मों के मेकअप मैन भी होते। और जब मैंने नूरी की हम प्रोडक्शन की, प्रोड्यूस की, तो सबका शेयर रखा, उसमें पंडरी जुक्कर का भी शेयर था 5%।
0: बाबा
1: ऐसे हमारे 10 लोगों के हमने लोगों में बांटा था कि 20% यश चोपड़ा जी, 20% गुलशन राय जी, और जो बाकी 60% थे, 10% सागर सदी राइटर, 10% खयाम साहब म्यूजिक डायरेक्टर, 10% मनोहर कृष्ण डायरेक्टर, और मैंने अपने लिए 5% रखे थे, जो यश जी ने 10% करवा दिए। क्योंकि मेरे साथियों को मैं 5% दे नहीं अच्छा लगता, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा, तू सब कर रहा है तो मैं गलत बात है, तुम 10% लो। तो मेरा 10% हो गया, 5% रमेश वल्ला ऑपरेटिव कैमरा मैन जो था, 5% केजी उनका सीनियर कैमरा मैन, 5% पंडरी जुक्कर, और 5% उनका दोस्त जो प्रोडक्शन हैंडल करते थे वासुदेव धीरे साहब।
0: जी जी जी गजब।
1: और ये सब लोगों के साथ क्यों हमने ये पार्टनरशिप की कि मैंने कहा पंडरी जुक्कर की 3-4 बहनें उनकी शादी करवाता रहता है और पैसे सारे खर्च कर देता है, वासुदेव धीर की 2 बेटियां हैं, उसके पास पैसे नहीं है शादी करने के लिए।
0: ओहो,
1: मनमोहन कृष्ण का बेटा डॉक्टरी पढ़ रहा है, मनमोहन जी के पास पैसे नहीं है, इनको पार्टनर बनाएंगे। उनका बेटा जो है इस पिक्चर में हीरो होने वाला था, खयाम साहब ये पिक्चर पहले लूरी बनाने वाले थे, जिसमें वहीदा रहमान हीरोइन होने वाली थी, सागर सरदी ने उनके लिए लिखी थी।
0: अच्छा,
1: सागर सरदी की 2 पेज की शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ये स्क्रिप्ट सागर सरदी ने उनको फिल्म की लिख के दी। जब 2 पेज की स्टोरी सुनाई थी उनको बहुत अच्छी लगी कि कुत्ता हीरो है। तो वो उन्होंने तो शुरू में गाने वाले भी 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे खयाम साहब ने अपने बेटे को हीरो लेके। और फिर वो पहले तो वहीदा रहमान जी के लिए बनाई, वहीदा रहमान जी के साथ कोई डायरेक्टर और था, सीनियर डायरेक्टर थे कोई, फिर वो नहीं बना प्रोजेक्ट, बिका नहीं या नहीं बना या 2-4 नहीं हुए। उसके बाद वो चाहते थे बेटे को लेकर न्यू कमर के साथ पिक्चर बनाओ,
0: प्रदीप को लेके,
1: प्रदीप को लेके, लेकिन वो नहीं बन पा रही। लेकिन गाने उन्होंने 2-3 रिकॉर्ड कर लिए थे, और जावेद अख्तर साहब के फादर के ही गाने थे, जानेसार अख्तर साहब के गाने, वो रिकॉर्डिंग हो चुकी थी, तो उन्होंने मुझे वो गाने भी सुना दिए थे, यश जी को भी सुना दिए थे। तो भाई उनको मतलब रिजर्व करते हैं 10%, तो 10% उनको पार्टनर बना लिया। ये बात पंडरी जुक्कर ने
0: दिलीप साहब को बताया,
1: दिलीप साहब को बता दी।
0: ओहो गजब,
1: कि बड़ा अच्छा लड़का है रमेश, यश जी का राइट हैंड मैन है और बहुत मेहनती है और थिएटर भी करता है,
0: हाँ,
1: और बहुत समझदार है और दोस्तों के साथ मिलजुल के चलता है।
0: हाँ हाँ हाँ।
1: तो दिलीप साहब ने मेरी मीटिंग रख ली, मतलब मैं चला गया मिलने मुझे, तो मेरे साथ पंजाबी में बात करने लगे।
0: ओह क्या बात है,
1: वही पंजाबी उनकी थी जो हम पंजाबी मेरे घर में बोलते हैं
0: जी,
1: वो पंजाबी वो वहां के थे पिशावर के
0: जी,
1: उस तरफ के, और मैं बफा एबटाबाद मानसेरा वाला, तो हमारे घर में जो पंजाबी बोली जाती थी जुल जा को जुल बोलते थे, जुलो जरा यार के बदले जरा।
0: अच्छा,
1: यारा
0: जी जी जी, इसीलिए वो सागर यारा,
1: सागर यारा
0: किताब में आई,
1: करेक्ट। तो उन्होंने उस तरह बात, मैंने कहा बातचीत सब हो गई, उन्होंने कहा बेटा मैं करूंगा, जरूर करूंगा, तो तेरा प्रोड्यूसर भी अच्छा है, आदमी अच्छा है, यस यस।

0: सब्जेक्ट मैं पहले पूरा सुनूंगा, उनसे बैठूंगा पूरा, मुझे जो चीज पसंद नहीं आएगी वो कहूंगा। कहा जी वो ऐसे सलीम जावेद अलग हो गए, आपको बता रहा हूँ, किसी को बताइएगा मत। और इस तरह से बात शुरू की
1: और इस तरह दुनिया बनी।
0: हाँ।

0: आपके मन की फिल्म बनी थी?
1: नहीं, दुनिया मैं क्या बताऊं आपको, सिवाय इस बात के कि मुझे जो सीन उसी दिन मिलता था, जिस तरह फिल्मों में उस जमाने में ऐसा ही होता था। एक शेड्यूल है, उस शेड्यूल के सीन मिलते हैं आपको, अगले सीन राइटर सब बिजी होते थे।
0: जी जी जी।
1: तो मुझे वो थोड़ा सा
0: अनकंफर्ट था,
1: हल्का सा कि आप और उसी टाइम से सोच सकते हैं आप।
0: हाँ।
1: आप उसके साथ जी नहीं सकते उन सीनों के साथ। बाकी सब ठीक था, कोई ऐसी चीज नहीं थी। जावेद साहब बड़ी हेल्प करते थे, ऐसा अच्छा समझा के सीन बताते थे, उनकी जो खुद का विजन था वो भी बताते थे, ऐसा नहीं है। फिर भी होता है ना कि डायरेक्टर अपनी उठते

0: बैठते सोते जाते नहीं वाला होता उसको।
1: जी जी।
0: और इतनी बड़ी कास्ट होगी थी, दुनिया का कौन आदमी है जो फिल्म में नहीं था? दुनिया की कास्ट सोचिए आप, अशोक कुमार,
1: दिलीप कुमार,
0: प्रदीप कुमार,
1: अरे बाप रे,
0: प्राण,
1: ऋषि कपूर,
0: ऋषि कपूर, अमरीश पुरी,
1: अमृता,
0: प्रेम चोपड़ा। अरे भाई ये सीनियर, मैं सीनियर की बात कर रहा हूँ
1: जी
0: है। फिर गेस्ट रोल में सारा जी। इमेजिन कर सकते हैं कि इतनी बड़ी फिल्म, आप किसी फिल्म की कास्ट में इतने आदमी एक पिक्चर में बता दीजिए।
1: उसके पोस्टर भी भव्य थे एकदम।
0: हाँ, तो आप ये तो लोग समझते थे लॉटरी लगी है
1: जी।
0: तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली होते होते हुआ ना।
1: जी जी जी बिल्कुल, बहुत बड़ी फिल्म हो गई,
0: बहुत बड़ी फिल्म। और इस दौरान जो है थोड़े से सलीम साहब मेरे से खफा भी थे,
1: क्योंकि आप जावेद साहब के साथ काम,
0: मैं अलग हो गया ना, उनको लगता है कि मैंने तोड़ दी उनकी, मैंने तोड़ी नहीं थी।
1: जी जी।
0: मुझे तो उन्होंने बताया, उन्होंने आपस में पहले फैसला कर लिया था
1: जी,
0: पहले मीटिंग हो चुकी थी
1: जी।
0: तो उनके पास में सलीम साहब के पास एक दो प्रोजेक्ट लेके गया, दो एक दो चीजें। एक पहले मैं लेके गया, एक कोई प्रोड्यूसर आया मेरे पास, जितेंद्र साहब प्रोड्यूसर थे, जितेंद्र एक्टर। उन्होंने कहा मेरे पास श्रीदेवी की डेट है,
1: ओ ओ ओ,
0: लेकिन मुझे जल्दी पिक्चर शुरू करनी है, ये देखो क्या करना है। तो मैंने जावेद साहब से पूछा क्या ऐसा, बोला सलीम साहब के पास एक सब्जेक्ट है जो शुरू में हम दोनों ने साथ में काम भी किया था, उनके पास है सब्जेक्ट श्रीदेवी का है। मैं सलीम साहब के पास चला गया कि भाई आपके पास ऐसा सब्जेक्ट है और जितेंद्र प्रोड्यूसर है, उन्होंने कहा मैं चलता हूँ फिर आ जाओ। उन्होंने जितेंद्र को सब्जेक्ट सुनाया, सब्जेक्ट उसी तरह कंप्लीट नहीं था, लाइन
1: है ना,
0: आइडिया था, लाइन थी, लाइन सुनाई पूरी उन्होंने
1: जी,
0: ये नहीं कि कम सुनाया हो, लेकिन पूरा नहीं था, एक था ना फुल स्क्रीन पे फॉर्म नहीं, वन लाइन टाइप वाला आइडिया था। तो उन्होंने कहा अगले महीने की डेटे हैं, जितेंद्र ने कहा मैं ये नहीं हो सकती और डेटे पोस्टपोन करूंगा तो फिर वो हो जाएगा। और अलबत्ता वो पिक्चर जितेंद्र से मेरी भी छुट्टी, पिक्चर मुझे भी नहीं मिली और सलीम साहब को भी नहीं मिली। उसके बाद मैं साहिबा पिक्चर जिनके लिए कर रहा था, साहिबा के बाद जब वो कंप्लीट हो गई तो उन्होंने कहा अगला प्रोजेक्ट हम करते हैं, इस बार ऋषि कपूर को समझा दो कि अलग पेयर लेते हैं अपन, मतलब ऋषि कपूर और संजय दत्त नहीं लेते, संजय दत्त और सलमान खान लेते, वो दोनों साथ में पढ़े हैं, दोस्त भी हैं। तो मैंने कहा सलीम साहब के पास चलते हैं, उनको बोलते हैं ये बात, वो सोचे। अभी हमारी पिक्चर रिलीज भी नहीं हुई है
1: जी,
0: कंप्लीट हो गई थी, अभी रिलीज हो गई, बाकी पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा था। तो मैं उन प्रोड्यूसर साहब को लेके, चावला साहब, डीके चावला नाम था उनका, उनको लेके गया इनके पास। इन्होंने कहा प्रोजेक्ट ऐसा ये है, ये हमारे सोचा है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो सलीम साहब ने मुझसे कहा, वो मुझे रमेश बोलाते, रमेश आप यहाँ बैठिए, हम दोनों जरा अलग बात करना चाहते हैं।
1: ओके।
0: मैं हॉल में बैठा रहा, ये अंदर बेडरूम वगैरह में गए, इन्होंने आपस में बात कर ली, दोनों वहां आए बहुत खुश थे। तो
1: पैसों वगैरह की बातें,
0: पैसों की बात थी ना, तो मेरे सामने नहीं करना चाहते होंगे, जो भी होगा सलमान खान का क्या रेट होगा और राइटर इनका क्या रेट होगा, वो बातचीत तय होगी। दोनों खुश थे और सलीम साहब ने मुझे कहा रमेश सब डिसाइड हो गया भाई, सब ये सेटिस्फाइड है, पूछ लीजिए इनसे। मैंने कहा क्यों चाहे, चावला साहब ओके, बोले 100% ओके।
1: वाह,
0: ओके हो गया सब। हम निकले, हमने जाना था नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त होता है जब पिक्चर एंड में, उस जमाने में तो रेमनॉल्ड लैब में गए, नेगेटिव कटिंग का मुहूर्त किया, कैंची वो लगाई, नीचे लिफ्ट से नहीं आए, सीढ़ियों से नीचे उतरे, जैसे कंपाउंड में आए मेरे प्रोड्यूसर साहब गिर गए। उनके बहुत शरीर बहुत हैवी था उनका,
1: जी जी जी,
0: बहुत पेट बहुत निकला हुआ ये सब वगैरह थक करके, और सब मालिक वो आ गया, रेमनॉल्ड मालिक उनका वो आ गया, और लोग जमा हो गए, हाथ पाथ देखा उन्होंने गड़बड़ है। तो रेमनॉल्ड वाले ने बोला प्लीज यहां से लेके जाओ। तो बाहर गाड़ी में उनको डाला,
1: हॉस्पिटल ले गए,
0: हॉस्पिटल से पहले घर लेके आए, क्योंकि जा चुके जो मतलब वो देखा किसी डॉक्टर ने जो वहां बुलाया गया लोकल, उसने कहा नहीं, उनको वहां पीछे सीट पर लिटाया हुआ था, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठा था, उनकी गाड़ी थी, तारापुर गार्डन यहाँ पे आए और वहां रहते थे और वो चले गए। और इस तरह ये सलीम साहब का सब्जेक्ट जो है
1: अटक गया,
0: फिर अटक गया।

0: कभी तो हंसाए।
1: प्रोजेक्ट मेरा फिर ड्रॉप हो गया, मेरा प्रोड्यूसर ही मेरा। अब मेरे लिए ये मुश्किल थी कि वो पिक्चर जो रह गई है मैं बना चुका हूँ, वो रिलीज होनी चाहिए। अब साहब उस रिलीज के चक्कर में बजट कितना, उन्होंने किससे क्या उधार लिया, वो करते करते जितने पैसे आ रहे थे उससे ज्यादा उन्होंने उधार लिया हुआ था।
2: जी जी जी।
1: उन्होंने पर्सनल एक्सपेंसेस के भी लिया हुआ था, फैमिली के लिए लिया हुआ था, शिमले के थे वो, तो जो पैसे आने हैं मुझे डिस्ट्रीब्यूटरों से उससे ज्यादा उधार है, तो सबसे मिटिए करके मैं वो कम करवाता रहा कि पिक्चर रिलीज होगी तो आपके पैसे मिलेंगे। तो इतने पे मान जाइए, चल गई तो आप उसमें शेयर रख लीजिए अभी से।
2: जी जी।
1: ना चली तो आप सबके लक है। करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
2: बापरे।
1: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में, और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के।
2: हाँ हाँ।
1: तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। मतलब फिर अगली पिक्चर में देखिए आप, संजय दत्त और सलमान खान हम ले रहे थे और मैंने ऋषि कपूर के कान में बात डाल दी थी।
2: जी जी जी।
1: इस तरह साहब हमारी फिल्म में भाग्य सर्कमस्टांसेस एक्टर्स का वो अब

0: ही सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म और एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए,
0: जो वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं, नहीं करते भी है, देखते भी है, याद भी करते हैं, सब है, गाने बेचता है, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही है ये सबसे हटके होगी,
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: बड़ी स्टार कास्ट, अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई। मेरे प्रोड्यूसर ने कहीं कुछ ये नहीं कहा ये नहीं करूंगा, मैंने कहा मैसूर जाना है मुझे, मैसूर पहले तो शूटिंग चलो जाओ आते हैं चलते, शिमला शूटिंग हो, वहां नॉर्थ में शूटिंग हो के जहां पे बोला जो जिस तरह लेने के लिए कि ये विजुअल आएगा तो ये पिक्चर अलग लगेगी सबसे, ऐसी फिल्म थी। आप उसका विजुअल देखिए, आप बड़ा कैमरामैन लिया महाजन साहब कैमरामैन,
1: ओहो
0: के महाजन, तो सब चीजें उन्होंने किसी चीज में कमी नहीं की। क्या हुआ सब डेथ होनी थी और हार्ट अटैक, सीढ़ी उतरने का हार्ट अटैक तो पहली बार, फिर बाद में पता चला कि उनकी वाइफ ने मुझे बताया था कि उनका उनका कमजोर था हार्ट, पहले तो प्रॉब्लम थी उनकी,
1: जी जी जी,
0: अचानक अभी सब कुछ नहीं हुआ है।

0: अभी आपने सुनी फिल्मों और रंगमंच के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज इस लंबी बातचीत का तीसरा भाग था। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: उजाले उनकी यादों की। उजाले।

अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण, जिनका रिले आकाशवाणी के विविध भारती मुंबई केंद्र से किया जा रहा था एफएम 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 5 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम हेलो हिसार।

0: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
1: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।
2: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर TC टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी OTP पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
3: RBI कहता है OTP या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।
4: हेलो हिसार।
5: हेलो हिसार।

नमस्कार श्रोताओं, गर्मियों की इस सुनहरी शाम में जब आसमान पर ढलते सूरज के रंग बिखर रहे हैं और हवाओं में एक हल्की सी नरमी घुलने लगी है, आपका हार्दिक स्वागत है आप सभी के अपने पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो हिसार में। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी

0: अपनी रेडियो हम सफर प्रीति ढिंडोरिया और अगले कुछ पलों तक हम साथ मिलकर रचेंगे बातें और गीतों, यादों और मुस्कुराहट से सजी एक खूबसूरत सी महफिल। गर्मियों की शामें अपने साथ लाती हैं कुछ मीठी यादें, आम की खुशबू, ठंडी कुल्फी का स्वाद और छत पर बिताए गए पल और अपनों के साथ हंसी ठिठोली। और आज इन्हीं प्यारे एहसासों को हम आपके साथ साझा करने आए हैं। तो अगर आपके दिल में भी है कोई बात या फिर सुनना चाहते हैं कोई अपनी पसंद का गीत या फिर कोई किस्सा है, फरमाइश है या बस अपनीपन से भरी दो बातें करनी है, तो उठाइए अपना फोन और जुड़ जाइए हमारे साथ हालो हिसार कार्यक्रम में, क्योंकि आपकी आवाज से ही तो सजती है हमारी ये महफिल और आपके बिना ये शाम हमेशा अधूरी है। तो आइए शुरू करते हैं इस सुरीले, सजीले और दिल को छू लेने वाले सफर को। हेलो
1: जी दीदी, नमस्कार।
0: हेलो हिसार कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: जी दीदी, मैं ग्राम नरेला दामोदर भोपाल मध्य प्रदेश से राम बाबू शर्मा बात कर रहा हूँ।
0: राम बाबू शर्मा जी, कैसे हैं आप?
1: जी दीदी, बहुत बढ़िया हूँ, बस फोन लगाया, बात हो रही है आपसे।
0: जी हमें भी बहुत अच्छा लगा, आपका फोन लगा, आपकी हमसे बात हो रही है। बताइए, रेडियो कितना सुनते हैं आप, क्या करते हैं? और
1: ये दीदी, मैं किसानी करता हूँ, तो किसानी में रेडियो की तो ऐसी है, वो बजता रहता है, अपन सुनते रहते हैं।
0: अच्छा, काम में मन भी लगा रहता है और गीत भी चलते रहते हैं, जानकारियाँ भी मिलती रहती है।
1: हाँ जी, हाँ जी बिल्कुल।
0: चलिए अच्छा लगा राम बाबू जी, इसी तरह से अपना काम भी मन लगा कर कीजिए और रेडियो भी मन लगा कर सुनिए। आज के कार्यक्रम में क्या सुनवाए आपको?
1: जी दीदी, फिल्म का नाम है इंग्लिश बाबू देसी मैम, उसमें गाना है दीवाना दिल हुआ दीवाना।
0: ठीक है, हम आपकी ये फरमाइश जरूर पूरा करेंगे। कुछ और कहना चाहेंगी?
1: जी दीदी कुछ नहीं, यही कहना चाहूंगा रेडियो का माध्यम ऐसा होता है किसानी में कि कुछ करना नहीं पड़ता है उसमें, वो अपने आप बजता रहता है और अपन अपने काम करते रहते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, इसके साथ आपको बंद कर बैठने की जरूरत नहीं।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, मोबाइल चलाना तो बंद कर बैठना होता है, लेकिन रेडियो सुनना बंद कर बैठने की जरूरत नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बहुत अच्छा लगा जानकर। ऐसे ही हमसे अपना प्यार बनाए रखिए। का पसंद का गीत है ये सुनिए। कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो,
1: हेलो
0: हाय,
1: नमस्कार
0: नमस्कार। कार्यक्रम हेलो हिसार में स्वागत है आपका।
1: जी। मैं बात कर रहा हूँ सर, गांव खारिया से। बिल्कुल
0: मनीष जी कैसे हैं,
1: ठीक हैं जी। अभी
0: क्या कर रहे हैं?
1: तो कुछ नहीं, खेती बाड़ी वाला काम हो गया, बिजाई बट्टे वगैरह कर रहे हैं अभी तो। हाँ
0: अच्छा, और रेडियो भी साथ साथ सुन रहे हैं
1: जी।
0: जी। आज के कार्यक्रम
1: और
0: में क्या सुनेंगे आप?
1: एक गाना है सर, तेरी आंखों की कसम मैं तुमसे प्यार करता हूँ,
0: ठीक है, ये गीत हम
1: छोटा
0: आपको।
1: सा घर 1996 बॉलीवुड फिल्म का गाना है, गीता कुमार और सोनू ने गाया था।
0: बहुत खूब, आप अच्छी जानकारी भी रखते हैं जो गीत सुनना चाहते हैं, और बहुत अच्छी बात है जो गीत आप सुनना चाहते हैं उसकी जब जानकारी रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है
1: हाँ,
0: जी।
1: और मैडम जी मेरे दोस्त भी है कुछ सुनने वाले, मेरे साथ ही सुनते हैं। सत्तू
0: अच्छा, नाम लीजिए।
1: लाख वाला, राजू होके वाला, सुरेश सारंग, विनोद कसमा।
0: चलिए, अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुनिए अपनी पसंद का ये गीत। कार्यक्रम में फोन करने के
1: हाँ
0: लिए धन्यवाद।
1: जी।

0: हेलो,
1: हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार
0: नमस्कार। कार्यक्रम हेलो हिसार में बहुत बहुत स्वागत है। कौन
1: जी,
0: बात कर रहे हैं?
1: मैं विजय सिंह लखेरा बोल रहा हूँ, वीरभूमि खेड़ी तलवाना महेंद्रगढ़ से जी।
0: विजय जी, कैसे हैं? कामकाज कैसा चल रहा है?
1: काम काज भी आप लोगों की दुआओं से जी बहुत अच्छा चल रहा है, और
0: चलिए
1: परम्परा परमात्मा की आशीर्वाद है जी।
0: चलिए, अच्छा ही चलना चाहिए। बहुत अच्छा लगा जानकर। बताइए, आपके महेंद्रगढ़ में गर्मी के क्या मिजाज हैं?
1: गर्मी तो इतनी ज्यादा नहीं है, मैम। कुछ 5-7 रोज पहले तो हल्की फुल्की बारिश सी आई थी, उससे मौसम में ठंडक बनी हुई है जी अभी तो।
0: अच्छा, चलिए अच्छी बात है। इससे हमारा जो कामकाज है वो भी सही गति से होता है, क्योंकि ज़्यादा गर्मी में भी हम ज़्यादा काम नहीं कर सकते और ज़्यादा सर्दी में भी।
1: जी
0: जी बताइए, आज के कार्यक्रम में क्या सुनेंगे आप?
1: मैम, फिल्म का नाम है जी अनुरोध, और उसमें गीत है जी आते जाते खूबसूरत आवारा सड़कों पे मिल जाते हैं कभी कभी,
0: चलिए,
1: ये गीत
0: आपकी
1: है जी। मैम,
0: पसंद का जो गीत है ये हम जरूर सुनवाएंगे। कुछ और कहना चाहेंगे विजय जी?
1: आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के अब अग्रिम बधाई देता हूँ जी
0: बहुत
1: सभी
0: बहुत
1: आकाशवाणी
0: शुक्रिया,
1: के जी, और
0: बहुत
1: ये
0: बहुत
1: 90 वर्ष,
0: शुक्रिया। और आप
1: और
0: सबको भी इस दिन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि
1: देखिए श्रोताओं का
0: आकाशवाणी बिना श्रोताओं के कुछ भी नहीं है।
1: ये एक दूसरे के पूरक है जी,
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी श्रोताओं के, श्रोता से
0: बिल्कुल
1: आकाशवाणी,
0: बिल्कुल
1: ये एक दोनों के दूसरे पूरक हैं जी।
0: जी।
1: और मैम कुछ से मित्रों को याद कर सकते हैं इस
0: हाँ
1: बहाने
0: जी,
1: जी।
0: लीजिए नाम लीजिए।
1: मैम सबसे पहले तो रामनिवास अग्रवाल जी हैं, और राजेंद्र सैनी जी, प्रकाश अम्बावता जी, हरपाल जी, और तमाम मित्रों के साथ सुना चाहेंगे जी इस गीत को।
0: चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम में फोन करने के लिए। सुनिए अपनी पसंद का ये खूबसूरत सा गीत।
1: जी थैंक यू।

0: जो प्रोग्राम आपने जो पेश किया ना जी, वो ममता दीदी का प्रोग्राम पेश किया आपने
1: आज। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और हम यही चाहते हैं कि हमारे सुनने वालों को जो है पूरी जानकारी मिले और हमेशा पसंद आए।
0: बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश करते हो जी। जैसे शनिवार को समाज ने बहुत बढ़िया प्रोग्राम पेश किया था शाम को 5 बजे।
1: अच्छा,
0: अच्छे प्रोग्राम चल रहे हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छा लगा जानकर। ऐसे ही अपना प्यार आकाशवाणी हिसार के साथ बनाए रखिए और अपनी पसंद का गीत सुनिए। कार्यक्रम में फोन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया
0: जी। दोस्तों का नाम लेना चाहता
1: लीजिए।
0: दिलबाग वकील शिलोंग स्त्री का
1: ठीक है। आप अपनी पसंद का गीत सुनिए अपने दोस्तों के साथ।
0: ठीक है जी, धन्यवाद।
1: धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: हेलो हेलो, हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: जी, मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, तहसील सिरोंज, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश से।
0: कैसे हैं आप?
1: हम बहुत अच्छे हैं, और आप कैसी हो?
0: हम भी बहुत अच्छे हैं, और हमारे सुनने वालों से जब बातें करते हैं और भी अच्छा महसूस करते हैं।
1: जी,
0: जी,
1: मौसम कैसा है आपके इधर हरियाणा में?
0: जो मौसम है वो भी बहुत अच्छा है, मतलब ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा सर्दी।
1: लेकिन हमारे इधर तो 10 रोज से मौसम खराब चल रहा है, बारिश हो रही है, पेड़ गिर रहे,
0: अच्छा।
1: गिर गए, आंधी तूफान हो गया।
0: चलिए, आपके घर परिवार में सब सुख कुशल मंगल।
1: जी,
0: चलिए, अच्छा लगा जानकर। और जो ये मौसम की मार है, ये तो हमें झेलनी ही पड़ेगी, कहीं ना कहीं जिम्मेदार भी हम हैं, तो असर भी हम ही झेलेंगे।
1: सही बात है। अभी तो ऊपर वाले, कुदरती का खेल है, ऊपर वाले की है, जो मुझे
0: बिल्कुल,
1: कुछ मर्जी है उसके हाथ में है।
0: हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। बताइए, आज के कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनेंगे?
1: जी, फिल्म का नाम है जनता की अदालत, उसमें से गाना कोई सा भी चला देना, सभी अच्छे गाने हैं।
0: कोई भी गीत?
1: जी, सभी अच्छे हैं इसमें तो। मिथुन दादा की, कुमार सानू का गाया वो गीत, कोई सा भी चला देना आप।
0: ठीक है, हम आपकी फरमाइश को जरूर पूरा करेंगे। कार्यक्रम में फोन किया, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी,
0: सुनिए
1: आपका
0: अपनी
1: बहुत
0: पसंद का गीत।
1: धन्यवाद।

0: हेलो,
1: जी नमस्ते। हेलो
0: नमस्कार। हेलो हेलो, हिसार कार्यक्रम में स्वागत है
1: जी
0: आपका।
1: जी नमस्ते
0: नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं ग्राम बचोड़ा तहसील नागदा जिला उज्जैन से प्रेम सिंह सिसोदिया बोल रहा हूँ
0: प्रेम सिंह जी, कैसे हैं, क्या करते हैं आप?
1: जी। थैंक यू सो मच। मैं बहुत अच्छा हूँ। मैं खेती किसानी का काम और एक भजन गायक भी हूँ।
0: अच्छा, भजन गायक हैं, तो हमें भी कुछ सुनाएंगे आप?
1: जी जी बिल्कुल सुनाऊंगा। पहले बता दूं आपको, मेरा आकाशवाणी हिसार में पहली बार कॉल लगा है।
0: अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे आकाशवाणी परिवार के सदस्य बनने के लिए, और बने रहिएगा ऐसे
1: जी
0: ही।
1: जी थैंक यू सो मच। बताऊं दीदी, हमारा एक ग्रुप बना हुआ है ना, हेलो फरमाइश रेडियो एकता ग्रुप।
0: अच्छा।
1: जी हाँ, उसके माध्यम से हमें कार्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है और जुड़ने का मौका भी मिलता है। वैसे हम आकाशवाणी सुनते रहते हैं मोबाइल ऐप्स पर।
0: अच्छा,
1: जी हाँ, तो उसके
0: चलिए।
1: लिए बताओ आपको, जैसे कि हमारा ग्रुप के माध्यम से हमें जानकारी मिलती रहती है ना, तो जैसे मैंने अपने एक रजिस्टर भी बना रखा है, जिस भी
0: अच्छा।
1: आकाशवाणी में मेरा कॉल लगता है ना जी, तो उसको मैं एक नोट करके रखता हूँ। 2026 में मैंने ये एक लक्ष्य रखा था अपना कि मतलब जितनी भी आकाशवाणी से संपर्क किया जाए, संपर्क करने के बाद में जब भी कॉल रिकॉर्ड होता है ना दीदी मेरा, तो मैं
0: अच्छा
1: उस कार्यक्रम को बिल्कुल रूप से मतलब सुनकर ही उस कार्यक्रम को रखता हूँ फिर।
0: अच्छा बहुत अच्छा लगा
1: जी
0: आपका
1: हाँ
0: इतना प्यार देखकर आकाशवाणी के प्रति, रेडियो के प्रति। प्रेम सिंह जी जैसा नाम है, वैसे ही आप जो है अपना प्यार आकाशवाणी के साथ बना रहे हैं, और ऐसे ही बने रहिएगा
1: जी बिल्कुल दीदी, मैं
0: जी।
1: बताऊँ आपको, जैसे मैं हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग के साथ रहता हूँ, हमेशा खुश रहता हूँ, लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करता हूँ, और
0: जी
1: मेरे स्वभाव से सभी लोग खुश रहते हैं। मैं ऐसे हीन भावना नहीं रखता हूँ किसी से भी कि उसका मतलब ऐसा काम हो रहा है तो जलन हो या मतलब उसको मतलब पीछे रखने की हो, ऐसे मतलब सोच रहता हूँ, ऐसा मैंने कभी भी नहीं सोचा। वो वैसे अपने परिवार वाले को भी समझाता रहता हूँ, बच्चों को भी बताता हूँ, मतलब अगर कोई अच्छा काम करे ना तो उसको फॉलो करके मतलब उसके साथ में रहे,
0: जी जी
1: अगर कुछ
0: प्रेम सिंह
1: गलत
0: जी।
1: भी हो रहा है ना तो उसको मतलब बता दिया जाए कि आप ये गलत कर रहे हैं, आप ऐसा मत करिएगा आगे से।
0: जी, बहुत अच्छी सोच है आपकी, और अपनी सोच को बनाए रखिएगा। बताइए, आज गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: जी बिल्कुल बताना चाहूंगा दीदी, ने फिल्म का नाम है मुझसे शादी करोगी, और गाने के बोले लाल दुपट्टा उड़ गया रे हवा के झोंके
0: ये
1: से।
0: आप भजन गाते हैं तो ये गीत भी हमें

0: वाह
1: ना।
0: वाह वाह,
1: जी
0: जय
1: जी जी
0: बजरंग बली
1: जी
0: जी। कार्यक्रम
1: बिल्कुल
0: में फोन किया, इतनी अच्छी तरह से हमें जो भजन है वो सुनाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए अपनी पसंद का गीत।
1: जी, थैंक यू सो मच दीदी।

0: हेलो,
1: जी नमस्कार मैडम
0: नमस्कार। हेलो हिसार कार्यक्रम में स्वागत है आपका।
1: जी। धन्यवाद आपका भी जी।
0: जी, कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं उदयपुर राजस्थान से उदयलाल टेलर बात कर रहा हूँ।
0: उदयलाल जी कैसे हैं?
1: मस्त है, आनंद से है
0: जी
1: और आपसे बात कर रहे हैं।
0: जी उदयपुर बहुत अच्छी सिटी है देखने के लिए। बताइए हमारे सुनने वालों को जिनको नहीं पता कि क्या क्या खास है अगर वो घूमने जाए तो।
1: उदयपुर सिटी पर्यटन सिटी है, झीलों की
0: झीलों
1: नगरी
0: की
1: है, तो
0: नगरी कहा जाता है उदयपुर
1: इसकी
0: को।
1: सही पहचान झीलों से है।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल।
1: कई सारी झीलें हैं, फतेह सागर, पिछोला, गोवर्धन सागर, स्वरूप सागर, उदय सागर, राजसमंद, जयसमंद,
0: जी
1: इतनी सारी झीलें हैं।
0: अच्छा, चलिए
1: और
0: झीलों की
1: मेवाड़ की
0: नगरी।
1: राजधानी होने से यहाँ पर हमारे महाराणा साहब विराजते हैं, तो उनका सिटी पैलेस देखने लायक है।
0: अच्छा जी।
1: और गार्डन में गुलाब बाग है, सैनियों की बाड़ी है, हमारे महाराणा प्रताप का स्मारक है, चेतक
0: अच्छा।
1: घोड़े पर विराजमान है मोती मगरी पर,
0: जी
1: और यहाँ पर बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग होती है।
0: हाँ जी हाँ जी। तभी तो हमारे सुनने वालों को भी पता चलना चाहिए। उदयपुर के हमारे एक श्रोता हैं जो हमें उदयपुर घुमा रहे हैं बातों से। जी, आज के कार्यक्रम में गीत कौन सा सुनेंगे आप?
1: गीत सुनेंगे हम फिल्म शोर का,
0: कौन सा गीत?
1: एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी कहानी है।
0: चलिए उदयलाल जी, आप खूबसूरत सी झीलों की नगरी उदयपुर में सुनिए शोर फिल्म का ये खूबसूरत गीत।
1: जी मैडम, धन्यवाद।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हाँ जी, हेलो हिसार जी।
0: बिल्कुल, हेलो हिसार कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में
1: नमस्कार जी, प्रीति डिंडोरिया जी,
0: नमस्कार जी, कौन बात कर रहे हैं
1: मैं रमेश वर्मा बोल रहा हूँ जी, हिसार से।
0: जी? रमेश वर्मा जी, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया हूँ जी, आप लोगों के प्रोग्राम सुन रहा हूँ, बहुत बढ़िया लाइफ चल रही है जी, मालिक की कृपा है।
0: चलिए, अच्छा ही होना चाहिए, अच्छी ही लाइफ चलनी चाहिए।
1: हाँ जी,
0: जी, रमेश
1: आपके
0: जी।
1: प्रोग्राम सुनते हैं जी। हेलो हिसार, तो वो नमस्ते हिसार का तो कहना ही क्या है जी, वो
0: अच्छा
1: तो
0: जी,
1: नंबर वन है जी,
0: चलिए, बहुत
1: और
0: बहुत
1: जब आप आ
0: शुक्रिया।
1: जाते हो तो प्रोग्राम ही कुछ और हो जाता है जी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया
1: और
0: रमेश जी।
1: हाँ, गानों का जो चयन करते हो ना, हर रंग होता है जी, हर तरह का। जो कविता कृष्ण मूर्ति का जी गाना चला था, बहुत जबरदस्त गाना था जी वो। हाँ
0: अच्छा जी, चलिए, हमारे
1: जी
0: सुनने वालों को पसंद आना चाहिए, तभी हमारी मेहनत जो है वो सार्थक होती है।
1: जी हाँ जी हाँ, और बड़ी मुश्किल से फोन मिला, लास्ट में मिला मेरे को, ये लग रहा है
0: चलिए, मिल गया,
1: कोशिश
0: देर आए
1: करते हैं।
0: दुरुस्त आए।
1: हाँ जी, बहुत कृपा है जी मालिक की, आप लोगों का साथ है।
0: जी बताइए, गीत कौन सा सुनेंगे फिर आज?
1: आज की फिल्म है जी दिल है कि मानता नहीं, फिल्म का गीत आवाज कुमार शानू की है, दो लाइनें गुनगुनाना चाहता जी।
0: स्वागत है आपका।
1: कैसे

0: बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो हिसार। इस वक्त शाम के 6 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।
3: 90 साल
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य जनसंपर्क मजबूत करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारत सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश के रूप में उभरा है।
5: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% LPG कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, CNG आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा।
4: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। श्री मोदी ने गुडेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। प्रधानमंत्री ने काजीपेट विजयवाड़ा रेल मल्टीट्रैकिंग गलियारा में काजीपेट अंडर रेल बाईपास सहित कई रेलवे और लॉजिस्टिक्स परियोजनाओं को भी झंडी दिखाई। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण के प्रति उत्तरदायित्व, युवा सशक्तिकरण और आंतरिक शुचिता की भावना के साथ विकसित भारत के निर्माण के लिए एकजुट होने की अपील की है। श्री मोदी ने आज कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने संस्थान में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन भी किया। तमिलगु वेत्री कड़गम टीवी की पार्टी प्रमुख सी जोसेफ विजय तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। उन्हें आज सुबह मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने श्री जोसेफ विजय को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। श्री विजय के साथ 9 मंत्रियों ने भी शपथ ली है। राज्य में विधायकों के शपथ ग्रहण के लिए विधानसभा सत्र कल होगा। नवगठित सरकारों को बुधवार तक बहुमत साबित करने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, साथ ही प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA नीट UG 2026 परीक्षा से जुड़ी कथित अनियमितताओं के संबंध में राजस्थान विशेष अभियान समूह

0: जांच में सहयोग कर रही है। एनटीए ने कहा है कि 3 मई को यह परीक्षा पूर्ण सुरक्षा प्रोटोकॉल के अंतर्गत आयोजित की गई थी। एजेंसी को 7 मई को परीक्षा के आसपास कथित कदाचार गतिविधियों के संबंध में सूचना मिली थी। एनटीए ने स्वतंत्र सत्यापन और आवश्यक कार्रवाई के लिए इन सूचनाओं को केंद्रीय एजेंसियों को भेज दिया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू कर दी। सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में श्री मोदी के नेतृत्व में सोमनाथ मंदिर वर्तमान समय में अपने स्वर्ण युग में है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई में लखनऊ सुपर जायंट्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 204 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में ताजा समाचार मिलने तक चेन्नई सुपर किंग्स ने चौथे ओवर में एक विकेट पर 45 रन बना लिए हैं। लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 203 रन बनाए। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: अभी आप सुन रहे थे हिंदी में समाचार जिनका रिले किया जा रहा था आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। अब आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रमों की रूपरेखा। सबसे पहले सुनिए आज शेष रहे कार्यक्रमों के बारे में। कार्यक्रम भक्ति संगीत का समय रहेगा 6:20 पर। 6:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन जिसका विषय रहेगा रास्ते से मंजिल तक सावधानी का सफर। इस कार्यक्रम को प्रस्तुत करेंगी मधु शर्मा। कार्यक्रम महारी पसंद आजाद भाई के साथ आप सुनेंगे 7:00।

रात्रि 8 बजे आप सुन सकेंगे ये कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 8:45 पर और रात्रि 9 बजे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुन सकेंगे। रात 9:15 से रात 10 बजे तक आप सुनेंगे विविध भारती मुंबई के प्रसारण और रात्रि 10 बजे आप सुनेंगे ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम। राष्ट्रीय हिंदी समाचारों का समय रहेगा रात्रि 11 बजे और 11:05 पर आप सुनेंगे राष्ट्रीय अंग्रेजी समाचार। ये दोनों ही समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।

आइए श्रोताओं, अब आपको बता दें हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले मुख्य मुख्य कार्यक्रमों के बारे में। कल प्रातः 5:53 पर हमारे केंद्र की सभा शुरू होगी और प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे हमारे केंद्र से कार्यक्रम लोक रंग। कार्यक्रम सुप्रभात का समय रहेगा प्रातः 7:40 पर और प्रातः 10 बजे आप सुन सकेंगे कार्यक्रम नमस्ते हिसार। कल साय 5 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम एक कलाकार भक्ति संगीत का समय रहेगा 6:20 पर और 6:30 पर आप सुनेंगे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम। कार्यक्रम खेती किसाना सेती आप सुन सकेंगे कल साय 7 बजे और 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम महरे गांव। कल रात्रि 8 बजे सुनिएगा कार्यक्रम महफिल के अंतर्गत कुछ गज़लें और कल रात 10 बजे आप सुनेंगे आज प्रसारित किए गए कार्यक्रम हेलो हिसार का पुनः प्रसारण। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रमों की रूपरेखा FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार जिनका रिले हम करेंगे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप सुकीर्ति से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हिसार में 72%, सांपला में 71% और उकलाना में 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा की। गुजरात के सोमनाथ मंदिर में कल पूरे उत्साह के साथ अमृत पर्व मनाया जाएगा। हरियाणा के शिव मंदिरों में भी विशेष कार्यक्रमों का आयोजन होगा। और गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा का 7 दिन का रिमांड दिया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत और अन्य कई स्थानों से मिली जानकारी के अनुसार मतदान सुबह 8 बजे शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहा। मतदान को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा गया। चुनाव संपन्न होने से पहले मिली आधिकारिक जानकारी के अनुसार उकलाना नगर पालिका के लिए 69% मतदान हुआ। राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह कल्याण ने बताया कि अभी तक मिली जानकारी के अनुसार सभी स्थानीय निकायों में 50% से अधिक मतदान हुआ। नगर निगम अंबाला में 50%, हिसार में 72%, रोहतक के सांपला नगर पालिका में 71%, पंचकुला में 50%, नगर निगम सोनीपत में 45% तथा रेवाड़ी में 60% और मतदान दर्ज किया गया।
1: अभी तक जो हमें सूचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार जो टोटल वोटिंग है वो 50% का आंकड़ा क्रॉस कर लिया है। अंबाला में अभी तक जो रिपोर्टेड है 50%, हिसार में 72%, पंचकुला में भी 50%, रिवाड़ी 60%, रोहतक 71% और सोनीपत में 45% अभी तक वोटिंग रिपोर्टेड है। और ये अभी और काफी बढ़ने की संभावना है, बिकॉज जैसे जैसे रिपोर्ट अपडेट होगी तो ये बढ़ेगी। अभी
0: उन्होंने बताया कि शाम 6 बजे तक जो लोग लाइनों में लगे थे उनको वोट डालने दिया जाएगा। राज्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि शाम के बाद मतदान प्रतिशत बढ़ेगा। फरीदाबाद के टिगांव उपमंडल के गांव शाहूपुरा खादर में आयोजित पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ। चुनाव के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए व्यापक इंतजाम किए। प्रशासनिक अधिकारियों ने लगातार क्षेत्र का दौरा कर स्थिति पर नजर बनाए रखी, जिससे मतदाताओं ने बिना किसी भय के अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ग्रामीणों में चुनाव को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला। शाम 4 बजे तक कुल 80.3% मतदान किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल, असम और पुडुचेरी में भारतीय जनता पार्टी की जीत केंद्र सरकार की राष्ट्रीय नीति के प्रति जनता के समर्थन का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि चुनाव परिणामों से देश की भावना का पता चलता है। आज

0: बेंगलुरु में भाजपा कार्यकर्ताओं से प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो तेजी से कार्य कर सके, सुशासन दे सके और समस्याओं का समाधान कर देश को आगे ले जा सके। उन्होंने कहा कि भाजपा और एनडीए का शासन अब 21 राज्यों में है जहां लोक कल्याण तथा देश की समृद्धि के लिए काम हो रहा है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया।
1: दशकों से कांग्रेस देश की महिलाओं की आंखों में धूल झोंकती रही है। कांग्रेस महिला आरक्षण का वादा करती थी और फिर अपने ही सहयोगी दलों से इसका विरोध करवाती थी। बड़ा खेल चला करता था। बीजेपी ने इस खेल को खत्म किया, महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का कानून बनाया। लेकिन साथियों, कांग्रेस देश की सबसे बड़ी नारी विरोधी पार्टी है, इसलिए कांग्रेस ने संसद में नारी शक्ति बंधन संशोधन को गिरा दिया।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए देश की तैयारियों की समीक्षा बैठक की है। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक में श्री शाह ने सरकारी एजेंसियों की तैयारियों का आकलन किया, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों, संसाधनों की तैनाती और अंतर एजेंसी समन्वय की समीक्षा की। गृह मंत्री ने देश में किए जा रहे दीर्घकालिक बाढ़ निवारण उपायों की प्रगति की भी समीक्षा की, जिनमें महत्वपूर्ण ढांचागत परियोजनाओं का संरक्षण, नदी प्रबंधन पहल और पूर्व अनुमान में वैज्ञानिक प्रगति शामिल है। बैठक में जन जागरूकता, जानमाल के नुकसान को रोकने के लिए निर्माण कार्यक्रमों और आवश्यक राहत सामग्री और चिकित्सा तैयारियों के पर्याप्त भंडार को सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की गई। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हमारे बुलेटिनों और ताजा समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल और एक्स हैंडल आकाशवाणी न्यूज चंडीगढ़ पर भी उपलब्ध हैं। गुजरात में सोमनाथ मंदिर में अमृत पर्व पर हर्षोल्लास और उत्साह का वातावरण बना हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे।
1: कल सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्षों का उत्सव मनाया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के लिए, विकसित भारत के लिए ऐसे ऐतिहासिक अवसर हमें नई ऊर्जा से भरते हैं।
0: भगवान शिव से जुड़े जो 12 ज्योतिर्लिंग आस्था और श्रद्धा के विशेष केंद्र हैं और उनमें सोमनाथ प्रथम ज्योतिर्लिंग है। अमृत पर्व पर पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के शिखर का 11 तीर्थ स्थलों के जल से अभिषेक किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में कल ध्वज पूजा और महापूजा होगी। सोमनाथ अमृत पर्व पर अंबाला छावनी स्थित प्राचीन हाथी खाना मंदिर में भी कल एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के परिवहन मंत्री अनिल विज बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करेंगे। उपायुक्त अजय सिंह तोमर ने बताया कि कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का लाइव प्रसारण भी होगा। कार्यक्रम में कलश यात्रा निकाली जाएगी और प्रमुख संतों को सम्मानित किया जाएगा। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों द्वारा भगवान शिव शंकर द्वारा समुद्र मंथन व शिव तांडव के साथ साथ भगवान शिव पर आधारित गीत की प्रस्तुति भी दी जाएगी। फरीदाबाद की सैनिक कॉलोनी के शिव मंदिर में कल सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का आयोजन किया जाएगा। यह कार्यक्रम सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। उपायुक्त आयुष सिन्हा ने बताया कि कार्यक्रम की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आयोजन को सफल एवं व्यवस्थित बनाने के लिए संबंधित विभागों को आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस अवसर पर सोमनाथ मंदिर के ऐतिहासिक पुनर्निर्माण और उससे जुड़े राष्ट्र गौरव के विषयों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम की खास बात यह रहेगी कि इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सोमनाथ से तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कुरुक्षेत्र से लाइव संबोधन भी होगा। इसके लिए लाइव प्रसारण की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं ताकि अधिक से अधिक लोग इस ऐतिहासिक आयोजन से जुड़ सकें। उपायुक्त ने बताया कि कार्यक्रम स्थल पर सुरक्षा, पेयजल, बैठने और यातायात प्रबंधन सहित सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की गई हैं। गुरुग्राम की धनशोधन निवारण अदालत ने पंजाब के उद्योग मंत्री संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय की 7 दिन की हिरासत में भेज दिया है। निदेशालय ने कल संजीव अरोड़ा को चंडीगढ़ से 100 करोड़ रुपए से अधिक के वस्तु और सेवा कर जीएसटी के लेनदेन में

0: धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। अरोड़ा को उनके आवास, उनसे जुड़ी संस्थाओं और हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड के एक कार्यालय सहित उनके चार परिसरों की तलाशी के बाद गिरफ्तार किया गया था। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज हिसार आकाशवाणी केंद्र में सुगम संगीत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में गायक सुमेश जोशी ने प्रस्तुति देकर लोगों को मंत्रमुग्ध किया। आकाशवाणी हिसार के कार्यक्रम प्रमुख पवन कुमार ने बताया कि आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों तक पहुंचाने के लिए 90 वर्ष पूरे होने पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। आगामी 17 तारीख को आकाशवाणी हिसार में एक मैराथन भी आयोजित होगी, जिसमें आकाशवाणी की समृद्ध विरासत को लोगों के सामने लेकर जाएंगे और बताएंगे कि किस प्रकार यह लोगों की आवाज बनी और किस प्रकार देश के लोगों ने इसको अपनाया। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा को मजबूती मिलेगी। मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा में नगर निकाय का आम चुनाव और पंचायत उपचुनाव शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। हिसार में 72%, सांपला में 71% और उकलाना में 69% मतदान दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर महिलाओं के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रादेशिक समाचार, जिनका रिले हम कर रहे थे आकाशवाणी के चंडीगढ़ केंद्र से FM बैंड 102.3 MHz पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रभु वंदना का कार्यक्रम भक्ति संगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम भक्ति संगीत। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त शाम के 6:30 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम घर आंगन।

तवारीख में हमने कुछ ऐसे मुकामात भी देखे हैं, खता लम्हों ने की है, सज़ा सदियों ने भुगती है। घरांगन सुनने वाली सभी बहनों को आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। बहनों, हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी गलतियों की जिनके बाद कुछ ऐसे पछतावे रह जाते हैं, जिनसे समय रहते अगर निपटा जाए तो वो पछतावा नहीं रहे और हम सावधान रहें। बहनों, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसे अपने रास्ते तय करके मंजिल तक जाने के लिए सड़क पर ना चलना पड़ा हो, और सड़क पर चलने के अपने सुरक्षा, अपने नियम, अपने कायदे होते हैं, क्योंकि सड़क पर चलना सिर्फ हमारा अधिकार ही नहीं, हमारा कर्तव्य भी है। अगर हम सड़क का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे साथ चलने वाले राहगीरों के लिए, उनके लिए रास्ता सुविधाजनक बनाना वो हमारा कर्तव्य बन जाता है, और उसके लिए जरूरी है कि हम चौकन्ने रहें, जागरूक रहें। इसी सड़क को सुरक्षित बनाने के लिए और मंजिल तक अपना सफर शांत रास्ते मन से पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का फैसला लिया था सन 2007 में। उसके बाद कुछ दिन ये बंद रहा, लेकिन फिर से 2017 से शुरू हुआ, और अब हर दो साल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा एक आयोजित अभियान चलाया जाता है, जिसमें लोगों को जागरूक किया जाता है कि किस तरह से वो सुरक्षित ड्राइविंग करके अपना और अपने साथियों को सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। ये सप्ताह में मनाया जाता है, अब की बार 9 मई से लेकर 12-13 मई तक मनाया जा रहा है, और इसका उद्देश्य है नागरिकों को सुरक्षित ड्राइविंग की जानकारी देना और खुद जागरूक रहकर दूसरों तक ये जानकारियां फैलाना, ताकि सड़क का प्रयोग करके सभी सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच सके। बहनों, चाहे हम दुपहिया वाहन में हैं, चाहे हम चार पहिया वाहन में हैं, सुरक्षित होना, सजग होना हमारी ड्यूटी है। अगर हम सही नहीं चलाएंगे गाड़ी, हमारे जिस स्टीयरिंग जो हमारे हाथ में है वो अगर हमारे बैलेंस में नहीं है, कंट्रोल में नहीं है, तो वो न केवल हमें बल्कि सड़क पर चलने वाले दूसरे राहगीरों के लिए भी नुकसान का कारण बन सकता है, और इन हादसों को टाला जा सकता है सुरक्षित रहकर, सजग रहकर, शांत रहकर और पहले से अपनी तैयारी करके। सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने का उद्देश्य है आम जनता को गति सीमा के बारे में, सीट बेल्ट के बारे में और यातायात के नियमों के बारे में जानकारी देना और उनके पालन के लिए प्रेरित करना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि थोड़ी दूरी तय करते समय हम इन चीज़ों को अनदेखा कर देते हैं कि हेलमेट पहना हुआ है या नहीं पहना हुआ, हमारा जो वाहन है वो प्रॉपर सही बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है या नहीं है। इन बातों को इग्नोर करते ही जिन हादसों का शिकार हमें होना पड़ता है, उसके बाद के जो पछतावे हैं उनका कोई मोल नहीं होता। सरकार साथ दे रही है, सरकार हमें समझा रही है, लेकिन व्यक्तिगत मामले में भी हमें इस मामले में देखना होगा कि किस तरह से हम अपनी गाड़ी को खुद सुरक्षित रखते हैं और दूसरों के लिए सुरक्षित कर सकते हैं। इसमें इस सप्ताह के दौरान बहुत सारी रैलियां निकाली जाती हैं, स्लोगन प्रतियोगिता की जाती है, विशेष रूप से स्कूल्स और कॉलेजेस में जो युवा वर्ग है, जो अब सड़कों पर व्हीकल्स लेकर उतरने वाला है, उनको जागरूक किया जाता है ताकि दुर्घटना निवारण किया जा सके और हादसों से टला जा सके। क्योंकि ये बड़ी विडंबना की बात है कि बहुत सारी जो पहला जो कारण है मौत होने का, जो असमय मौत होने का, वो है सड़क दुर्घटना, और इस सड़क दुर्घटना में न केवल व्यक्ति बल्कि उसके बाद रहने वाले वो सारे व्यक्ति अंग भंग होने की, जब अंग भंग अगर हो जाता है तो उसके बाद अस्पताल में कितना समय गुजारना पड़ेगा, रिकवरी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, ये सारे ऐसे सवाल रह जाते हैं जिनके जवाब ढूंढते ढूंढते पूरी जिंदगी निकल जाती है।
बहनों, हम अगर बचपन से ही कुछ ऐसी आदतों को अपने भीतर अपना लें और उनको अपने इस तरह से शामिल कर लें अपने आदतों में कि हम बहुत शांत दिमाग से गाड़ी चलाएं, गाड़ी को चलाने से पहले पूरी तरह से उसकी जानकारी लें, बिना जानकारी के और बिना परफेक्शन के हम सड़क पर बिल्कुल ना उतरें, तो बहुत हो संभावना है इस चीज़ की कि हम इन हादसों से टल सकते हैं। और ये जिम्मेवारी बनती है परिवार की कि वो अपने युवा बच्चों को, बढ़ते बच्चों को हाथ में चाबी देने से पहले उनको ये बात उनके दिमाग में बिठा रहे हैं या नहीं, कि वो चाबी लेने लायक हैं भी या नहीं। क्योंकि वाहन जो है वो मोटर व्हीकल अगर हम चला रहे हैं और अगर उसमें कोई गड़बड़ी है या हम बिना जानकारी के सड़क पर उतर रहे हैं, तो उसमें बच्चा हड़बड़ी में जो निर्णय लेगा, हड़बड़ी में जो नुकसान भोगेगा, उसकी भरपाई होना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस बात के लिए बचपन से ही, जैसे ही बच्चा सड़क पर जाने के लिए बाहर हम बच्चों को लेकर जाते हैं, ट्रैफिक के रूल्स, जो सिंपल से रूल्स होते हैं ट्रैफिक के, सिग्नल्स को देखना, पहचानना, जेब्रा क्रॉसिंग करना और किस तरह से दोनों तरफ देखकर रुककर बहुत आराम से सड़क को पार करना, ये चीज़ें अगर हम बच्चों की आदतों में शामिल कर लेते हैं तो बच्चा किसी भी तरह से कि हादसे का शिकार नहीं होगा और बहुत सुरक्षित रूप से वो अपनी यात्रा को पूरी करेगा। बहुत जरूरी है जब हम सड़क पर जाते हैं तो उससे पहले जागरूक हों, हमें पता हो कि हमारे आसपास जिन जगहों पर हम जा रहे हैं वहां की सड़कें किस तरह की हैं और उन पर किस तरह से हम सुरक्षित अपनी यात्रा को पूरा कर सकते हैं, किस तरह से सुरक्षित रूप से गाड़ी चला सकते हैं। और जो असुरक्षित सड़क उपयोग करता है, माने अगर सामने वाला कोई गलती कर रहा है, तो उससे हम कैसे बच सकते हैं, ये बात भी बच्चों को बतानी बहुत जरूरी है। चार पहिया वाहनों में बहुत जरूरी है कि सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाए, दो पहिया वाहनों में हेलमेट के बिना ना चला जाए और जो भी आपका व्हीकल है वो प्रदूषण मुक्त हो। इन चीजों का ध्यान रखकर अगर हम सड़क पर उतर रहे हैं तो हमारा रास्ता भी सुखनुमा होगा और मंजिल भी सुखनुमा होगी। और जहां भी हम जा रहे हैं वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान करना बहुत जरूरी है। शांत दिमाग से अगर हम सफर कर रहे हैं तो हमें पता है किस मोड़ पर कैसे मुड़ना है,

कितनी गति रखनी है वाहन की और किस तरह से ट्रैफिक नियमों का पालन करना है। अनजाने में अगर कोई गलती हो भी जाए तो रुकना है, अगर कोई चोटिल हो जाता है तो उसकी सहायता करनी है, क्योंकि ये मानवीय गुण अगर हमारे भीतर नहीं है तो हम न केवल खुद का बल्कि औरों का भी नुकसान कर सकते हैं। बहनों, बहुत ध्यान से सड़क पर चलना है। घर में तो हम ध्यान से रहते ही हैं, कोई भी काम हम कर रहे हैं तो वहाँ सबसे पहले बड़ों के लिए जो एक छोटा सा जुमला होता है वो ये कि ध्यान से, और यही चीज सड़क पर बाखूबी लागू होती है कि बहुत ध्यान से, क्योंकि ध्यान से देखने से ही हम सुखनुमा अपना सफर कर सकते हैं। तो सुनिए ये प्यारा सा गीत जिसमें यही बात बताई गई है कि ध्यान क्यों जरूरी है।

सर्कस है और सर्कस में बड़े को भी छोटे को भी खड़े को भी छोटे को भी दुबले को भी मोटे को भी नीचे से ऊपर को ऊपर से नीचे को आना जाना पड़ता है।

0: बाहर है हप, हप, हप। आता है कोड़ा भी रहता है भूखा भी फिर भी वो मालिक पे करता नहीं बार है और इंसान ये माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।
1: कहिए श्रीमान आपका क्या विचार है।
0: माल जिसका खाता है प्यार जिससे पाता है गीत जिसके गाता है उसके ही सीने में भौंकता का तार है।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

बहनों, जैसे ही बच्चा उंगली पकड़ के चलना सीखता है, वैसे ही उसे बाहर ले जाने का क्रम शुरू हो जाता है। और अब बच्चे को सिखाने की हमारी ड्यूटी बनती है कि हम बच्चे को सिखाएं कि चाहे वो उंगली पकड़ के चल रहा है या हमारे साथ साथ चल रहा है, कुछ ऐसे नियम जो उसे ज़रूर पालन करने हैं ताकि आगे तक ये चीज़ें उसकी आदत बन जाएं और वो हमेशा सुरक्षित रह सके। सबसे पहले तो बच्चे को ये समझाना बहुत ज़रूरी है कि यातायात खतरनाक होता है। सड़क पर गाड़ियाँ देखने में बहुत तेज़ रफ्तार की चलती हुई मज़ेदार लग सकती हैं, अच्छी लग सकती हैं, लेकिन उनसे एक सुरक्षित दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को जब हम बाहर ले जाएं तो उनको गाड़ियाँ दिखाते हुए उनके बारे में बात करें और उनको ये ज़रूर सिखाएं कि सड़क पर गाड़ियों को ही प्राथमिकता मिलती है और बच्चों का छोटा कद उनको नहीं देख पाते गाड़ी वाले और वहाँ से हादसे होने शुरू होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि एक सुरक्षित दूरी को बनाए रखें। किसी भी बड़े के बिना बच्चा सड़क पर कभी ना जाए और हमेशा हाथ पकड़कर चले, इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि बच्चा कभी भी बिना हाथ पकड़े ना जाए। पार्क में जाने के लिए भी अगर उसे सड़क पार करके जाना है तो सड़क के नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। सड़क पार करने से पहले रुके, देखे, सुने, शांत सड़क पर यह अभ्यास करें ताकि अगली बार जब वो सड़क पार करे तो रुकने में और दोनों ओर देखने में और सामने से जो वाहन आ रहा है उसकी आवाज़ सुनने में जो समय लगा और उसे जो समझ में आई बात कि वाहन कितनी तेज़ी से आ रहा है, उसकी गति धीमी है या तेज़ है, इस बात की जानकारी होना बच्चे को बहुत ज़रूरी है। फिर बच्चा चमकीले रंग के कपड़े पहनकर बाहर जाए ताकि चमकीले और परावर्तक कपड़े कम रोशनी और ख़राब मौसम में भी दूसरों को दिखते हैं। इस बात को और ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए बच्चों के जो पसंदीदा कपड़े हैं उनके बारे में पूछें और उनमें कुछ ऐसी चमक डालें जिससे बच्चे की पहचान सड़क पर अलग से ही हो पाए। बच्चे के लिए जो ड्राइव वे सुरक्षा है उसका अभ्यास बच्चे को करवाया जाए। घर में ही जो वेज होते हैं वहाँ पर बच्चों को बताया जाए कि किस तरह से दाएं बाएं देखकर रुककर और फिर सड़क पार करनी है। 7 साल के बाद जब अगर ज़रूरत पड़े बच्चे को अकेले भेजने की, तब तक वो बच्चा इतना परिपक्व हो जाए कि उसे अच्छे से इस बात का आभास हो कि उसे सड़क पर जाना है तो कौन कौन से नियमों का पालन करना है। बच्चे सभी अलग अलग प्रवृत्ति के होते हैं। कुछ बच्चे छोटी उम्र में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो अकेले सड़क पार कर सकते हैं, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। लेकिन आप इस बात की पूरी उचित जानकारी लें कि आपके बच्चे को इस बात की जानकारी है कि वो अकेला सड़क पार कर सकता है, और अगर ऐसा नहीं है, अभी उसे और अभ्यास की ज़रूरत है, अभी उसे और तैयार होने की ज़रूरत है, तो आप हमेशा अपने साथ बच्चे को सड़क पार करवाएं और बच्चे को ये समझाने में उसे सक्षम बनाएं कि वाहन कितनी तेज़ गति से चल रहा है इसका उसे पता हो, कितनी दूरी पर है, ताकि वो जब सड़क पर निकले तो इस बात का उसे पता हो कि वाहन उससे पहले सड़क को पार करने वाला है या वो खुद वाहन के आने से पहले सड़क पार कर सकता है। बहनों, सड़कों पर जब भी बच्चा जाए, चाहे वो साइकिल ही क्यों ना चला रहा है, तो उसे हाथ के संकेत देना भी सिखाएं और उसकी इस बात में ध्यान रखें कि साइकिल पे भी जाते वक्त अगर वो हेलमेट पहन रहा है तो वो भी सही है, उससे उसका कोई नुकसान नहीं है। जैसे ही धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है तो अब वो पहले से ज़्यादा समझ के साथ सड़क पर उतरता है। समझ तो है लेकिन उसमें एक रोमांच स्वभाव है उसका, उसे ऐसा लगता है कि एक फिल्मी दुनिया की तरह तेज़ गति से गाड़ियाँ चलाना और किसी तरह से अपने सफ़र को और ज़्यादा रोमांचक करने के लिए इस तरह से वो कुछ ऐसे जोखिम उठाने की कोशिश करता है जो सड़क सुरक्षा के नियमों की अवहेलना करते हैं, जैसे कि तेज़ गति से गाड़ी चलाना, बिना ज़रूरत के हॉर्न को बजाना, इधर उधर देखना, फ़ोन का इस्तेमाल करना और अपने साथियों के साथ बात करते करते गाड़ी चलाना। ये सभी चीज़ें वो हैं जिन पर अभी की अभी रोक लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समझदारी भरे फैसले अगर हम ले रहे हैं तभी हमारा सफ़र सुखद हो सकता है।
सतर्क रहें और खतरों से सावधान रहें। सड़क पार करते समय फोन देखना, हेडफोन लगाना, दोस्तों से बात करना, ये सुनने में बहुत अच्छा लग सकता है, मज़ेदार लग सकता है, लेकिन जैसे ही सावधानी हटी दुर्घटना घटी। ये तुरंत हो सकता है, इसलिए इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। अपने बच्चों को ये बातें समझाना बहुत ज़रूरी है। सड़कों के आसपास जोखिम वाली जगह पर बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि किशोरावस्था बड़ी ऊर्जावान होती है और उन्हें लगता है कि वो कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाते हैं। और बहनों, आज की जो सबसे बड़ी समस्या है वो है फोन पर और नशा। नशे में अगर गाड़ी चलाई जा रही है तो यकीन मानो कि न तो वो खुद सुरक्षित है और न ही सड़क पर उसके साथ चलने वाला कोई भी व्हीकल, यहाँ तक कि पैदल चलने वाला व्यक्ति भी उस वाहन के साथ सुरक्षित नहीं है। इसलिए पूरी जानकारी इस बात की रखें कि कोई भी, आप चाहे ड्राइवर कोई भी है, लेकिन इस बात की पुख्ता जानकारी आपको हो कि ड्राइवर होश में है, नशे में नहीं है। कई बार ऐसा होता है बहनों, किशोरावस्था में हम जानकार हैं, जागरूक हैं, अलर्ट हैं, लेकिन हमारी सारी सावधानी धरी की धरी रह जाती है, क्योंकि हम अपने ही जैसे समूह के

दोस्तों के बातों में आ जाते हैं और हमें लगता है कि क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है। और हमारे दोस्त के कहने पर अगर हम इस तरह से असुरक्षित वातावरण में गाड़ी चला रहे हैं तो न केवल उसे बल्कि हमें सबको नुकसान होने की पूरी पूरी संभावना है, जिसको टालना समय रहते बहुत जरूरी है। बहनों, घर तक पहुंचने का ये जो सफर है, ये सुखद होना ही चाहिए, इस बात की जिम्मेवारी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि जो भी बच्चा सड़क पर है वो ना तो अपने मम्मी पापा की निगरानी में है, न ही अपने बड़ों की निगरानी में है, तो उसे खुद समझदारी भरे निर्णय लेने होंगे। वो इस भाव के साथ सड़क पर गाड़ी चलाए कि उसे खुद भी सुरक्षित अपनी मंजिल पर जाना है और अपने साथी जो उसके साथ साथ चल रहे हैं उनके लिए भी कोई खतरा नहीं बनना है। बहनों, उसके साथ कुछ मानवीय गुण आते हैं जहां पर हम सड़कों पर भी ये मानवीय गुण दिखा सकते हैं। जैसे कि विकलांग बच्चे अगर सड़क पर जा रहे हैं तो उनके लिए भी हमें सड़क की सुरक्षा के बारे में उन्हें तो बताना ही है, लेकिन हमें भी इस बात का ध्यान रखना है कि अगर इस तरह का कोई बच्चा सड़क पार कर रहा है तो हम बहुत ध्यान से उसकी हेल्प करें, चाहे वो श्रवण बाधित बच्चे हों, चाहे वो दृष्टि बाधित बच्चे हों। हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई ऐसा बच्चा या बुजुर्ग सड़क पार कर रहे हैं तो हम उनके लिए वो जगह थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, क्योंकि इतना भी जल्दबाजी जो है वो अच्छी नहीं होती है। कई बार ऐसा होता है कि रात के समय जो दूरी है उसका गैस नहीं कर पाते हैं हम, या एकदम से तेज लाइट की वजह से हम पहचान नहीं पाते हैं, कोई सिग्नल नहीं देख पाते हैं। वहां पर सबसे जो अच्छा तरीका है वो है अपने वाहन की गति को बिल्कुल नियंत्रित रखना, धीमा रखना, ताकि न खुद हम किसी गलती का शिकार बने और न ही कोई हमारा साथी इस गलती का शिकार हो। सड़क पार करने के लिए जब भी हम देखते हैं तो चारों दिशाओं में जब हम देखें किसी चौराहे पर अगर हम हैं तो किसी भी हालत में हम ट्रैफिक लाइट को क्रॉस ना करें, चाहे सड़क पर कोई है या नहीं है, क्योंकि अचानक आने वाला, तेज गति से आने वाला कोई भी वाहन अगर उसे सिग्नल मिला हुआ है तो वो जरूर उस सड़क पर जाएगा। रुकना बहुत जरूरी है, अपने चारों तरफ देखना बहुत जरूरी है और सुरक्षित रूप से सड़क को पार करना ये हमारी जिम्मेवारी है, हमारी नैतिक जिम्मेवारी है, जिसे हम अपने साथ साथ दूसरों को भी सिखा सकते हैं। अगर कोई छोटा बच्चा ये देख रहा है कि उनके बड़े जो अभिभावक जिनके हाथ में स्टीयरिंग है वो बहुत तेज गति से गाड़ी चला रहे हैं तो ये चीज उनके भीतर आदत में शामिल हो जाएगी। इसलिए अगर हम बच्चे को सिखाना चाहते हैं कि वो सुरक्षित ड्राइविंग करे तो हमें अपनी ड्राइविंग पर भी कंट्रोल करना होगा, अपनी ड्राइविंग भी सेफ करनी होगी। पूरी तरह से गाड़ी की जानकारी हमें होनी चाहिए ताकि हम किसी भी तरह से किसी हादसे का शिकार न बने। और बहनों, अगर हम अपने बच्चों में ये चीज डालना चाहते हैं तो हमें उन्हें करके दिखाना होगा कि कैसे रास्ते पार करके मंजिल तक जाया जाता है, ठीक इस गीत की तरह।

0: फेरी की, इसकी तो हवाएं निकल गई। अब क्या होगा भैया?
1: सही जगह पे निकली है। गोविंद तू इसमें हवा भरवा दे।
0: अच्छा भैया।

मैंने उम्मीद है कि इन नियमों का पालन करके और कुछ कदम सड़क सुरक्षा के लिए उठा के हम लोगों को जागरूक बना सकते हैं और चोटों को, हादसों को कम करके अपनी जान और दूसरों की जान बचाने में मदद कर सकते हैं। अब समय हमें और इजाज़त नहीं देता कि हम आपके साथ बने रहें, तो ज़रूरी है कि आप नोट कीजिए हमारा पता ताकि आप अपनी प्रतिक्रियाएँ हमें दे सकें। हमारा जो कार्यक्रम है वो है घर आंगन, द्वारा केंद्र निदेशक, आकाशवाणी हिसार, पिन 125001। और अब दीजिए आपकी रेडियो सखी मधु शर्मा को इजाजत। नमस्कार।

अभी आपने सुना कार्यक्रम घर आंगन FM 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर, यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम महरी पसंद।

0: मारी पसंद कार्यक्रम सुन लिए सारे बन भैया ने। आजाद भाई की राम राम भाई, आज विशेष कार्यक्रम आपके लिए लेके आए हैं आकाशवाणी का 90 साल का सफर और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह पे विशेष कार्यक्रम। 8 मई 2026 को महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक के राधा कृष्ण सभागार में आकाशवाणी के 90 साल का सफर और आकाशवाणी रोहतक के 50वें वर्षगांठ पे एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम के संपादित अंश। प्रस्तुति आजाद सिंह, प्रस्तुतकर्ता श्री पवन कुमार। आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह पर श्री संजय बाली, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक।
1: धन्यवाद आजाद भाई। और जैसे कि आप सबको विदित है कि आकाशवाणी गत 50 वर्षों से सेवा में कार्यरत है और 90 वर्ष आकाशवाणी को हो गए हैं स्थापित हुए, और इस 50 वर्ष की अवधि में आकाशवाणी ने शिक्षा, मनोरंजन और सूचना के क्षेत्र में बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। जन जन तक पहुंचने का हमारा प्रयास रहा है और विभिन्न कार्यक्रम जो श्रोताओं की मांग को देखते हुए, उनकी जरूरत को देखते हुए हम प्रसारित कर रहे हैं। हमने अपनी तकनीक में बहुत सुधार किया है। पहले जिस प्रकार से सिर्फ चिट्ठियों के आधार पर कम्युनिकेशन हो पाता था, यानी कि श्रोताओं से हम जुड़े होते थे, उसके बाद हमने फ़ोन इन कार्यक्रम शुरू किया है। अब डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं और फ़ोन के

0: माध्यम से अपनी समस्या का समाधान भी वो पूछ सकते हैं जो हमारे खेती बाड़ी के कार्यक्रमों में हम प्रसारित करते हैं। इसके अलावा हम लोकल से ग्लोबल हो गए हैं क्योंकि हमने अपनी ऐप है वो डेवलप कर ली है और ऐप के माध्यम से हमारे देश के जितने भी आकाशवाणी के केंद्र हैं वो सभी जुड़े हुए हैं। देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रदेश का बैठ के उन कार्यक्रमों को सुन सकता है और अपने घर में बैठे होने का एक एहसास है वो ले सकता है। इसके अलावा हम सोशल मीडिया जिस तरह के यूट्यूब और फेसबुक ट्विटर इस तरह के जो सोशल मीडिया है उनके साथ भी जुड़े हुए हैं। तो हमारा प्रयास है कि जिस प्रकार से तकनीक का विकास हो रहा है हम उसी प्रकार से अपने कार्यक्रमों में भी और अपनी गुणवत्ता में भी सुधार करें।
1: संदेश के रूप में क्या कहना चाहेंगे?
0: संदेश के रूप में मैं कहना चाहूँगा कि हमारे श्रोता हमारे कार्यक्रमों के साथ जुड़े और कोई काम कोई वार्ता कोई चीज़ उनको अच्छी लगती है तो उसे ग्रहण करें और अपने समाज में अपने परिवार में अपने आसपास है उसका प्रचार प्रसार करें उसका फैलाएं और हमारी कहीं कोई त्रुटि रहती है तो उसके लिए भी आप हमें आगाह करें बताएं ताकि हम सुधार कर सकें और जन जन तक एक सुविधा है सूचना है शिक्षा है मनोरंजन है वो हम तक पहुंचा सकें हम अपने उद्देश्य में सफल रहें और आप सबका सहयोग यूं ही बना रहे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको हार्दिक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद श्री संजय बाली जी केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक।
0: धन्यवाद।

0: आकाशवाणी की 90 वर्ष पूर्ण होने और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर हरियाणा के एकमात्र आकाशवाणी के टॉप ग्रेड आर्टिस्ट आकाशवाणी रोहतक कुरुक्षेत्र और हिसार के केंद्र निदेशक रहे पंडित कैलाश वर्मा जी आज आकाशवाणी के साथ हैं। कैलाश वर्मा जी, आकाशवाणी का आपका अनुभव कैसा रहा और अपने जज्बात और ख्याल आपके मुखारविंद से जानना चाहेंगे।
1: नमस्कार। आकाशवाणी में मैंने 1983 के यूपीएससी के द्वारा जो पोस्टें निकली थी प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव्स की, उसमें मैंने अप्लाई किया था और यूपीएससी द्वारा मेरा चयन हो गया प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव हरियाणवी म्यूजिक के लिए। तो मैंने 4 जुलाई 1984 को आकाशवाणी के रोहतक केंद्र पे प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव के पद पे अपना कार्यभार संभाला था। मैंने वहां से आकाशवाणी की जो यात्रा है वो प्रारंभ हुई है। तो इस दौरान मैंने जब प्रारंभ में ट्रेनिंग वगैरह होगी थी हमारी, उसके बाद मुझे जो है इंडिपेंडेंट तरीके से जो है पूरा चार्ज दे दिया गया था मुझे म्यूजिक सेक्शन। और उस दौरान हमने पहली बार जो प्रयास किया था कि रोहतक से पहले संगीत प्रतियोगिताएं जो आकाशवाणी के द्वारा की जाती थी उसमें हमारे रोहतक से कोई एंट्री नहीं भेजी जाती थी, तो सबसे पहले जो है हमने ये कोशिश की कि हरियाणा के जो हमारे लोकगीत के जो कलाकार होते थे, बस उस वक्त बी ग्रेड या बी हाई ग्रेड के ही कलाकार हमारे पास थे, तो हमने उन्हीं कलाकारों को लेके और तीजों के रंग झूलों के संग हमने एक हरियाणवी संगीत रूपक प्रस्तुत किया। मैंने प्रस्तुति दी थी उसमें, यहीं के जो हरियाणा के हमारे जो लोकल कलाकार थे उनको तैयारियां करवा के हमने, और उसमें हमने एक ऐसा एक्सपीरियंस किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि हमने पहली मर्तबा बीन बजवाई हमने हरियाणवी संगीत में फीचर में। एक सूरज बान नाम के बहुत अच्छे जो है वो बीन वादक थे उनके साथ, और बाकी जो हरियाणवी सारंगी नगाड़ा ढोलक और ये सब लेके हमने एक फीचर तैयार किया, तीजों के रंग झूलों के संग। उस फीचर को ऑल इंडिया लेवल पे हमारे कंपटीशन होता था, आकाशवाणी संगीत एनुअल अवार्ड वार्षिक पुरस्कार योजना थी, तो उसमें पहली बार रोहतक से एंट्री भेजी और हमें उसमें मेरिट

0: सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद कुछ हमारा हौसला बढ़ा, फिर हमने आकाशवाणी में रह के हर त्योहारों पे और जयंतियों पे हमने संगीत रूपक बनाने शुरू किए, और वे संगीत रूपक इतने पॉपुलर हुए कि हर त्योहार पे हमने जो है हरियाणवी रूपक बनाते, तुलंडी हमारे गांव की, और जैसे कई त्योहारों पे होते थे, कृष्ण भगवान के जन्माष्टमी भी होते थे, दिवाली के होते थे, इस तरह के। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट करके देखा कि हम क्यों ना सांग शुरू कर दें, क्योंकि उस वक्त सांग जो है वो लुप्त होती कला थी उन दिनों में, ये बात 1990 की है। तो महानिदेशालय से हमने अपना जो है परमिशन लिया, क्योंकि एक सांग लगभग 1.5 घंटे से कम जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो सकता था, और वो सांग इतने पॉपुलर हुए, इतने लोकप्रिय हुए कि हरियाणा से पूरे बाहर से भी जो है चिट्ठियां आती थी, 1,000 चिट्ठियां आ जाती थी हर महीने, हम एक सांग प्रोड्यूस करते थे, और वो सांग लगभग हमने 50 किस्से यहाँ हमने रोहतक में रह के जो है मैंने वो प्रस्तुत किए, बहुत पॉपुलरिटी मिली, लोगों ने बहुत सुना। फिर कुछ मन में आया कि क्यों ना हम गांव-गांव जाके हम धरती के गीत शुरू करें। तो हम एक ओबी बेस जो है रिकॉर्डिंग करते थे, और किसी एक गांव में जाते, वहां महिलाओं को एकत्रित करते पंचायत में, और वहां से हमने धरती के गीत प्रोड्यूस करने शुरू किए, कि जो हमारे पारंपरिक जो लोकगीत होते थे ट्रेडिशनल्स, हर त्योहार के और जन्म के, जन्म से लेकर मृत्यु तक के, सीजनल, डिवोशनल, और जो अपने ये संस्कार गीत वगैरह, ये हमने शुरू किए, वो भी बड़े पॉपुलर हुए, उसका नाम रखा हमने धरती के गीत। इसी प्रकार फिर संगीत सभाएं शुरू की, दूसरे प्रांतों से भी हमने कलाकार बुलाने शुरू किए, बड़ा अच्छा जो है वो उसका जो हमारा जो एक तजुर्बा था वो अच्छा रहा। इनवाइटेड ऑडियंस के सामने हम वे संगीत जो है सभाएं करते थे, रोहतक के अलावा बाहर जाके भी हमने गांव में जाके भी संगीत सभाएं की, और गांव में जाके जो है वो गांव के किसी स्कूल में या जो है वहाँ जो वहाँ की पंचायत होती थी वो पब्लिक को इकट्ठा करती थी, हजारों लोग बैठते थे वहाँ जाके, और उनकी पसंद के जो है हमने कार्यक्रम प्रसारित किए। तो इस तरह से जो है कुल मिला के ये मैंने लगभग हमें 3 फीचर्स में मेरी प्रोडक्शन को प्राइज मिला, एक तीजों के रंग झूलों के संग, दूसरा हमने प्रस्तुत किया बहु कड़े से आवेगी, कि जिन दिनों में हरियाणा में ये था कि भाई लिंगानुपात जो था वो काफी घट गया था, लड़कियों को जो है गर्भ में मरवा दिया करते थे, तो हमने एक जो है संगीत रूपक प्रस्तुत किया कि बहु कड़े से आवेगी, बड़ा काफी पॉपुलर हुआ, लोगों ने बहुत सुना, उसको भी नेशनल अवार्ड मिला। फिर उसके बाद जैसे गाँव में जो है थी वो बहुत भटकती रहती थी, आवारा गाँव में जो है छोड़ देते थे लोग, तो हमने गौ माता की पुकार के नाम से एक फीचर मैंने प्रस्तुत किया, वो भी हमारा जो है नेशनल लेवल पे उसको पुरस्कार मिला है। तो इस प्रकार हमें जो है 3 पुरस्कार जो है आकाशवाणी के इतिहास में हमें मिले हैं।
1: टॉप ग्रेड आर्टिस्ट का आपको पुरस्कार मिला?
0: टॉप ग्रेड आर्टिस्ट के लिए जो है हमारे आकाशवाणी के 4 ग्रेड होते हैं, सबसे जो छोटा ग्रेड है वो बी ग्रेड है, उसके बाद बी हाई है, फिर उसके बाद ए है, और जो कलाकार ए ग्रेड में 10 साल पहले, 10 साल का वो होता था कि 10 साल जो उसमें वो अपना अपने कार्यक्रम प्रस्तुत कर ले, तो उसके बाद वो टॉप ग्रेड के लिए एलिजिबल होता है अप्लाई करने के लिए। बाकी जो काम करता है, हमारा काम जो है वो उसकी रिकॉर्डिंग भेजना है, और एक बहुत कमेटी बनती है पूरे इंडिया की 6 टॉप ग्रेड कलाकारों की, वो डिसाइड करते हैं कि फला कलाकार यदि योग्य है तो उसको टॉप ग्रेड की उपाधि दे दी जाती है। तो उसमें हमें जो है पहले मेरा फोक म्यूजिक में हुआ, हरियाणवी फोक म्यूजिक में, और उसके थोड़े दिन बाद फिर मैंने लाइट म्यूजिक में भेजा अपना भजन और गीत का, तो दोनों में मुझे टॉप ग्रेड से नवाजा गया है महानिदेशालय द्वारा, और उसमें पंडित की उपाधि हमें दी जाती है। जो जो मुसलमान जो मोमडन कलाकार होते हैं उनको उस्ताद की डिग्री मिलती है, जो हिंदू कलाकार होते हैं उनको पंडित की उपाधि मिलती है। आकाशवाणी जो है वो एक जनमानस तक जो है अपना संदेश पहुंचाने के लिए, जिसमें मनोरंजन, शिक्षा, साहित्य और हर कुछ है इसमें, उसके लिए आकाशवाणी एक सशक्त माध्यम रहा है। आज भी कुछ ऐसे केंद्र हैं हरियाणा में जो

0: गांव गांव तक जो है उन्होंने आकाशवाणी को जी उनकी पहुंच पहुंचाई है। एक वक्त था जब केवल जो अपना सोशल मीडिया का जो माध्यम था वो केवल आकाशवाणी था। मैं आज भी मानता हूं कि दूर दराज के जो क्षेत्र हैं उनमें जब जहां अखबार भी चार चार दिन बाद पहुंचता है वहां रेडियो के का एक ऐसा सशक्त माध्यम है जो वहां देश विदेश की जो खबरें उन तक पहुंचा देता है। मैं आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर और रोहतक आकाशवाणी के 50 वर्ष पूरे होने पर मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो आकाशवाणी का जो माध्यम है वो जन जन तक पहुंचे और अपने कार्यक्रमों को जो हमारा उद्देश्य है उसमें वो सफल बने रहे।
1: आकाशवाणी के सफर के साथ अपने अनुभव साझे कर रहे हैं जाने माने प्रसारक पूर्व केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक श्री रामफल चहल।
2: 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी। ये भी अपने 50 साल इस वर्ष पूरे कर रहा है और ये 90 वर्ष भारतीय प्रसारण के और 50 वर्ष आकाशवाणी रोहतक के, इन दोनों के लिए भविष्य में भी इसी तरह के कार्यक्रम ये प्रसारित करते रहें, समाज का उत्थान और विकास में सहयोग देते रहें, इसके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूर्ण होने और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जाने माने पत्रकार विलक्षण प्रतिभा के धनी बहुआयामी व्यक्तित्व हरियाणवी साहित्यकार के रूप में अपना नाम श्री धर्मेंद्र कवारी।
3: आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल और आकाशवाणी रोहतक के 50 साल एक ऐसी जर्नी है, एक ऐसी यात्रा है जिसको अगर शब्दों में बांधना चाहे तो हम इस पे पूरी कथाएं और किताबें लिख सकते हैं, लेकिन संक्षिप्त शब्दों में अगर मैं कहूं तो आकाशवाणी रोहतक ने और आकाशवाणी प्रसारण ने हरियाणा के जनमानस की उन चीजों को लाने की कोशिश की है, उन चीजों को आगे लाने की कोशिश की है कि अगर आकाशवाणी नहीं होती तो शायद हम उनके बारे में जान भी नहीं पाते, चाहे वो बाजी बख्शी हो, चाहे लक्ष्मी चंद की कविताएं हो, चाहे हरियाणा के आम ग्राम्य जीवन की विशेषताएं हो, हर कोई हर पहलू आकाशवाणी जन जन तक लेकर आया है। और हमें तो वो दौर भी याद है जब हम इसमें चिट्ठियां लिखा करते थे और हमारी फरमाइश से पूरी हुआ करती थी, चाहे वो रामपुर भाई हो, चाहे संपूर्ण भाई हो, चाहे आजाद धुन भाई हो, सबके सब इतने घुले मिले थे ऐसा लगता था जैसे ये हमारे परिवार के सदस्य हों। आज भले ही सोशल मीडिया का दौर है और हम आकाशवाणी से उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन खेत के डोड़े पे आज भी जब भी हम कदम रखते हैं तो आकाशवाणी हमें याद आता है, हमें याद आते हैं वो पल और वो सुनहरे गाने और वो 3 बजे के बाद आकाशवाणी की यात्रा जिसने हमारा बचपन को बहुत ही समृद्ध बना दिया, चाहे चुटकुलों की बात हो, चाहे किस्से कहानियों की और चाहे रागिणियों की, हरियाणा के ग्राम्य जीवन पर आकाशवाणी का बहुत बड़ा उपकार है। और हम इसकी आज तक की यात्रा में जितने भी साथी इससे जुड़े रहे हैं और हम भी इसकी यात्रा के साथी रहे हैं, आज हम बड़े गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि हम 90 साल की इसने जर्नी पूरी की है और आकाशवाणी रोहतक ने 50 साल की पूरी की है। हम चाहेंगे कि आज आगामी 200-500 सालों तक भी हमारा आकाशवाणी यूं ही आकाश में सितारे के समान चमकता रहे और हमारे दिल को ऐसे ही जीतता रहे।
1: धन्यवाद धर्मेंद्र कुमारी जी।
2: आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल पूरे होने और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस पर हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर जनरल श्री महावीर सिंह धवन हमारे साथ हैं। महावीर सिंह जी, रेडियो और दूरदर्शन का सफर किसा चला गया?
4: देखो, रेडियो तो हमने उन दिनों की बात है जब स्टार्ट हुआ था डैश एंड डॉट से और उसकी मन की पसंद तक जब आया है, बहुत ही इंचांटिंग सफर है। इवन आकाशवाणी रोहतक का भी मैं देखता हूँ, हमने बड़े जब ये बिगनिंग का दौर था उस समय देखा था और इसकी चर्चाएं गांव में ऐसे होती थी जैसे शाम का खाना, लोग उसको भूल सकते थे लेकिन रेडियो का सुनना वो नहीं होता था। हम लोगों ने एक बड़ा एक्सपेरिमेंट करा था शुरू शुरू में, अब तो ये नॉर्मल हो गई ओबी वैंस और ये सब। रोहतक आकाशवाणी से पहली बार जब हमने शुरू किया था तो लोग इसी बात का कौतूहल बना करते थे, चलता फिरता रेडियो कैसे दिखता है, कमेंट्री उसके लिए ले गए थे आकाशवाणी से। हमने, मैं जमशेदपुर पोस्टिंग हुई आजाद भाई, उस समय जमशेदपुर बहुत दूर है यहाँ से और ये क्योंकि फ्रीक्वेंसी 1143 किलो हर्ट्ज है जो शॉर्ट रात के टाइम शॉर्ट वेव का ट्रांसमिशन हो जाता है, जमशेदपुर में भी इनकी आकाशवाणी की कवरेज पहुंचती थी लोक संगीत। और सबसे बड़ा कार्यक्रम जो हुआ करता था वो था थारी पसंद और हरियाणा के लोग वहां पर बहुत थे जमशेदपुर में, तो रेडियो ने हरियाणा की भी बड़ी प्रोपेगेशन की, ले में भी बहुत सुना जाता था। तो मैं देखता हूँ आकाशवाणी में जो हमने किया और उसका जो पहचान बनाई उसमें बहुत सारी एक कहेंगे पीढ़ी बीत।

0: अच्छा, आकाशवाणी रोहतक के अलावा एक सबसे बड़ी चीज थी रेडियो श्रोताओं का। मैंने दो संस्मरण में अक्सर क्योट करता हूँ। एक तो लड़की थी मालती, 15 साल की लड़की थी, और उसका वीक में 5,000 चिट्ठियां आया करती थी। और झुमरी तलैया को कौन बोल सकता है। हमारे यहाँ भी अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत सारे कलाकार थे, पानीपत से जग्गी दुआ और इस तरह से करके रेडियो के अंदर सिनोनिमस हो गया था कि हर आदमी अपनी पहचान बनाए। आकाशवाणी ने हरित क्रांति में बहुत बड़ा रोल अदा किया है। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ बहुत सारी ये वार्ताएं हुई जो किसानों के लिए फायदे भी। एक लास्ट में एक चीज और बताता हूँ, जनरल आकाशवाणी की ताकत। आकाशवाणी भावनाओं की भाषा तो है ही, साथ में ज्ञान का एक गुरु है। आकाशवाणी के त्रिचि केंद्र ने एक यूनिवर्सिटी की AD 27 राइस की कैटेगरी डेवलप की थी, और उसमें एक सबसे बड़ी चीज थी कि उसकी 21 क्विंटल पर एकड़ पैदा होती थी, और ये जो नई किस्म बनी उसकी 42 क्विंटल पर एकड़ हो गई। तो लोगों ने, क्योंकि इतनी प्रचार किया आकाशवाणी ने, इसको रेडियो राइस कहते थे। तो कितना बड़ा आनंद की बात है कि एक यूनिवर्सिटी की प्रोडक्ट को रेडियो से पहचान मिले। और अब तो हमारे हिसार, कुरुक्षेत्र और रोहतक, चंडीगढ़, इन जगह पर रेडियो ने बहुत सारे बहुआयामी विकास किया है। मेरी शुभकामनाएं आकाशवाणी और आकाशवाणी के स्टाफ।
1: धन्यवाद जी। श्री महावीर सिंह धवन, आकाशवाणी के 90 वर्ष के सफर और आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष पूरे होने पे आप हैं डॉक्टर केशवराम शर्मा। यादें जुड़ी है आकाशवाणी से, किस्से की बात हर रागनी के साथ आपकी पहचान रही है। एक विद्वान व्यक्तित्व डॉक्टर केशवराम शर्मा जी।
2: राम राम, आप सभी को सादर प्रणाम
1: जी।
2: आजाद भाई जी, सन 1981 में मैं आकाशवाणी को तक आया था साक्षात्कार के लिए। जिस टाइम इंटरव्यू होना था, बोर्ड बैठा था, तो मैंने ये कहा था कि अगर आप इजाजत दें तो मुझे कहना चाहता हूँ। बोला ठीक है, कहिए क्या कहना चाहते हैं। मैंने ये कहा था कि जितनी टेप आकाशवाणी के रोहतक केंद्र में है और लोक संगीत जितनी टेप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र में है, आप किसी टेप को बजाइए, मैं मुखड़ा सुनते ही, यानी टेक सुनते ही ये बता दूंगा कि ये रागिनी किस किस्से की और किस मौके की है। और ज़्यादातर कलाकारों के मैं नाम भी बताऊँगा, गायक कौन है। उसके बाद मुझे आदेश हुआ कि आप रुके, 5 बजे बाद जाना है। 5 बजे बाद मुझे बताएगा कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, चिट्ठी आती रहेगी, आए ना आए, देर सवेर आए, लेकिन आपका सिलेक्शन हो चुका है और अगले महीने की 1 तारीख को आकर अपनी ड्यूटी का पता कर लेना। तो इस तरह से मैं आकाशवाणी रोहतक में आया था और पहला प्रोग्राम मैंने दिया था 17 अप्रैल 1981 को, गुड फ्राइडे का दिन था उस दिन, तो मेरा पहला प्रोग्राम था। रागनी किस किस्से की है, किस मौके की, ना मेरे से पहले किसी ने बताने की कोशिश की, ना अब बाद में कोई बताने वाला है, सिर्फ मैं बताया करता। और रागनी ये किस्से की जो कि काफ़ी लोकप्रिय हो गया था प्रोग्राम, वो प्रोग्राम मैं दिया करता। और सन 1988 से लेकर और 2019 तक वो प्रोग्राम चला था। शुरुआत मैंने नौदमी के किस्से से की थी और नौदमी के किस्से से ही समापन किया था। उसका कारण ये है कि पंत लक्ष्मी चंद, हरियाणा के बड़े नामी गिरामी लोकप्रिय हुए हैं, वो ये कहा करते कि राजा नल के किस्से को जो हित चित से कहेंगे सुनेंगे, उनकी बुद्धि कलयुग के प्रभाव से मलिन नहीं होगी। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने शुरुआत भी राजा नल से की थी और समापन भी नर्मदा के किस्से के साथ ही किया था। अपनी शिक्षा के बारे में बताऊं, जिस टाइम मैंने बीए भी नहीं की थी, उस टाइम मैंने ये सोच लिया था कि अगर परमपिता परमात्मा की कृपा रही तो मैं PhD जरूर करूँगा, लेकिन PhD पंत लक्ष्मी चंद के सामने पर करूँगा। मेरा वहाँ पर रजिस्ट्रेशन मेरे सृष्टि में हो गया होता, मैंने फॉर्म भी भर दिया था, बात सब पूरी हो गई थी, लेकिन मुझे टॉपिक नहीं मिला मेरी मर्जी का, इसलिए मैं वहाँ से छोड़ कर आ गया और यहाँ रोहतक आया। उस टाइम मैं MA था, तो यहाँ कहने लगे कि MA से नहीं, MPhil और करनी पड़ेगी। तो उसके बाद मैंने MPhil की और फिर पंत लक्ष्मी चंद के सामने पर मैंने PhD की। हरियाणा का मैं पहला 100 छात्र हूँ जिसने पंडित लक्ष्मी चंद के सामने के ऊपर शोध कार्य किया।
1: आकाशवाणी के सफर पर क्या संदेश देना चाहूंगे?
2: संदेश ये देना चाहूंगा, जो गायक कलाकार भाई हैं, शुद्ध गायें, परंपरागत तर्जों से गायें। ये जो अपना लोक संगीत है, इसको लोक से जुड़ा रहने दें, इसको बंबई के साथ जोड़ने की कोशिश ना करें, शुद्ध गायें, क्योंकि अशुद्ध गाने से जो रचना उसका भाव बहुत जाता है। इसलिए मेरा ये कहना है, श्रोताबंधों से भी कहना है कि सुझाव दें, ठीक सुझाव दें, ताकि प्रोग्राम अच्छे

0: अच्छा होश के।
1: धन्यवाद डॉक्टर केशवराम शर्मा जी।
0: शुक्रिया, धन्यवाद।
2: आकाशवाणी के सफर की जानकारी दे रहे हैं जाने माने हरियाणवी उद्घोषक रहे श्री संपूर्ण सिंह बागड़ी।
3: बहुत श्रोताओं का स्नेह, प्यार, अपनापन, लाड प्यार बहुत मिला। और यहाँ के नए नए कार्यक्रम, पहले तो क्या था, जब शुरुआत थी तब आकाशवाणी दिल्ली

0: बहुत उद्वेलित कर देती है, बहुत प्रफुल्लित कर देती है। तो ये यात्रा ऐसे ही जारी रहे और आप जैसे जितने भी हमारे कार्यकर्ता, चाहे वो पर्दे के आगे हैं, पर्दे के पीछे हैं, चाहे वो हमारे साउंड है या हमारे एडमिनिस्ट्रेशन है, सब मिला करके आकाशवाणी को सब उसके यश को, उसकी कीर्ति को शिखर तक ले जाने में जुटे हुए हैं। सबका ये साझा प्रयास है, सामूहिक प्रयास है और इस प्रयास में हम सब सफल हों, प्रभु से यही कामना है। और इस यात्रा को हम सब इसी तरह से चलाते रहें और एक दूसरे का साथ हाथ पकड़कर हम चलते रहें। इस अवसर पर यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारे आकाशवाणी, चाहे वो हमारा मातृ संगठन है या हमारे दूरदर्शन की बात हम करते हैं, जितने भी हमारे, और सोशल मीडिया का भी ज़माना है तो आज आकाशवाणी दूरदर्शन फेसबुक पर भी है, यूट्यूब पर भी है और दूसरे जो माध्यम हैं उनको पर भी है, लेकिन इसका अपना ही एक महत्व है। और आकाशवाणी की बात मैं करूं तो भाषा की बात हम जब करते हैं, शुद्धता की बात जब हम करते हैं, विश्वास की जब हम बात करते हैं, समाचारों पर जो विश्वसनीयता की बात हम करते हैं, तो वो आकाशवाणी दूरदर्शन से ज़्यादा कहीं नहीं मिलता। ना कोई लाग लपेट, ना कुछ, जो बात है वही कहनी होती है। और इसी विश्वास के कारण आज भी लोग हम सब के साथ हैं, हमारा साथ बना हुआ, हमारे श्रोता, हमारे दर्शक हमारी पूंजी है, जिनके साथ हम सब इस यात्रा को लेकर के चल रहे हैं। बहुत बहुत पुनः शुभकामनाएं, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और इस अवसर पर हम अपने सभी श्रोताओं को पुनः धन्यवाद कहते हुए बस ये आग्रह करते हैं कि वो इस यात्रा के अंदर हम सबका साथ लेकर के चले, सब इकट्ठे होकर के चले।
1: आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह पर आकाशवाणी के साथ जुड़े निजी अनुभवों के साथ हैं जाने माने कलाकार हरियाणवी लोक संगीत का दूसरा नाम श्री गुलाब सिंह खांडेवाल।
2: नमस्कार, राम राम। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि जब 8 मई 1976 को आकाशवाणी रोहतक का उद्घाटन समारोह हुआ था, उसमें मेरे गुरु जी सत्यनारायण वशिष्ठ जी ने आ लगाई, मैं उनके साथ था। 8 मई 1976 से लेकर के उसके बाद आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ, मैंने उसमें भी, उद्घाटन समारोह में भी और शिलान्यास पर भी, दोनों वक्त मैंने रागनी गाई थी। आकाशवाणी एसआर का, दूरदर्शन का भी और आकाशवाणी का भी, उनके भी जब उद्घाटन और शिलान्यास हुए थे तब भी मैं वहाँ कार्यक्रम में मौजूद था। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि इस आकाशवाणी ने हमारे समाज को बहुत कुछ दिया है और हमारे कलाकारों को बहुत कुछ दिया है। मैं हरियाणवी कलाकार होने के नाते आकाशवाणी ने मुझे इंडिया के, अपने पूरे भारत के कम से कम भी 17-18 आकाशवाणी पे मुझे कंसर्ट के लिए भेजा गया। राजस्थान में चाहे सूरतगढ़ है, चाहे बीकानेर है, चाहे मध्य प्रदेश में रीवा है, चाहे छतरपुर है, चाहे मथुरा है, मैं ले तक गया हूँ प्रोग्राम देने के लिए। तो इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या होगा। और मैं बड़ा आभारी हूँ हमारे श्रोताओं का कि जिन्होंने हमारे कलाकारों पे भी पूरा प्यार जता के रखा है और पूरा आश्वस्त किया कि भाई आप काम कर रहे हैं लोक संगीत के लिए, तो आपका पूरा समर्थन हम ऐसे ही करते रहेंगे। आभारी हूँ आपका, एक बार फिर धन्यवाद।
1: आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष पूरे होने और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर जाने माने शिक्षाविद एवं सशक्त नारी का प्रतिरूप भूमिका शर्मा।
3: नमस्कार, आकाशवाणी प्रसारण के 90 वर्ष और आकाशवाणी रोहतक के 50 वर्ष पूरे होने पर मैं सबसे पहले तो पूरे भारत के नागरिकों को शुभकामनाएं देती हूँ। बचपन से लेकर अब तक आकाशवाणी रोहतक और आकाशवाणी दिल्ली के माध्यम से जो भी ज्ञान मिला, जो भी जागरूकता मिली और उसके साथ साथ जो एक वाक्पटुता किसी भी नई पीढ़ी में संचार करने का माध्यम है, वो आकाशवाणी है। बहुजन सुखाए बहुजन हिताए, इस ध्येय वाक्य के साथ आकाशवाणी हर दिन सुबह से लेकर रात्रि के अंतिम पल तक हर खबर, हर विषय के संबंधी जानकारी जन जन तक पहुंचाने का काम करता। कहते हैं किसी भी काम को करने के लिए धुन की आवश्यकता होती है और वो धुन यदि काम के साथ किसी के भी काम में सुर लेकर आए हैं, जुनून लेकर आया है, तो वो आकाशवाणी लेकर आया। चाहे वो हम गली में खेलते हुए बच्चे की बात करें, खेत में काम करते हुए मजदूरों की बात करें, दर्जी की दुकान पर काम करते हुए, सिलाई करते हुए किसी इंसान की बात करें, किसी भी ऐसे वर्ग की बात करें जो काम करते करते किसी सुर के साथ जुड़ना चाहता है, वो आकाशवाणी से जुड़ा हुआ है। और आकाशवाणी का प्रत्येक श्रोता केवल एक श्रोता नहीं है, बल्कि आकाशवाणी के साथ वो प्रेम रखता है। और वही 90 वर्ष और वही 50 वर्ष आज हम

0: मना रहे हैं। मैं यदि व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो आकाशवाणी रोहतक और आकाशवाणी दिल्ली के साथ बचपन से लेकर आज तक जो भी यादें जुड़ी हैं उन्हीं यादों का मिश्रण आज आप मुझे देख पा रहे हैं। और जैसा कि भाई ने बताया कि शिक्षाविद और सशक्त नारी, तो ये सशक्त शब्द जो जीतने का हौसला आया, कमाने का हौसला आया, वो सर्वप्रथम आकाशवाणी ने दिया। पिछले 11 वर्षों से आकाशवाणी पर बोलते हुए और लगभग पूरे जीवन से ही 3 दशकों से आकाशवाणी को सुनते हुए ये कह सकती हूँ कि आकाशवाणी से जुड़ना परम सौभाग्य की बात रही और परम शक्ति का धन्यवाद। और बहुत सारे ऐसे कलाकार, नामचीन ऐसे नागरिक जिन्होंने इसको सींचा है, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और आज भी आने वाली पीढ़ियों के लिए आकाशवाणी इसी तरह तत्पर रहेगा। इसी लक्ष्य के साथ, इसी संबोधन के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद, अनेकों अनेक शुभकामनाएं।
1: धन्यवाद भूमिका शर्मा जी। मैं आजाद दुवन चुटकुला सम्राट हरियाणा, रेडियो तो बड़ी याद जुड़ी है। मैं 8 मई 1995 को एक कंसर्ट को देखने आकाशवाणी रोहतक पहुंचा। बड़ी मुश्किल से एंट्री हुई, वहां पे जाके इतना अच्छा लग गया कि उस दिन ते आज तक मेरा रेडियो ते गहरा नाता रहा। आकाशवाणी एफआर जब 1999 में स्थापित किया गया तो मैं 4 साल पहले आकाशवाणी रोहतक में एक कंपेयर के रूप में काम किया, और 1999 ते आज तक आकाशवाणी एफआर के विभिन्न कार्यक्रमों के यानी कंपेयर के रूप में मैं काम कर रहा हूँ। और ये कार्यक्रम जो है, यादें जुड़ी हैं। जब 2020 में 21 में कोरोना आया तो देश के सभी केंद्रों पर कोरोना की रियायतें जारी की गई, लेकिन आकाशवाणी ने अपने दृढ़ निश्चय के साथ कोरोना जितना पिक पे था हमारे परेशान, उतने ही सुदृढ़ मजबूत और सुंदर कार्यक्रम हम टेलीफोन और व्हाट्सएप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, हमने कोरोना काल में विभिन्न लोगों से, हमने चरखी दादरी के एक सहायता केंद्र से, वहाँ पर बिहार के मजदूरों से रिकॉर्डिंग फोन कॉल पे करके, और हमने जब प्रसारित की तो लोगों ने उस कार्यक्रम को बहुत सराहा। विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन और कार्यक्रम आकाशवाणी की देन है। इस तरह हरियाणवी आशय, गीत संगीत, शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और मनोरंजन के कार्यक्रम आकाशवाणी से जुड़े हैं। आप भी इन्हीं कार्यक्रमों का आनंद लेते रहिए। एक बार फिर से आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल और आकाशवाणी रोहतक के 50वीं वर्षगांठ के मौके पे आप सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद। आकाशवाणी की अपनी पहुंच अपने श्रोताओं तक, जिसका ज्ञान लाभ उठा के बहुत बड़े बड़े कलाकार बने हैं। ऐसे ही नामे ग्रामे विलक्षण प्रतिभा के धनी जाने माने चित्रकार, जिनको कहूँ चित्रकारिता का दूसरा नाम, राजकिशन नैन, जिनकी यादें जुड़ी हैं आकाशवाणी से। राजकिशन नैन जी, 90 साल आकाशवाणी का सफर और 50वीं वर्षगांठ आकाशवाणी रोहतक की, क्या कहना चाहेंगे?
2: आकाशवाणी से मेरी यादें 56 साल से जुड़ी हुई हैं। सन 1970 में मैंने रेडियो सुनना शुरू किया था। रेडियो ने मेरे जीवन को गढ़ा है, बनाया है, मेरे जीवन का निर्माण किया है। मेरी झोली माँ जो कुछ भी है वो रेडियो की वजह से है। गांव के बारे में, देश के बारे में जो सजगता रेडियो ने दी है मुझे और तमाम लोगों को, वो बहुत बड़ा काम किया है रेडियो ने। आज रेडियो का 90 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। आकाशवाणी दिल्ली, आकाशवाणी रोहतक, हिसार और जितने भी रेडियो से जुड़े बाकी के चैनल हैं, उन सबको मैं सुनता रहा हूँ और वो बहुत बड़ा काम कर रहा है रेडियो। ये बना रहे, इसकी स्मृतियाँ बनी रहे, श्रोता बने रहे, और ये रेडियो के जो आयोजन करता है उन सबको मेरा हार्दिक अभिवादन, हार्दिक आभार, हार्दिक धन्यवाद।
1: बात राजकिशन नैन जी, आपने अपनी छायाकारी और चित्रकारिता कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में पहला एक जीवंत उदाहरण, इतने बड़े कलाकार का जो द्वितीय तल है वो धरोहर के रूप में विकसित किया गया है, और आपने सारी अपनी कलाकृतियां निःशुल्क दी हैं।
2: दी है ओहो, गांव की, देहात की, कृषि की, किसानों की, आड़ी पाड़ियों की, देश के आम लोगों की तस्वीरें हैं। बड़ा कार्य यूनिवर्सिटी ने किया कि उन्होंने उनको मेरे नाम से वहाँ गैलरी स्थापित करी है चित्रों की। वहाँ निःशुल्क देने बनती हैं ये चीज़ें, उनका

0: के लिए मैं ये काम नहीं करता। असल में संस्कृति को अगर इन चित्रों से बढ़ावा मिलता है, चित्रों के जरिए, तो बहुत बड़ा काम है। मैंने वो इसीलिए दे दिए वापस चित्र।
1: एक फक्कड़ परवर्ती गांव दूर दराज इलाके में जाके छायाचित्र और फोटोग्राफी करना आपका शौक रहा है?
0: शौक है, ये परमात्मा ने मुझे बख्शा है। हल्का हत्था थामने वाले आदमी के हाथ में प्रभु ने, प्रकृति ने, कलाओं की देवताओं ने, देवियों ने कैमरा थमा दिया और 50 साल से ऊपर हो गए मुझे काम करते हुए, लेकिन मेरा जी भरा नहीं है। आज भी मैं 2-4 घंटे कैमरे के लिए सुरक्षित रखता हूँ। सुबह निकलता हूँ 2 घंटे और शाम को भी निकलता हूँ, और जब तक मेरे शरीर में लहू की एक भी बूंद बची है, इस काम को मैं करता रहूँगा। इस काम में मेरी सारी जान कैमरे में और कलम में बसी है।
1: आकाशवाणी के 90 साल पूरे होने पर आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस के मौके पे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे?
0: आकाशवाणी रोहतक से मेरा नाता 1976 से है, जब आकाशवाणी रोहतक की स्थापना हुई थी, तब से लेकर आज तक मैं रेगुलर नियमित तौर पे इससे जुड़ा हुआ हूँ। बहुत प्रोग्राम आकाशवाणी में से दिए हैं जिन्होंने लोगों का बहुत बड़ा उपकार किया है, और मेरे जीवन में भी हरियाणवी का जो मैंने पाठ पढ़ा है, पहला पाठ आकाशवाणी रोहतक ने मुझे सिखाया है वो पाठ।
1: धन्यवाद श्री राजकिशन नैन, जाने माने रंग कर्मी और छायाकार।
0: आप सबका भी धन्यवाद, आभार।
1: आप हैं कैप्टन इंदर सिंह, पूर्व सांसद लोकसभा रोहतक।
2: पहले तो हम ऑल इंडिया रेडियो को सुनते थे, लोग बड़े चाव से सुनते थे, उसमें अपने जितने भी लोकल लैंग्वेजेस होती थी उनका प्रसारण होता था, जो हमारे रीति रिवाज थे उनके हिसाब से भी उनके ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता था, और जो आम जानकारी रेडियो स्टेशन से लोगों को पहुंचाई जाती थी। 90 साल आज ऑल इंडिया रेडियो को चलते हुए हो गए और 50 साल रोहतक रेडियो स्टेशन को चलते हुए हो गए। इन्होंने समाज के अंदर जो काम इन्होंने किया है वो अत्यंत सराहनीय रहा है, और मेरी इसको बहुत बहुत शुभकामनाएं।
1: आकाशवाणी के 90 साल के सफर और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर छात्र कल्याण निदेशक महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक रहे श्री आनंद शर्मा जी हमारे साथ हैं, रेडियो से उनकी यादें जुड़ी हैं।
3: आकाशवाणी और आकाशवाणी रोहतक की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज ये अस्मरणीय अविस्मरणीय दिन है, और जहां तक आकाशवाणी का ताल्लुक है, ये तो जनमानस से जुड़ी हुई वो धुरी है जो सागर से लेके और अतल गहराइयों तक, समुद्र से लेके और आकाशीय ऊंचाई तक आकाशवाणी का हमेशा वर्चस्व रहा है। आदमियों को जोड़ने में, जनमानस को जोड़ने में आकाशवाणी बहुत महत्वपूर्ण योगदान देती रही है। जहाँ तक समस्याओं का सवाल है, जहाँ तक लोगों की अभिरुचियों का सवाल है, वो बहुत बड़ा योगदान आकाशवाणी का हमेशा रहा है। मैं अपनी तरफ से एक विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ आकाशवाणी केंद्र से जुड़े हुए लोगों से कि इसके विस्तार और इसके व्यवहार में थोड़ा सा अगर हम समय अनुकूल परिवर्तन करें तो वो दिन दूर नहीं जब आकाशवाणी एक बार फिर से लोकप्रियता के शिखर पर होगा। आपका बहुत बहुत आभार।
1: धन्यवाद आनंद शर्मा जी। आकाशवाणी के 90 साल के सफर और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस के मौके पर विलक्षण प्रतिभा की धनी बहुआ व्यक्तित्व, हरियाणा पुलिस का विशेष चेहरा और आकाशवाणी की पहली कंपेयर के रूप में काम करने वाली महान व्यक्तित्व डॉक्टर सुमन मंजरी, आकाशवाणी से आपकी यादें जुड़ी हैं।
4: देखिए 8 मई 1976 का दिन था और पहला जो कार्यक्रम एयर में गया था वो मेरा और सुमित्रा का था, ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम। दो ही कार्यक्रम यहाँ से जाते थे, एक युवा संसार और एक बहनों का, ग्रामीण बहनों का कार्यक्रम, और सब रिले होते थे उस समय दिल्ली से। और 8 मई का वो ऐसा खूबसूरत दिन था जिसने मुझे सुमन मंजरी से एक प्रसिद्ध सुमन मंजरी बनाने का काम किया। मैं और सुमित्रा थे, मुझे धन्यवाद।

0: बहन के नाम से पुकारा जाता था और सुमित्रा को सत्तू बहन के नाम से पुकारा जाता था। और धीरे धीरे ये यात्रा आज 50 वर्ष पूरे कर गई है। उस समय का यदि मैं जब ध्यान करती हूँ तो जब ये शुरू हुआ था तो कॉलेजेस में ऑडिशन टेस्ट के लिए लेटर लिखे गए थे कि जो आपके यहाँ अच्छे ओरेटर हैं उनको ऑडिशन टेस्ट के लिए भेजिए। तो आईसी कॉलेज से मैं और सुमित्रा गए थे और हमारा ऑडिशन टेस्ट हुआ था। और वही ऐसा एक मुझे सै और शय में अंतर नहीं पता था, सांप क्या होता है, शलगम क्या होती है, षटकोण क्या होता है। तो भाषा जो मेरी सुधारी है वो आकाशवाणी की देन है कि जो आज मैं अपनी भाषा पे जो मेरा कमांड और कंट्रोल है वो मुझे आकाशवाणी ने दिया है। और मेरे को जो आत्मविश्वास दिया है, उस समय चौधरी बंसीलाल जी का पहला इंटरव्यू हमने लिया था तो जो उससे बात करते वक्त कतरा रहे थे और तभी मुझे ध्यान आया था क्योंकि डीसी और एसपी भी आए थे उनके साथ। तो मुझे लग रहा था कि उस दिन मैंने सोचा था कि मैं भी एसपी और डीसी बन सकती हूँ। तो वहाँ मेरे जो पैक्स बोलते थे गुप्ता जी थे, उन्होंने मेरी भाषा सुधारी और पूरी प्रैक्टिस कराते थे बोलने से पहले। और एयर में यदि कुछ वर्ड हमारे से गलत भी चला जाता था तो मेमो तो देते थे लेकिन हमें सुधरने का अवसर देते थे। तो आज जो रोहतक का रेडियो स्टेशन है, मेरे जैसी पता नहीं कितनी बच्चियों को, आज तो मैं एक वयोवृद्ध नारी हूँ, कितनी बच्चियों को रेडियो स्टेशन ने निकाला है। समय के साथ मुझे लगा जब पुलिस में आ गई कि आज कौन रेडियो को सुनता होगा, लेकिन जैसे ही मैं गाँव में टूर में जाती तो लोग जो मुझे बताते, जो आपका खेती का पक्ष है कि किसान को किसानी कैसे करनी है, तो जो उसका प्रचार और विस्तार हुआ उसके लिए सारा हरियाणा रोहतक रेडियो स्टेशन का सदा आभारी रहेगा। धन्यवाद।
1: शुभकामनाओं के रूप में क्या कहना चाहेंगे?
0: फले फूले। और जो सबसे बड़ी है, यदि आज मैं अध्यात्म की बात करती हूँ तो आकाशवाणी, आकाश क्या है, शब्द क्या है और शब्द कैसे वाणी बनता है, तो आकाशवाणी को मेरी सदा शुभकामनाएं हैं। फूले फले, अपने जो उसका स्वरूप है उसको जीवित रखे। ये ना सोचे कि आज जो है सोशल मीडिया के और इतनी विधाएं आ गई हैं, जो रेडियो है आज भी गांव के लोगों की पहली पसंद है। अब भी मैं गांव में जाती हूँ, खेती करते हुए किसानों को रेडियो सुनते हुए देखती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, फले फूले। हमारा रोहतक रेडियो स्टेशन जब 1995 में बाढ़ आई थी खत्म हो गया था, लेकिन पुनः दोबारा स्टूडियो बनाकर उसको फिर पुनर्नवा किया गया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाई और मेरी शुभकामनाएं रोहतक रेडियो स्टेशन के साथ 50 वर्ष पूरे होने पर और आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर सभी स्टाफ को और वर्तमान समय में जो अधिकारी हैं, जो कलाकार हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, उनके लिए मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। रोहतक रेडियो स्टेशन सदैव फले फूले।
1: धन्यवाद डॉक्टर सुमन मंजरी। आकाशवाणी एक ऐसा मंच है जो लोगों को शिक्षा, संस्कृति, स्वास्थ्य और संस्कार की जानकारी दे है। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय संदेश को आगे बढ़ाते हुए आकाशवाणी अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे साथ एक श्रोता है जिला हिसार के गाँव कुंवारिसी भाई संजय डांडा।
2: आजाद भाई नमस्कार। और ये मेरे लिए एक बड़ी गर्व और खुशी का पल है कि आज जिस टाइम पर मैं बचपन से रेडियो सुनता रहा था तो आज उसी मंच पे आकाशवाणी के माध्यम से अपने विचार आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बड़ी खुशी हो रही है इस बात को लेकर के। और आजाद भाई, रेडियो एक आकाशवाणी एक रेडियो ही नहीं बल्कि मैं कहूँगा कि देश की संस्कृति, गाँव की मिट्टी और एक तरीके से संस्कृति का ठिकाना है, जो एक बड़ा माध्यम रहा है ज्ञान का, खेती बाड़ी से लेकर के और उन पारंपरिक उन परंपराओं को जोड़ करके सहेज करके रखने का एक माध्यम रहा है और समय का बड़ा पाबंद रहा है। जिस तरीके से समय के साथ में जो कार्यक्रम प्रस्तुत करने का जो तरीका है वो बड़ा लाजवाब रहा है। और भाई आकाशवाणी रोहतक से हम शुरुआत की थी, हमने सुनते सुनते और आकाशवाणी हिसार जिस तरीके से काम कर रहा है बड़े काबिले तारीफ है।
1: कितना लाभ लोगों ने मिला संजय भाई?
2: आजाद भाई, जिस तरीके से मैंने बात करी कि भाई आज हम देखें भाई किसान वाणी कार्यक्रम है, रोहतक का खेत कल्याण कार्यक्रम आया करता उस वक्त, और हमारी संस्कृति हमारे गीत की बात करें या भाई हम बात करें कि जो सरकार की जो सरकारी जो नीतियां हैं उनके माध्यम से जिस तरीके से आप टेम टू टेम पर बात बताओ तो उसका बड़ा

0: वो बातें बड़ी लाभान्वित करने वाली हैं। और हमारी संस्कृति ने एक तरीके से सहेज के रखने का, जिस तरीके से पुराने मंच, पुराने जो गीत संगीत, उनने भी एक तरीके से मंच मिले हैं और वो अपना वानगी पेश करें।
1: संदेश के रूप में क्या कहना चाहोगे?
0: संदेश के रूप में यही कहेंगे, देखो भी आज रेडियो का स्वरूप बदल गया, सोशल मीडिया का जमाना, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर भी हम रेडियो सुन सके हैं, जिस तरीके से चाहे बात यूट्यूब की हो, चाहे भाई बात AIR न्यूज एंड ओन ऐप की हो।
1: धन्यवाद भाई संजय गांडा, गाँव कुंवारी। आकाशवाणी के 90 साल के सफर और आकाशवाणी रोहतक की 50वीं वर्षगांठ के मौके पर जानी मानी फिल्म अदाकारा, विलक्षण प्रतिभा की धनी, बहुआयामी व्यक्तित्व सुमित्रा उदा रेडियो के साथ अपने अनुभव साझा कर रही हैं।
2: 8 मई 1976 से रेडियो के साथ जुड़ी थी एंड मैं हरियाणा की पहली हरियाणवी अनाउंसर रेडियो में नियुक्त हुई थी। उस वक्त मेरी ग्रेजुएशन भी नहीं हुई थी, मैं फाइनल ईयर में थी, रिजल्ट आने वाला था। मैंने लाल साहब थे उस वक्त डायरेक्टर, तो वैसे ही मजाक में मैंने कहा लाल साहब मैं फेल हो गई था, बोले ना को ना फेल हो, और रिटर्न हुआ था। उसके बाद इंटरव्यू हुआ एंड मैं पहली हरियाणवी अनाउंसर नियुक्त हो गई। तो इतना खूबसूरत सफ़र रहा, यानी मेरे जो करियर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण जो हिस्सा था वो 8 मई 1976 से शुरू हुआ रेडियो के साथ। क्योंकि रेडियो के साथ ये हुआ कि मैं एक प्रोग्राम दिया करती, पहले तो मैं ये रही अपना कैजुअल अनाउंसर ही, मेरा एक प्रोग्राम आता था घोगड़ी, तो मैं एक ताई का रोल, हालांकि मैं 20 से कुछ नीचे ही थी, तो मैं ताई घोगड़ी बन के आया करती। और इतनी पॉपुलैरिटी हो गई थी उस प्रोग्राम की कि अगर मैं मान लो किसी बाहर जा रही हूँ चल के गलियों में से, तो मेरी आवाज़ सुनकर किसी से बात कर रही हूँ तो औरतें बाहर निकले, ए घोगड़ी ए घोगड़ी। तो तब मेरे को पता लगा कि उस समय कितना इम्पोर्टेंट था रेडियो। और उसके बाद बहुत सारे मैं राजस्थान में एक वनस्थली विद्यापीठ है वहाँ से पढ़ी हुई हूँ, तो जब मैं हरियाणा आई मैं पहली स्टेज पे गई, मैं एक्टिंग पहली महिला और आदमियों में भी समझो आप, उस वक्त तो बड़े बिरले लोग थे, कोई स्टेज पे मोनो एक्टिंग के लिए नहीं जाता था, स्किट वगैरह होते थे, तो मैं पहली लड़की थी जो स्टेज पे चढ़ गई, तो हरियाणा में हंगामा हो गया था उस वक्त। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज में गई तो मैं पहली हरियाणा की पैराट्रूपर बनी फर्स्ट टाइम, उसके बाद तो काफ़ी साल तक और कोई आया नहीं, और जैसे पहली हरियाणवी अनाउंसर बनी और पहली फिल्म प्रोड्यूसर भी बनी। तो इस तरह से जो सफ़र हुआ बहुत, क्योंकि हरियाणा भी नया नया था, वो भी अपनी जगह बना रहा था और नंबर 1 हरियाणा होने की राह पे था और हम भी अपनी लाइफ बना रहे थे। मुझे इसमें बड़ा डर महसूस, जब मैं बाहर जाती थी और लोग पहचानते थे और बाहर निकल आते थे, ए घोगड़ी जा घोगड़ी जा घोगड़ी जा, तो उसमें ना बड़ा अच्छा मतलब महसूस होता था। सुबह होती थी जिले की चिट्ठी 6:30 बजे, फिर वो जल्दी उठ के वो पढ़ा करते, तो और सारा स्टाफ भी बहुत ही कोऑपरेटिव था, लाल साहब ने कमाल कर दिया था, पहले जो डायरेक्टर बन के आए थे हरियाणा में। मेरे रिश्ते तो हमेशा रहे, बातचीत हमेशा रही, मेरे को बिल्कुल छोटी बहन की तरह मानते थे वो।
1: रेडियो के लिए संदेश,
2: रेडियो के लिए ये संदेश है कि इतना इम्पोर्टेंट और इतना बढ़िया मीडियम है भाई, टीवी के लिए तो आपको फिर टीवी देखना पड़ेगा कुछ, ये तो आप कहीं भी सुन लो है ना, तो ये एक बहुत अच्छा मीडियम है, बहुत अच्छा संदेश पहुंचाने का, जो भी आप कुछ ना करना आप तो मतलब बैठ जाओ, बात आप जो करोगे कितने तक पहुंचा लो, आजकल तो आप अपना रेडियो भी शुरू कर सकते हो, मतलब इतनी इतने आसान है यहाँ से संबंध बनाना लोगों के साथ, इसलिए रेडियो को मैं बहुत इम्पोर्टेंट मानती हूँ। आजकल तो RJ वारजे आ गए, हम तो कंपेयर हुआ करते है ना, तो RJ देखो आप कितने बड़े बड़े RJ रेडियो के कारण ही तो है, और क्या स्वरूप बदल जाता है, लेकिन इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन जो रेडियो से हो सकता है वो शायद किसी और माध्यम से नहीं हो सकता। किसी और माध्यम के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट चाहिए, रेडियो के लिए तो इतना सा ही, बस वो आपकी घड़ी में भी आ जाए रेडियो, क्या है में भी ले लो, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। रेडियो को आप सुने और बहुत अच्छी कम्युनिकेशन का जरिया है।
1: श्री मोहर सिंह अंदाणा,
3: एकदम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी खुशी होती है, जितने भी ऐसा प्रोग्राम सुन के ना मन गदगद हो जाता है।
1: मोहर सिंह जी आपने आकाशवाणी गांव में भी देखा है?
3: हाँ बिल्कुल देखा है जी, ये देखा था जी मैंने एक बारी गांव जखोली में, जिला कैथल में, बहुत बढ़िया प्रोग्राम करा था।
1: क्या करता उसमें?
3: उसमें गीत संगीत था जी, हरियाणवी कल्चर के जितने भी मतलब

0: मतलब रागनी गीत वगैरह जो फिल्मी गीते डांस वगैरह हरियाणवी कल्चर के जितने भी प्रोग्राम थे वो सारे पेश करे गए थे।
1: जैसे प्रोग्राम आकाशवाणी दे रहा है ना, वो समाचार जो आकाशवाणी के समाचार हैं वो बिल्कुल शुद्ध और सही होते हैं। बाकी जैसे टीवी वगैरह तो कम सुनते हैं हम, रेडियो से ही समाचार वगैरह जो है वो सही आते हैं। 90 साल पूरे होने पर और आकाशवाणी रोहतक की 50वीं वर्षगांठ पर बहुत बहुत बधाई।
2: ये थे श्री मोहर सिंह अंदाणा। आकाशवाणी प्रसारण के 90 साल पूरे होने और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह के मौके पर हमारे साथ एक नियमित श्रोता है दया किशन शर्मा बोंद जिला बेवाणिया चरखीदारी। तो रेडियो का सफर, रेडियो का सुनना, रेडियो का ज्ञान कितना लाभकारी रहा शर्मा जी?
3: सारे प्रोग्राम सुनता हूँ, केवल एक प्रोग्राम नहीं सुनता, शास्त्रीय संगीत नहीं सुनता, बाकी सब प्रोग्राम सुनता हूँ।
2: अच्छा।
3: और आकाशवाणी में अर्चना बहन जी से, एकदत्त मिश्रा जी से, संपूर्ण भाई सबसे मिला हूँ मैं। अच्छा। कई बार आ चुका हूँ।
2: अच्छा।
3: आकाशवाणी में
2: रेडियो का कितना ज्ञान लाभ आपको मिला?
3: रेडियो बहुत काफी मिला मेरे को।
2: आकाशवाणी की ऐसी जानी मानी हस्ती जिन्होंने विभिन्न केंद्रों पर केंद्र निदेशक प्रसारक के रूप में काम किया, आप विलक्षण प्रतिभा के धनी बहुआयामी व्यक्तित्व श्री धर्मपाल मलिक।
4: सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी रोहतक के सभी कलाकारों को, वार्ताकारों को और इसके श्रोताओं को विशेषकर और साथ साथ आकाशवाणी परिवार के सभी सदस्यों को बधाई देना चाहूँगा कि हम आकाशवाणी रोहतक की गोल्डन जुबली मना रहे हैं, यानी 50 वर्ष पूरा होकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे देश में पूर्ण होने पर रेडियो की अहम भूमिका रही है भारतीय और हरियाणवी संस्कृति को संजोड़ने में, इसको आगे बढ़ाने में, संरक्षण देने में और यहाँ की संस्कृति के विभिन्न आयाम, चाहे लोकगीत हों, चाहे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों, शिक्षाविदों, कृषि वैज्ञानिकों और जो हमारे देश की सुरक्षा करने वाले बहुत सारे ऐसे योद्धा हुए हैं जिनके बारे में हम समय समय पर जानकारी देते रहे हैं और इससे युवा वर्ग को विशेषकर प्रेरणा मिलती है। हम चाहे महिलाएं हों, युवा बच्चे, जो हमारे ग्रामीण श्रोता हैं, सबके लिए विशेष रूप से कार्यक्रम करते हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार में, शैक्षणिक प्रसारण के माध्यम से हमने प्रौढ़ शिक्षा, जो ये विश्वविद्यालयीन शिक्षा, स्कूली शिक्षा के बारे में विशेष रूप से अनेकों कार्यक्रम किए हैं और हमारे युवाओं के लिए विशेषकर युवाणी प्रोग्राम है जो उनके भविष्य को बढ़ाने में, उसको संवारने में बहुत अहम भूमिका अदा कर रही है। तो मेरा यही संदेश है, सभी कर्मचारी, सभी श्रोता, सभी वार्ताकार, सभी कलाकार, वो दिल छोटा ना करें, जितना भी सहयोग और समर्थन हमारे प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाने के लिए देश के वो दे, तत्पर रहें। समय आएगा, बदलाव का दौर है और बड़े दिल और दिमाग से, खुले दिमाग से काम करें और आकाशवाणी की प्रतिष्ठा को बढ़ाएं।
2: धन्यवाद श्री धर्मपाल मलिक जी, केंद्र निदेशक आकाशवाणी रोहतक।
4: धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: 50वीं वर्षगांठ पे हमारे एक ऐसे सबसे पुराने श्रोता हैं रोहतक से, महेंद्र शाह जी। महेंद्र शाह जी, रेडियो के साथ अनुभव कैसे रहे?
5: बहुत बढ़िया रहा जी। सबसे पहले तो मैं आकाशवाणी गोल्डन जुबली प्रोडक्ट्स में आकाशवाणी परिवार को, सभी को, मैं सभी श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आज ये मुझे मौका मिला देखने का। 50वीं वर्षगांठ था, 8 मई 1976 से इस आकाशवाणी से जुड़ा हुआ हूँ जी और सबसे पुराना श्रोता मैं हूँ। मैंने कई दफा इन्हें रिकॉर्ड भी दिए, जब 95 में बाढ़ आई थी सब खराब हो गया था, इतनी इज्जत देते थे मुझे, जो भी SD या कोई भी ड्यूटी ऑफिसर जितने भी थे बहुत इज्जत देते थे।
2: धन्यवाद श्री महेंद्र शाह जी, जाने माने निमित्त श्रोता। आकाशवाणी के साथ यादें जुड़ी हैं वरिष्ठ प्रसारक और केंद्र निदेशक रहे श्री राकेश कपिला जी।
6: नमस्कार सभी श्रोताओं को और आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। 90 साल हो गए आकाशवाणी को और जो प्रसारण शुरू हुआ, और रोहतक का प्रसारण को 50 साल पूरे हुए और हम अपने सभी श्रोताओं को कार्यक्रम के जुड़े

0: इंजीनियरिंग के जुड़े लोग सभी को मैं ये कहना चाहूँगा कि एक मोती था जो अकेला चला था, माला में पिरोता गया और एक कारवां बन गया। ये कहानी है हमारी आकाशवाणी रोहतक की। और यूपीएससी के 1988 बैच में मेरा चयन हुआ खेलों में, खेल प्रसारक के रूप में।
1: समय की प्रतिबद्धता का नाम आकाशवाणी।
0: बिल्कुल, समय की है और आज भी वही चीज़ है। हमें याद है कि हम लोग अपने घड़ियों में लाया करते थे, सुबह 8 बजे की न्यूज़ आती थी।
1: धन्यवाद राकेश कपिला जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।
1: श्री सौरभ वर्मा, आकस्मिक उद्घोषक, आकाशवाणी रोहतक।
2: आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सौरभ वर्मा आप सभी को आकाशवाणी के 90 वर्ष पूर्ण होने की खुशी में और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में दिल से बधाई देता हूं और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आकाशवाणी के साथ एज एन आर्टिस्ट जुड़ा हूं, एक लोक कलाकार। मैं भी हाई ग्रेड आर्टिस्ट हूं और आकस्मिक उद्घोषक भी रहा हूं आकाशवाणी के साथ। और मैंने आकाशवाणी के FM रोहतक के FM चैनल पे भी जो है अपनी सेवाएं दी आकस्मिक उद्घोषक के तौर पर। और आप सभी को बस यही कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी के साथ जुड़े रहें, रेडियो को सुनते रहें और आकाशवाणी के इस 50वें साल को आनंदपूर्वक मनाएं। धन्यवाद।
1: ये सुना भाइयों, आज आपने आकाशवाणी के 90 साल के सफर और आकाशवाणी रोहतक के 50वें स्थापना दिवस समारोह पे आयोजित कार्यक्रम के संपादित अंश। इसी के साथ आज का हमारी पसंद कार्यक्रम समाप्त करने की अपने भाई आजाद दुवन ने दे अनुमति। सारे बन भैया ने राम राम।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: बदलो बदलो आदत बदलो,
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो आदत बदलो, अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दर्शकों खबरदार, अगर ब्रेकिंग न्यूज बनने से बचना है तो पैसे भेजते समय नाम और धनराशि हमेशा दोबारा जांच लें।
4: RBI कहता है किसी को भी पेमेंट करते समय थोड़ा ध्यान से।

0: ने खार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: यात्रीगण कृपया ध्यान दें, यात्रा के दौरान अगर टीसी टिकट मांगे तो दिखा दीजिए, लेकिन कोई भी ओटीपी पिन या पासवर्ड मांगे तो उसे तुरंत भगा दीजिए।
2: आरबीआई कहता है ओटीपी या पिन के लिए कॉल या मैसेज आए तो थोड़ा ध्यान से।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम म्हारी पसंद, एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात के 8 बज चुके हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने।

कार्यक्रम व्हाट्सएप के बहाने फिल्मी तराने सुन रहे सभी साथियों को मेरा यानी आपके रेडियो दोस्त अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। सभी दोस्तों को मातृ दिवस यानी कि मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज का ये कार्यक्रम समर्पित है दुनिया की हर उस माँ को जो अपने बच्चों की खुशी के लिए हर तकलीफ सह जाती है और वह सदैव अपने बच्चों को खुश देखना चाहती है, उनके चेहरे पर मुस्कान देखना चाहती है। साथियों, माँ केवल एक शब्द ही नहीं बल्कि प्रेम, त्याग, ममता और आशीर्वाद का एक सागर है। माँ की ममता चांदनी जैसी हर पल सुख बरसाती है। अपने बच्चों की खातिर माँ हर दुख खुद सह जाती है। माँ के बिना सूना जीवन, माँ से ही संसार है। मातृ दिवस पर शीश झुकाएं, माँ ही सबसे प्यार है। साथियों, साथ साथ आपके नाम शामिल करेंगे और साथ साथ बात करेंगे मातृ दिवस पर। तो व्हाट्सएप भेजने के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9792523272। तो शुरुआत करते हैं हम इस मैसेज के साथ। चंडीगढ़ से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा, मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मेंडी शर्मा, सौरभ शर्मा, साइना शर्मा और निवान शर्मा। और ये हमारे श्रोता हैं मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता। इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट जिला बिजनौर से मोहम्मद वकार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदारानी और हीना कोसर। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का मैसेज आया है। और नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस बेगम, इशरत अकरम, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता, पूनम और कोआत बिहार से शेखर, जफर हसन और नरगिस जफर का मैसेज हमें मिला है। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से मैसेज कर रहे हैं। सुनते हैं सभी साथियों की।

दोस्तों, मदर्स डे का भी इतिहास काफ़ी पुराना है। इसकी शुरुआत अमेरिका में हुई थी और इस दिन की शुरुआत एना जार्विस नाम की एक अमेरिकी महिला ने की थी। वह अपनी माँ एन रिव्स जार्विस से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। एन रिव्स जार्विस एक सामाजिक कार्यकर्ता थी। 1905 में एना की माँ का निधन हो गया। उसको बहुत दुख हुआ तथा बाद में एना ने माताओं के सम्मान में एक विशेष दिन समर्पित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू किया। खुद भूखी रहकर खाना खिलाया, हर दर्द को अपने दिल में छुपाया। मेरी खुशियों के खातिर माँ, तूने अपना हर सपना भुलाया। तो साथियों, अब करते हैं आपके नाम शामिल। ग्राम पंचायत बठेना पाटन, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, यश प्रायण और शिवम ने हमें मैसेज किया है। रघुनाथपुरा, जिला श्रीगंगानगर, राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हंसी और खुशी गोस्वामी। एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा, तन्वी बोट और अंकित कांगड़ा। और ये हमारे श्रोता हैं रवि कुमार राहुल, रणजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत, गुरशब्द सिंह राहुल, कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। गांव चौधरीवास हरियाणा से हमारे श्रोता ने मैसेज किया है। मांगेराम सतोड़, रितु सिंह, हिमानी, शुभम और यश कुमार, ये हमारे श्रोता हैं। गांव हिपरसोगा, तहसील ओसा, जिला लातूर से उस्मान शेख फौजी, सायरा बानो शेख, बाबा शेख, सिमर शेख और करिश्मा शेख का मैसेज हमारे पास आया है। और गांव पनिहारचक हिसार से विनोद टेलर, साहिल दहिया, कृष्णा, कहना, लड्डू, ममता और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। प्रमोद कुमार साहू, बीमा, वैभवी, विनोद, विभूति, अंशु, बबली और प्रियांशु साहू, ये हमें बोरसरा नैला छत्तीसगढ़ से संदेश भेज रहे हैं। और इसी के साथ ही हमारे श्रोता रहेंगे जवाहर नगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। और ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू, देव कुमार साहू, नवीन कुमार और युवराज का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। गांव नलोई तहसील शिवानी मंडी जिला हिसार से सज्जन कुमार जांगड़ा, राजबाला, नवीन, मंदीप, प्रियंका, सपना, नीतू व वेदांश जांगड़ा का मैसेज हमें मिला है। और सदर बाजार कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल कुमार, विनीत कुमार और सोनम वर्मा हमें मैसेज कर रहे हैं।

साथियों, जब एना जार्विस ने एक विशेष दिन माताओं के प्रति समर्पित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान चलाया, तो 10 मई 1908 को वेस्ट वर्जीनिया के ग्राफ्टन में एना जार्विस ने अपनी माँ की याद में पहली बार चर्च में मदर्स डे मनाया। एना का माताओं के प्रति ये सम्मान देखकर और उसके प्रयासों के फलस्वरूप तत्कालीन राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन ने एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और जिसमें मई के दूसरे रविवार को मातृदिवस मनाने की मान्यता दी गई। और इस प्रकार मदर्स डे संसार के अन्य देशों में भी मनाया जाने लगा, यहाँ तक कि हमारे देश भारत में भी। माँ, तेरी ममता का कोई मोल नहीं, तेरे जैसा इस जग में कोई और नहीं। तेरी दुआओं से रोशन है ये जहाँ, तेरे बिना मेरा कोई ठोर नहीं। जब भी गिरा मैं राहों में कहीं, तूने आकर संभाला मुझे। तेरी मुस्कान मेरी ताकत बनी और तूने हर दुख से निकाला मुझे। भोपालगढ़ राजस्थान से हमारे श्रोता मैसेज कर रहे हैं और मदर्स डे की हमें शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो आपको भी मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। ये हमारे श्रोता हैं धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा और पूजा परिहार। इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है हमारे श्रोता ने, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल प्रिया दिशानी और निमित आहूजा, इन्होंने भी हमें मदर्स डे की शुभकामनाएं भेजी है। और छत्तीसगढ़ डोगर गांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें हमारे श्रोता ने मैसेज किया है और मातृदिवस की हमें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। गांव जाखुद राजस्थान से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका शर्मा ने मैसेज किया है हमें। और इसी के साथ ही हमें गांव जेवरा हिसार से संदेश प्राप्त हुआ है वीरेंद्र भ्याण, शमशेर भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, मनोज भ्याण और इनके सभी परिवार के सदस्यगण। जगमाल सिंह डागला, हैप्पी डागला, जे एस नायक, शोभा नायक और इनके समस्त परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं, रेलवे कॉलोनी हनुमानगढ़ जंक्शन राजस्थान से। मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार, नरगिस खातून, जिला मुरादाबाद, ग्राम दुल्लापुर, उत्तर प्रदेश से हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज प्राप्त हुआ है, पवन कटारिया, शालू कटारिया, समीर कटारिया, श्री करणपुर, जिला श्री गंगानगर, राजस्थान से। और भिलाई छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव गरिमा शर्मा, हर्ष आहूजा का मैसेज हमें मिला है और ये हमारे श्रोता रहेंगे, ओम रेडियो श्रोता संघ, कोली नांदेड़ महाराष्ट्र से, नारायण गायकवाड़, दयानंद ओमकार और साईं गायकवाड़, वाइट फील्ड बेंगलुरु से भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति पुरुष और रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कुलदीप कंवल का मैसेज हमें मिला है। और हमें ये मैसेज भेजा है, हमारे श्रोता रहेंगे अश्विनी कुमार साहा, अमरदीप कुमार, पशुपति साहा और मुस्कान, जेपी लेन बिहार से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल भाटिया, सोनू भाटिया, पप्पी भाटिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से मैसेज कर रही हैं। और हमारे श्रोता हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से, राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, अनारकली बाजार जगराओं से,
मैसेज हमारे पास आया है सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक, जयपाल यादव और विनोद पुरी। और ये हमारे श्रोता हैं सुनील कुमार, गांव भरिंडा, डिस्ट्रिक्ट चुरू, राजस्थान से। और लोको कॉलोनी लोहारू, हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार चिंडालिया, बरखा, योगेंद्र कुमार चिंडालिया, नरेंद्र कुमार और इनके सभी परिवार के सदस्यगण। और चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता, खुशबू, खुशदीप का मैसेज हमें मिला है। और एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से मैसेज कर रहे हैं। लुधियाना पंजाब से

पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विन शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही ये हमारे श्रोता हैं नेहरू चौक पैठण से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता, आरती प्रसाद, सोनल, बेबी सिया जाधव और जलाना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता, ओम, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव का मैसेज हमें मिला है। हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से रज़ाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जिशान खान का मैसेज हमें मिला है। और गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही ये मैसेज हमें मिला है उच्च बट्टी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या और अनु गोस्वामी का। इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महेत्रे और अंजलि करवा, बाला साहेब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय टबुल और पीबी कुलथे हमें मैसेज कर रहे हैं। जौहरी वाड़ा पैठण से चांद मामू, फुरकान शेख, जकिया मोरवे, गुफरान शेख और खुशी मोरवे का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही वार्ड नंबर एक पोफाली जिला यवतमाल से जयराम सिंगणकर, दिशांत कुमार और अर्पिता हमें मैसेज कर रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं सादुल शहर जिला श्री गंगानगर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज प्राप्त हुआ है। हमारे श्रोता रहेंगे शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, साईराज और विशाल सपकाल। और हमारे अगले श्रोता हैं, इन्होंने हमें मैसेज किया है, ये हमारे श्रोता हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीम हसन, गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही गांव चोहलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया, अपार ढींगिया। और हमें मैसेज भेजा है हमारे श्रोता रहेंगे करतार सिंह डांडा, सुमन ढांडा, खुशी दिव्यम, गांव खिताना कैथल से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। गर्दन बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु खुराना का मैसेज हमें मिला है। और चेक 5MD पत्रोड़ा से मंगल जनागल, राहिल, श्रीमती रोशनी जनागल, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल और इनके सभी परिवार के सदस्यगण। जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी, नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। अग्रहुआ से हमारे श्रोता हैं महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा,

खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से हमारे श्रोता हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बुड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, रितु और मुकेश जगताप का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है। अग्रहुआ से हमारे श्रोता हैं महेंद्र सिंह हुड्डा, दयावंती हुड्डा,

भेजा है जनकपुरी सहारनपुर से, जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल डिकैस्ट्रो और विलिस डिकैस्ट्रो ने। सुनते हैं इन सभी साथियों की ये पसंद।

माँ की गोदी जन्नत जैसी, माँ की बातें प्यारी हैं, उसके बिना ये दुनिया सूनी, उससे ही खुशियाँ सारी है। खुद भूखी रह लेती लेकिन बच्चों को खिलाती है, दर्द छुपाकर होठों पर वो मीठी हंसी सजाती है। जब भी मुश्किल रास्ते आए, माँ हिम्मत बन जाती है, उसकी दुआओं की ताकत से हर मंजिल मिल जाती है।

रिंगनी छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हैं दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, करणवीर हाउस भुच्चो कैंचियां बठिंडा पंजाब से हमारे श्रोता रहेंगे प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। गांव व डाकघर निमनाबाद जिला जींद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लव

हरप्रीत कौर व करमजीत कौर का मैसेज हमें मिला है और हनुमानगढ़ टाउन से सुल्तान सिंह तरड़, कपिल देव, हिमानी जाखड़ मैसेज कर रहे हैं और इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजा है हमारे श्रोता रहेंगे वड़िंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये हमारे श्रोता हैं जिन्होंने हमें मैसेज किया है। बेनीपट्टी जिला मधुबनी बिहार से अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, भव्या कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी। दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा, कुणाल मेहरा और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और जिला चरखी दादरी, गांव चिड़िया दुधवा से सोनू संगेलिया, मंजीत संगेलिया, तनिष संगेलिया और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। और हमारे ये श्रोता रहेंगे नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नाहवकर, निर्मला नाहवकर, विशाल नाहवकर, मलकापुर से नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे, आशीष मुरहेकर का मैसेज हमें मिला है। और भूपत कुमार डाभी और कृष्ण कुमार डाभी सिंहधरी जिला बलोतरा राजस्थान से हमें मैसेज कर रहे हैं और मदर्स डे की हमें शुभकामनाएं भेज रहे हैं। आपको भी मदर्स डे की शुभकामनाएं। पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से अनिल मोहन, उषा मोहन, टिल्लू नायक और कैथल हरियाणा से मधु नायक। और गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से विक्रम कड़वासरा, सचिन, सतीश, योगेश और युद्धव कड़वासरा। दतरेंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरामणि वर्मा, पारसमणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नोखेलाल वर्मा का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें कोयते वस्ती पुनावले से अजय, करिश्मा, अविका, विशाखा, सायशा का मैसेज हमें मिला है। और श्री रामपुर से डी अशोक कुंभार, अविका, जीविका और सानू कुंभार का मैसेज हमें मिला है। शर्मा कॉलोनी जीन से मीनू, अक्षिता, रक्षित, आरव और अंकित का मैसेज हमें मिला है। तो श्रोताओं, ये नाम हमने शामिल किए आज जिन श्रोताओं ने हमें मैसेज किया। और आपको एक बार फिर से मदर्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। मदर्स डे पर दिल से कहना, माँ तुम मेरा अभिमान हो और इस छोटी सी दुनिया में तुम ही मेरी पहचान हो। हैप्पी मदर्स डे। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल। पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया, 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क को मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया उनमें वारंगल स्थित पीएम मित्र पार्क भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने गुटेबेल्लूर और महबूबनगर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण और संगारेड्डी जिले में जहीराबाद औद्योगिक क्षेत्र के विकास की आधारशिला भी रखी। बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने हैदराबाद में सिंधु अस्पताल का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया है कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है।
1: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में आध्यात्मिक ऊर्जा को नई ऊंचाई दी है।
1: ये शहर सॉफ्टवेयर और सर्विसेज के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, लेकिन भारत की सांस्कृतिक पहचान स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिक चेतना को भी इस शहर ने नई ऊंचाई दी।

0: हैं। ध्यान प्राणायाम भारत के संस्कारों का अभिन्न हिस्सा रहे हैं। आज दुनिया भर के लोग भारत के इन आध्यात्मिक संस्कारों से प्रभावित हैं।
1: गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। सोमनाथ मंदिर चिरस्थायी गौरव और सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत पर्व 2026 के समारोह में उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर प्रभास पाटन में कड़ी पुलिस सुरक्षा व्यवस्था की गई है। वहीं दूसरी ओर आज प्रभास पाटन में धर्म भक्ति देशभक्ति और सैन्य शक्ति का अनोखा संगम देखने को मिला। भारतीय वायुसेना द्वारा एयर शो रिहर्सल किया गया, जिसमें पायलटों ने अपने साहसिक कर्तव्यों से लोगों का दिल जीत लिया। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रिहर्सल भी विशेष बंगाली प्रस्तुति तथा गुजरात की लोक संस्कृति की झलक दिखने को मिली। इसके अलावा मुख्य मार्ग पर स्थित हमीरजी गोहिल की प्रतिमा को भी विशेष पुष्प सज्जा से अलंकृत किया गया है। दूसरी ओर श्रद्धालु और पर्यटकों में भी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में स्थित अधिक जोखिम वाली 30 झीलों के लिए विकसित की जाने वाली पूर्व चेतावनी प्रणाली में कम से कम 60 झीलों को शामिल किया जाना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि लू के कारण कृषि को होने वाले नुकसान को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। गृहमंत्री ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम के बदलते स्वरूप और उनसे उत्पन्न होने वाली आपदा संबंधी बढ़ती चुनौतियों से निपटने के लिए एक व्यापक योजना तैयार की जानी चाहिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। भारतीय जनता पार्टी के 6 नेताओं ने मंत्री के रूप में शपथ ली। इसके अलावा 2 राज्य मंत्रियों का दर्जा बढ़ाकर उन्हें स्वतंत्र प्रभार का कार्य दे दिया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने लखनऊ के जनभवन में आयोजित कार्यक्रम में इन मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: राज्य में बहुप्रतीक्षित दूसरे मंत्रिमंडल विस्तार में आज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह और समाजवादी पार्टी से बगावत कर भाजपा में शामिल हुए मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है। वहीं फतेहपुर जिले की खागा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रही कृष्णा पासवान, कन्नौज की तिरवा सीट से भाजपा विधायक कैलाश सिंह राजपूत, अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट से विधायक सुरेंद्र दिलेर और विधान परिषद सदस्य हंसराज विश्वकर्मा को राज्य मंत्री बनाया गया है। योगी आदित्यनाथ सरकार में राज्य मंत्री अजीत सिंह पाल और सोमेन तोमर का दर्जा बढ़ाया गया है। इन दोनों राज्य मंत्रियों को स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिचीपूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में पेरम्बूर और तिरुचीपूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एमके स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा को भाजपा और एनडीए दोनों के विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। आज सुबह गुवाहाटी में 8 भाजपा विधायकों ने डॉक्टर हेमंत बिस्वा सरमा के नाम का प्रस्ताव रखा था। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि दोनों पक्षों के बीच

0: दाद और टोबैगो के विदेश मंत्रालय और कैरिकॉम भवन में सौर ऊर्जा संयंत्रों के उपयोग, वेक्टर नियंत्रण, नेल्सन द्वीप के अवसंरचना उन्नयन और वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में आयुर्वेद विभाग स्थापित करने के समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। डॉक्टर जयशंकर की कल कैरिबियाई देशों की दो दिवसीय यात्रा सम्पन्न हुई। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार यह हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। विस्फोट के बाद पुलिस चौकी पर बंदूकधारियों ने हमला कर दिया और गोलीबारी शुरू हो गई। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की नींव को मजबूत करने में संविधान और न्यायपालिका ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री शाह ने आज शाम नई दिल्ली में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दो पुस्तकों के विमोचन के अवसर पर कहा कि आम आदमी का विश्वास, समाज का संचालन और राष्ट्र का चरित्र एक मजबूत न्याय व्यवस्था में झलकता है। उन्होंने कहा कि भारत ने एक समाज के रूप में अपनी संस्थाओं में जनता का विश्वास सफलतापूर्वक बनाए रखा है।
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को हमने निश्चित रूप से मजबूत किया है और 1947 से लेकर आज तक इस देश में पार्लियामेंट के माध्यम से और विधानसभाओं के माध्यम से जितने भी परिवर्तन हुए, खून का एक कतरा बहाए बगैर इसको स्वीकार कर लिया गया और बहुत अच्छे तरीके से हमने परिवर्तन किए हैं। यही बताता है कि हमारे लोकतंत्र की जड़ें बहुत गहरी गई और इसमें हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज मातृ दिवस के अवसर पर मुंबई में मातृ पोषण किट वितरित किए। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि विशेष रूप से तैयार किए गए ये किट गर्भावस्था के अंतिम चरण में महिलाओं की पोषण संबंधी जरूरतों और नवजात शिशुओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि माताओं और बच्चों का स्वास्थ्य राष्ट्र के भविष्य से सीधा जुड़ा है। श्री गोयल ने यह भी कहा कि इस पहल का विस्तार उत्तर मुंबई के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाएगा। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हरा दिया। लखनऊ के 204 रन के लक्ष्य को चेन्नई ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर हासिल कर लिया। चेन्नई के उर्विल पटेल ने 23 गेंद में 65 रन की शानदार पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं रायपुर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक मुंबई ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 132 रन बना लिए हैं। कजाकिस्तान के अल्माटी में आईएसएसएफ निशानेबाज शॉटगन विश्व कप में नीरू ढांडा और विवान कपूर ने ट्रैप मिक्स्ड टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इस जोड़ी ने फाइनल में पहले 30 में से 24 निशाने लगाए। चीनी ताइपे पहले और इटली की टीम दूसरे स्थान पर रही। वहीं शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में आज रोमांचक फाइनल मुकाबले में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने मेजबान चीन को 5-4 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तेलंगाना में लगभग 9400 करोड़ रुपए की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आयातित पेट्रोलियम उत्पादों के संयमित उपयोग पर बल दिया। गृहमंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्रियों को शामिल किया। भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य और आयुर्वेद समेत 8 क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में एक आत्मघाती हमले में 15 सुरक्षाकर्मी मारे गए। और आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Telangana. Stresses on judicious use of imported petroleum products to reduce adverse impact of the West Asia conflict. Union Home Minister Amit Shah holds review meeting on country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath expands cabinet, inducts two cabinet ministers and four state ministers. India and Trinidad and Tobago sign 8 agreements including in tourism, healthcare and Ayurveda sectors. In Pakistan, 15 security personnel killed in suicide attack in Khyber Pakhtunkhwa province. And in IPL cricket, Chennai Super Kings beat Lucknow Super Giants by 5 wickets. Another fixture between Royal Challengers Bengaluru and Mumbai Indians underway in Raipur. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today inaugurated and laid the foundation stone of multiple infrastructure and industrial projects worth around 9,400 crore rupees at Hyderabad in Telangana. These projects collectively aim to establish the state as a major manufacturing hub while also strengthening connectivity, generating employment, improving logistics efficiency, enhancing safety and providing a better travel experience for people. Addressing the gathering, Prime Minister Modi said India is effectively managing the energy crisis arising from the West Asia conflict due to the steps taken by the centre, adding that the restrained use of fuel is the need of the hour. He said imported petroleum products should be used judiciously in accordance with genuine necessity, which will help save foreign exchange and reduce the adverse impact of the ongoing conflict.
3: एनर्जी सिक्योरिटी का क्या महत्व है ये आज दुनिया का हर व्यक्ति महसूस कर रहा है। इसलिए भारत की एनर्जी सिक्योरिटी पर हमारी केंद्र सरकार अभूतपूर्व निवेश कर रही है। मलकापुर में इंडियन ऑयल के नए टर्मिनल का उद्घाटन इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच गया है। सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है। लेकिन अब आज समय की ये भी मांग है पेट्रोल डीजल गैस ऐसी चीजों का बहुत संयम से इस्तेमाल करें।
2: मिस्टर मोदी सेड टुडे इंडिया इज एडवांसिंग ऑन रिफॉर्म्स एक्सप्रेस एंड ऑल्सो बिल्डिंग मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर। मिस्टर मोदी सेड ही विल लाइक टू अश्योर एवरी फैमिली इन तेलंगाना दैट सेंटर विल कंटिन्यू टू वर्क विद ग्रेटर स्पीड टू रियलाइज योर ड्रीम्स।
3: आज भारत रिफॉर्म्स एक्सप्रेस पर चल रहा है, साथ ही आज का भारत आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना रहा है। जहीराबाद इंडस्ट्रियल एरिया के निर्माण के पीछे भी यही लक्ष्य है। ये इंडस्ट्रियल एरिया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर विकसित करने के भारत सरकार के राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा है।
2: Among the major projects unveiled today, including PM Mitra Park in Warangal, also known as the Kakatiya Mega Textile Park, it is aimed at creating an integrated textile ecosystem under the center's 5F vision, spanning farm, fiber, factory, fashion and foreign markets. Prime Minister Modi also inaugurated the Sindhu Hospital, a state-of-the-art cancer-focused multi-super speciality quaternary care not-for-profit institution in Hyderabad. Later, Prime Minister Narendra Modi addressed a public meeting in Hyderabad this evening. Mr. Modi said the people of Telangana are seeking change after being let down by both the BRS and the Congress. He said only the BJP's double-engine government can fulfill public aspirations and ensure development. He added that the BJP has formed government in West Bengal with a strong mandate and expressed confidence that similar support is emerging in Telangana.
3: पहली बार बंगाल में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनी है और मैं देख रहा हूं कि बीजेपी की जो ये ऐतिहासिक विजय है उसका उत्साह यहां तेलंगाना में भी दिख रहा है। यहां बीजेपी का हर कार्यकर्ता जोश से भरा हुआ है। आज देश के कोने कोने में बीजेपी पर जनता का आशीर्वाद निरंतर बढ़ रहा है।
2: The Somnath Temple, located at Prabhaspatan in Gujarat and widely revered as the foremost of the 12 Jyotirlingas, is marking 75 years since its reconstruction. To commemorate the occasion, the Somnath Amrit Parv is being celebrated. The Somnath Temple has also come to symbolize enduring pride and cultural identity. Prime Minister Narendra Modi will participate in the celebrations tomorrow at Prabhaspatan and will also address a public gathering on the occasion. We have a report.
4: Prime Minister Narendra Modi will attend the Somnath Amrit Parva 2026 celebration tomorrow on the occasion of 75 years of the reconstruction of the first Jyotirlinga Somnath Mahadev Temple. In view of Prime Minister Vijay's tight police security arrangements have been made in Prabhaspatan. Meanwhile, today Prabhaspatan witnessed a unique confluence of spirituality, patriotism and military strength. The Indian Air Force conducted an air show rehearsal in which pilots won the heart of people with their daring aerial performances. Rehearsals for cultural program also showcased a special Bengali presentation along with glimpse of Gujarat folk culture. On the occasion of Amrit Parva, the temple premises have been specially decorated with flowers. In addition, the statue of Hamirji Gohil on main road has been also adorned with floral decoration. At the same time, an atmosphere of enthusiasm is being seen among devotees and tourists as well. Mayur Solanki, Akashwani News, Somnath.
2: Union Home Minister Amit Shah today reviewed the country's preparedness to deal with possible floods and heatwave conditions. Chairing a high-level meeting in New Delhi, Mr. Shah assessed the readiness of central government agencies, reviewed early warning systems, resource deployment and inter-agency coordination to ensure zero loss of life and minimal loss of property. The minister also reviewed the progress of long-term flood mitigation measures being taken across the country, including protection of critical infrastructure projects, river management initiatives, and scientific advancements in forecasting. Union Home Minister Amit Shah has said that the Constitution and the judiciary have played a significant role in strengthening the foundations of Indian democracy. Mr. Shah was speaking in New Delhi this evening after releasing two books authored by Solicitor General Tushar Mehta. The Home Minister said the faith of the common man, the functioning of society and the character of the nation are reflected in a strong justice system. He added that India as a society has successfully maintained public trust in its institutions.
1: हमारी मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम को
5: वी हैव सर्टनली स्ट्रेंथन आवर मल्टी पार्टी डेमोक्रेटिक पार्लियामेंट्री सिस्टम फ्रॉम 1947 अंटिल टुडे ऑल द चेंजेस दैट हैव अकर्ड इन दिस कंट्री थ्रू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन एक्सेप्टेड विदाउट शेडिंग ए सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड एंड वी हैव इम्प्लीमेंटेड दीज चेंजेस इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर दिस डेमोन्स्ट्रेट्स दैट द रूट्स ऑफ आवर डेमोक्रेसी रन वेरी डीप एंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एंड our judiciary have made a very significant contribution to this.
1: हमारे संविधान और हमारी न्यायपालिका का बहुत बड़ा योगदान है.
2: This is Akashwani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and download the News on AIR app. Welcome back to the news at 9. In Uttar Pradesh, Chief Minister Yogi Adityanath today expanded his cabinet with six BJP leaders taking oath as ministers. Additionally, two ministers of state were elevated and assigned independent charge. Governor Anandibeen Patel administered the oath of office in secrecy at a ceremony held at Jan Bhavan in Lucknow. We have more from our correspondent.
6: In the much-awaited second cabinet expansion in the state today, former state president of the BJP, Chaudhary Bhupendra Singh and Manoj Pandey, who rebelled against the Samajwadi Party and joined the BJP, have been included as cabinet ministers. While Krishna Paswan, representing the Khaga Assembly constituency of Fatehpur district, BJP MLA Kailash Singh Rajput from Tirwa seat of Kannauj, MLA Surendra Dilair from Khair Assembly seat of Aligarh, and Legislative Council member Hansraj Vishwakarma have been made ministers of state. Meanwhile, the status of ministers of state Ajit Singh Pal and Somen Tomar has been elevated in the government. Both ministers have been given independent charge. In the 403-member state assembly, the council of ministers is now 60, which is the maximum number. Sushil Chandra Tiwari, Akashwani News, Lucknow.
2: India and Trinidad and Tobago have signed 8 agreements in sectors including tourism, healthcare, infrastructure and Ayurveda during External Affairs Minister S. Jayashankar.

मोहम्मद रफी की आवाज में आप वासना फिल्म का गीत सुन रहे थे। गीतकार थे साहिल लुधियानवी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। आपके लिए कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवा रहे हैं बड़ा आदमी फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की, रचना प्रेम धवन की है और संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। रचना प्रेम धवन की थी, संगीतकार थे चित्रगुप्त। मोहम्मद रफी की आवाज में, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में लीजिए सुनिए एसएच बिहारी का लिखा गीत। संगीतकार हैं ओपी नैयर। फिल्म का नाम ये रात फिर ना आएगी।

शेर के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी और आशा भोसले का गाया गीत। इसी गीत के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम समाप्त करने की सविता सिंह को इजाजत दीजिए। नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। ये बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में भर

आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें बहुत ही मीठे गायक, विरल और दुर्लभ संगीतकार और अद्भुत व्यक्तित्व पंकज मलिक की।

पंकज मलिक का जन्म 10 मई 1905 को कोलकाता में हुआ था। उनके पिता का नाम था मणिमोहन मलिक और माता का नाम मनमोहिनी था। उनके पिता पारंपरिक बंगाली संगीत में खास दिलचस्पी रखते थे। पंकज मलिक ने दुर्गादास बंदोपाध्याय के संरक्षण में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अपनी शुरुआती तालीम ली। बहुत कम उम्र में उन्होंने ख्याल, ध्रुपद, टप्पा और दूसरे शास्त्रीय संगीत का ज्ञान हासिल कर लिया था। इसके बाद उन्होंने एडमिशन लिया कोलकाता यूनिवर्सिटी के स्कॉटिश चर्च कॉलेज में। अपनी पढ़ाई लिखाई खत्म करने के बाद उनके जीवन में एक बड़ा मोड़ आया। उनका संपर्क दीनेंद्रनाथ टैगोर से हुआ, जो कवींद्र रवींद्र के भतीजे थे। उन्होंने दीनेंद्रनाथ

टैगोर से रविंद्र संगीत सीखा। बांग्ला भाषियों में रविंद्रनाथ टैगोर की कविताओं को लोकप्रिय बनाने में पंकज मलिक के गाए गीतों का बड़ा योगदान माना जाता है। पंकज मलिक आकाशवाणी से जुड़ने वाले शुरुआती कलाकारों में से एक थे। पंकज मलिक का फिल्मी सफर मूक फिल्मों के दौर से ही शुरू हो गया था, लेकिन उन्हें सही पहचान सन 1930 के दशक में बोलती फिल्मों की शुरुआत से मिली थी। हिंदी और बांग्ला दोनों भाषाओं को मिलाकर उन्होंने करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में संगीत दिया और कई फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन वाली शुरुआती हिंदी फिल्मों में से एक थी धरती माता। ग्रामीण भारत के जीवन पर आधारित इस फिल्म में किसानों की समस्याओं और उन मुसीबतों से जूझने का रास्ता दिखाया गया था। पंकज मलिक ने इस फिल्म में बेहतरीन संगीत दिया था। आइए

संगीत समीक्षकों ने फिल्म धरती माता के संगीत की बहुत प्रशंसा की। सन 1938 में शरद चंद्र के उपन्यास पर आई फिल्म बड़ी दीदी, इस फिल्म में पंकज मलिक का संगीत था। सन 1939 पंकज मलिक ने फिल्म दुश्मन में संगीत दिया। इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया।

फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे अद्भुत गीतों में इस गाने का शुमार होता है। सन 1939 फणी मजूमदार ने बनाई बंकिम चंद्र के उपन्यास पर आधारित फिल्म कपाल कुंडला, और इस फिल्म में पंकज मलिक ने स्वयं गाया ये गाना।

0: 1940 लीला देसाई के अभिनय वाली फिल्म नर्तकी में आया पंकज मलिक का संगीत। इस फिल्म के गाने पंडित आरजू ने लिखे थे। खास तौर पर इस गाने को अक्सर ही विविध भारती पर सवेरे सवेरे सुना जाता है।
1: एक

सन 1940 में आई फिल्म जिंदगी। इस फिल्म के गीतकार थे केदार शर्मा। पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में इस फिल्म में कुंदनलाल सहगल ने ये गाना गाया था।

आज इतने बरस बाद भी इस गाने का जादू उतरा नहीं है। राग यमन पर आधारित इस गाने को स्वर साम्राज्ञी की लता मंगेशकर बहुत पसंद करती रहीं और जब आगे चलकर उन्होंने श्रद्धांजलि नामक अपना एल्बम तैयार किया तो पंकज मलिक को नमन करते हुए इस गाने को दी अपनी आवाज।

इसी फिल्म में एक और बेमिसाल गाना था, हिंदी फिल्म संगीत की एक शुरुआती लोरी कुंदनलाल सहगल की आवाज, और इस गाने को भी आज तक बहुत याद किया जाता है।

सन 1941, फिल्म आई डॉक्टर, और इस फिल्म में पंकज मलिक संगीतकार और अभिनेता के रूप में शामिल थे। इस फिल्म का ये गीत सुनिए।

0: पवन।
1: इसी फिल्म में एक और गाना है जो आपको नॉस्टैल्जिया में उतार देगा, आप पुराने जमाने की मीठी यादों में खो जाएंगे।

0: पंकज मलिक भारतीय फिल्म संगीत जगत के इतिहास के एक ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने पाश्चात्य और भारतीय संगीत का सुंदर संयोजन किया। पंकज मलिक ने पश्चिमी वाद्यों का कुशल इस्तेमाल किया। हालांकि बाद के दौर के संगीतकारों ने धड़ल्ले से पश्चिमी साजों का इस्तेमाल किया, लेकिन पंकज मलिक ने जिस तरह से उन्हें अपने संगीत में संयोजित किया है वो अद्भुत है। सन 1944 में आई न्यू थिएटर्स की फिल्म माय सिस्टर, इस फिल्म में पंकज मलिक के संगीत निर्देशन में कुंदन लाल सहगल ने गाया, दो नैना मतवाले तिहारे हम पर जुल्म करें। इस गाने को सुनकर आज भी आपकी गर्दन थिरकने लगेगी।
1: दो नैना मतवाले तिहारे

सन 1952 में न्यू थिएटर्स की फिल्म यात्रिकाई, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की रचना पर आधारित इस फिल्म के गानों में पंकज मलिक का योगदान था।

0: हर फूल में बसा है, हर चीज में उसी का जलवा झलक रहा।
1: पंकज मलिक ने कुछ गैर फिल्मी रचनाएं भी गाईं, जैसे उनका गाया राग यमन कल्याण पर आधारित ये भजन सुनकर आपके मन में आस्था का दीपक जल उठेगा।

पंकज मलिक लंबे समय तक आकाशवाणी कोलकाता से जुड़े रहे और पूजा के दिनों में महिषासुर मर्दिनी नामक कार्यक्रम का संचालन करते रहे। एक झलक सुनिए।

भारतीय डाक विभाग ने सन 2006 में पंकज मलिक की जन्मशती पर एक विशेष डाक टिकट उनकी याद में निकाला था। 19 फरवरी 1978 को पंकज मलिक ने इस असार संसार को अलविदा कह दिया। रह गया तो बस उनका दिव्य स्वर, उनके बनाए गाने और उनकी मधुर स्मृतियां। गायक और संगीतकार पंकज मलिक को हमारा विनम्र नमन।

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज जानी मानी गायक और संगीतकार पंकज मलिक पर केंद्रित था। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले।
1: आज के फनकार।

0: संस्कृत भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती मुंबई के प्रसारण FM बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के हिसार केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, अब आप सुनेंगे आपकी ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम।

ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। साथियों, ईमेल्स भेजने के लिए आप हमारी ईमेल आईडी नोट कर लें, radiohisar@gmail.com। और आप सभी श्रोताओं को अनिल भल्ला का प्यार भरा नमस्कार। तो करते हैं शुरुआत आपके ईमेल्स को पढ़ने का और सुनवाते हैं आपको आपकी फरमाइश पर आधारित गीत। हमारे पास सबसे पहले ईमेल आया है मेरठ कैंट से। हमारे श्रोता हैं दिग्दर्शन कविता करण शक्ति रिया जया और दर्शन भाई। करणवीर हाउस भुच्चो कैंचिया बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर जोड़ा, करणवीर करण, दपिंदर वरिंदर, कुलदीप, सीमू एकम और दमन ने हमें ईमेल की है। नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी का हमें मैसेज ईमेल के जरिए प्राप्त हुआ है। इसी के साथ ही हमें ईमेल भेजी है पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, किसु तासु, अर्णव आनंद और सत्यमानंद, बोहरागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत ने हमें ईमेल भेजी है। मजनू का टीला से कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक, माही मलिक ने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। ये सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर नीला आकाश फिल्म का ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की युगल आवाजों में।

नेहरू पॉट पांडर कवड़ा से अनिल बुरांडे, उषा बुरांडे, अनुश्री बुरांडे, धनश्री बुरांडे बलहार शहर से, सूरज लोंढे, प्राची लोंढे और एकलव्य लोंढे ने हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेजी है। ये हमारे श्रोता हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, आज़ाद नगर, लक्सर, हरिद्वार से। इसी के साथ ही हमें मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं अजय कंबोज, सज्जन कंबोज, सोम रानी बाई, भूना फतेहाबाद हरियाणा से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। और मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज नवेद हसन, सुहेल हसन, रसीद वारसी, अनम अब्बासी, यशफ अब्बासी और सिकंदरा राव से मुबीन अब्बासी, इशरत परवीन का हमें संदेश मिला है। शंभू दयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक ये हमें संदेश भेज रहे हैं गांव जाखोद से। बागवान मंजिल छोटी बलिया से नूर आयशा अहमद बागवान, इकबाल अखलाक, आमना, आशु जूही, सदफ आरजू और समस्त इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। फजल का पंजाब से भूषण खेड़ा, विशाल, विशु और लाडी खेड़ा, शालिनी खेड़ा, टिवानशी खेड़ा, वाणी खेड़ा और जीवन सिंह बूक और इनके सभी परिवार के सदस्यगण मैसेज कर रहे हैं। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया और दिशानी का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। और इसी के साथ ही हमें ये संदेश मिला है मुंदीचक भागलपुर बिहार से दिलीप कुमार सोनी और कमल किशोर साहा। सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की गुलावाजों में प्यार किए जा फिल्म का ये गीत।

अजीत कसाना, मायादेवी ऋतिक और आदित्य कसाना लदावली जिला मुरादाबाद से हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेज रहे हैं। इसी के साथ ही हमें ये फरमाइश मिली है चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा की फरमाइश हमें मिली है, और नर्मदा पार्क मंगल बेठा से मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल, नदीम पटेल ने संदेश भेजा है। इसी के साथ ही हमें ये संदेश भेजा है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गुहानकर राही, श्रीमती सरिता गुहानकर, प्रणीता सिद्धांत गुहानकर, अर्जुन गुहानकर और टुक टुक का मैसेज हमें मिला है। अकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से वैशाली शलेश गुहानकर, सुमित कुमारी ध्वनि उर्फ परी और प्रिंस एकांश गुहानकर का मैसेज हमें मिला है।

0: इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है मनाली हिमाचल से हर्ष विनय विनीत रोजस भाई और चंडीगढ़ से शेफाली शेफी डेविस विमला और सतीश अनेजा। नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फाजिलका से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश और डॉक्टर मदनलाल वर्मा ने संदेश हमें भेजा है। अस्तुपुरा जिला मऊ से मजहर अली अंसारी रजिया बेगम मोहम्मद सादिक अंसारी बहादुरगंज गाजीपुर से आजाद अली अनवर रिजावन रिजवाना परवीन अब्दुल्ला आजाद का मैसेज हमें मिला है और ये हमारे श्रोता हैं। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा ऋतिक मल्होत्रा प्रतीक मल्होत्रा नील शर्मा जयवीर सिंह ठाकुर कैथल से और डॉक्टर अमनदीप कालका से शुभ चंद्र बजाज साहिल बजाज और बिट्टा बजाज का मैसेज हमें मिला है। गजानन येले नवदीप विश्वदीप अशोक सिद्धार्थ नगर दरियापुर वाफली से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। गुजरात गांधी ग्राम से प्रवीण सोनी पूजा पायल और जगदीश जोहरी का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही मोहम्मद सईद अब्बासी निघत परवीन अब्बासी शहनवाज सरफराज फरदीन सुफान अरजान और अबान अब्बासी ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। इसी के साथ ही ये संदेश हमें मिला है। चरखी दादरी हरियाणा से नम्रता खुशबू खुशदीप गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा विमला गोदारा इंदु पार्वती और हिमांशु गोदारा। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर लता मंगेशकर और अमित कुमार की युगल आवाजों में आखिर क्यों फिल्म का ये गीत।
1: Thank you.

हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैज़ल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल, नफीसा और प्रवीण ने हमें ईमेल भेजी है। इसी के साथ ही ये हमारे श्रोता रहेंगे एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट। अकोट से विनायक बेंडे, श्रीमती मंगला बेंडे, विजय शुभम, पवन जरिए और संजीव डाबे राव का मैसेज हमें मिला है। गणेशपुर गंजरू डवारा एटा उत्तर प्रदेश से एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज, गुलफराज और बेबी मुस्कान ने हमें संदेश भेजा है। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया ने संदेश भेजा है और इसी के साथ ही ये संदेश हमारे पास भेजा है संभाजी चौक सिडको न्यू नांदेड़ महाराष्ट्र से। हमारे श्रोता हैं सुधाकर गायकवाड़, विकास, प्रीति, आशा, दीपांजलि, शिक्षा बागमारे, दीक्षा बागमारे और शशांक बागमारे का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज किया है हमारे श्रोता ने सिंहधरी जिला

मल्होत्रा राजस्थान से, कृष्ण कुमार डाभी और भूपत कुमार डाभी ने, और ये हमारे श्रोता रहेंगे। गंजू डवारा से मोहम्मद कलीम अंसारी, जाहिरा बेगम, मोहम्मद आयान, उस्मान यासीन और कम शमसु

उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसोलिया का। और इसी के साथ ही हमें संदेश प्राप्त हुआ है, हमारे श्रोता रहेंगे लुधियाना पंजाब से अक्षित और परीक्षित। जय जिनेंद्र श्रोता संघ परभणी महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश प्रज्ञेश प्रीतेश संघई और इनके पूरे परिवार के सदस्यगण हमें संदेश भेज रहे हैं। जैन मंदिर वाली गली कुरावली से रशीद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसन अंसारी, मोहम्मद कैफ अंसारी और ये हमारे श्रोता हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। गांव लोहगढ़ ठाकुरांवाला, जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरलाल अभिराज और गुरनूर सिंह और शुभदीप सिंह का हमें संदेश प्राप्त हुआ है। और आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मंडी शर्मा, सौरव शर्मा और साइना शर्मा, निवान शर्मा ने हमें संदेश भेजा है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर फिल्म मुकद्दर का सिकंदर का ये गीत आशा भोसले की आवाज़ में।

ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत कुमार, संचित कुमार, प्रथमेश कुमारी, प्रणाली कुमार, सरवद और कुमारी सानवी देशमुख का हमें मैसेज मिला है। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज किया है, नई बस्ती गंजू डवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम, मोहम्मद तौसीफ और मोहम्मद कलीम अंसारी। इसी के साथ ही हमें अगला मैसेज मिला है, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार, हैप्पी, दुबिहा निवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी और प्रांजल राय ने हमें संदेश भेजा है। वर्ली मुंबई से नवाब खान, इशरत जहान, मास्टर अजहर खान और अजीम खान का मैसेज हमें मिला है। ये हमारे श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति और ओजस्वी यादव। ग्राम पंचायत दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से जिला मुरादाबाद से मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, रितिक और बलवीर सिंह ने संदेश हमें भेजा है। ये हमारे श्रोता रहेंगे मोहाली पंजाब से बब्बल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा। कच्छ गुजरात से गंगा वनकर, प्रीति जूली का मैसेज हमें मिला है। और कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह राहुल का संदेश हमें मिला है। और मंगल जनागल राही, श्रीमती रोशनी, अंकुर जनागल, इंदु, डॉक्टर सुनील जनागल, चेक 5MD पत्रोड़ा से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो का हमें मैसेज प्राप्त हुआ है। और ये हमारे श्रोता हैं खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकिश अरोड़ा। SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम, गुमला झारखंड से ये हमें मैसेज कर रहे हैं। आइए सुनते हैं बरसात फिल्म का गीत लता मंगेशकर की आवाज में।

श्रोताओं, शेरवानी स्कूल गंजरू डोवारा से हमें मैसेज किया है आफ्ताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, फनवर मास्टर, लुबना अंसारी और आलिया अंसारी ने। इसी के साथ ही हमें ये मैसेज प्राप्त हुआ है किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास और आशा देवी, सादुल शहर से श्री गंगानगर राजस्थान से राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़ का मैसेज हमें मिला है। हमारे अगले श्रोता रहेंगे भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, पूजा परिहार। ये हमारे श्रोता हैं बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव, सार्थक नामदेव, समर्थ नामदेव और शौर्य।

नामदेव, गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी, पुष्पेंद्र कुमार डूडी, गांव चौधरीवास से राजू अग्रवाल, केशव दक्ष, प्रयाग प्रियांशी, रेखा और चरणदास का मैसेज हमें मिला है। और इसी के साथ ही हमें ये मैसेज भेजने वाले श्रोता हैं अनारकली बाजार जगराओं से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और सुच्चा सिंह पाठक का संदेश हमें मिला है। सब्जी मंडी बुलढाणा से शबीर हुसैन, शहजाद, मुज्जू बाबा, आयजा अनम और मुदस्सिर हुसैन ने संदेश हमें किया है। और इसी के साथ ही हमें ये मिला है रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा का मैसेज। और हमें श्रीनगर से साहिल ने हमें संदेश किया है। आइए सुनते हैं सभी साथियों की पसंद पर ब्लैकमेल फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज में।

रश्मि झरना भरत कुमार राजकोट गुजरात से हमें ईमेल के जरिए अपनी फरमाइश भेज रहे हैं और ये हमारे श्रोता रहेंगे नंदन कुमार सिंह, अंकित कुमार, जिला बेगूसराय बिहार से, संदीप कुमार सिंह, संजय कुमार सिंह, जिला मोतिहारी बिहार से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। गांव जेवरा हिसार से वीरेंद्र भ्याण, सुरेंद्र भ्याण, शमशेर, मनोज भ्याण और इनके परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें संदेश मिला है दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी, अजय, रिम्मी और तनुश्री गुप्ता का मैसेज हमें मिला है। ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी वर्मा, ज्योति, सूरज, कुशल वर्मा, राजेंद्र और माधव वर्मा का मैसेज हमें मिला है। सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया, आफिया, इब्राहिम, सद्दाम, अदीब हसन, गांव कुम्हार हेडार, सहारनपुर से हमें मैसेज कर रहे हैं। इसी के साथ ही हमें मैसेज प्राप्त हुआ है पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप और आरजू जाजोरिया और गुड्डू का मैसेज हमें प्राप्त हुआ है और ये हमारे श्रोता रहेंगे जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा, सबिया और अनस और रेहान। इसी के साथ ही संतोष नामदेव, सार्थक, समर्थ, शौर्य नामदेव वगैरह दुर्ग से मैसेज कर रहे हैं और हमारे अगले श्रोता हैं स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, अंजल भाटिया, पप्पी भाटिया और सोनू भाटिया, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू का मैसेज हमें मिला है। इसी के साथ ही हमें मैसेज मिला है एमएलबी रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी, किरण खुराना, खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू, एसके, पप्पी खुराना, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जोड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना और राजेंद्र सिंह ओबराय का मैसेज हमें मिला है और गांव खारिया ढाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र, राजपाल, अभिषेक, योगेश, पूजा, आरजू, नव्या बिजारनिया और इनके सभी परिवार के सदस्यगण हमें मैसेज कर रहे हैं। पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा भगत, चेतन भगत, सुलोचना भगत का मैसेज हमें मिला है और ये मैसेज हमें भेजा है हमारे श्रोता रहेंगे किरण मंडी आदमपुर हिसार हरियाणा से।

मुजफ्फरपुर बिहार से आर्यन राज रोहित और पीयूष कुमार का हमें मैसेज मिला है और इसी के साथ ही हमें मैसेज भेज रहे हैं हमारे श्रोता मंडी हरजीराम मलोट से नथुराम शर्मा ललित शर्मा इंद्राज शर्मा सुरेश शर्मा और इनके सभी परिवार के सदस्यगण। इसी के साथ ही हमें अगला संदेश मिला है समस्तीपुर बिहार से मीरा सिंह ज्योति सिंह सोनम और अनामिका आशा नारंग सोनाली और सुरेश नारंग सहारनपुर से ये हमें संदेश भेज रहे हैं। रहाट गांव कैंप अमरावती महाराष्ट्र से दिलीप रामेकर हर्षा अक्षय रुद्रा रुचिका रामेकर परिवार इनके समस्त परिवार के सदस्यगण मैसेज कर रहे हैं और बेरडी मध्य प्रदेश से हुकुम करमरकर सुनीता हार्दिक प्राची तन्नु का मैसेज हमें मिला है और ये मैसेज हमें भेजा है तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्ला बख्श बेगम राबिया शेख शेख रहीम मुन्ना दानिश आसिफ शेख का मैसेज हमें मिला है और कलानौर से नरेंद्र शर्मा किरण शर्मा नितिन और मयंक शर्मा का मैसेज हमें मिला है। आइए सुनते हैं इन सभी साथियों की पसंद पर मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत फिल्म रहेगी संगम।

साथियों, इसी गीत के साथ ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। हमारी ईमेल आईडी रहेगी radiohisar@gmail.com। और अब दीजिए अपने साथी अनिल भल्ला को अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

IR at 90. अभी आप सुन रहे थे ईमेल्स पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर या आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और 11:05 पर आप सुनेंगे अंग्रेजी समाचार। ये समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। रिले की प्रतीक्षा करें।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत की कई ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। उन्होंने कहा कि ईंधन का संयमित उपयोग आज समय की जरूरत है।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हाल के वर्षों में वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकों की शीर्ष श्रेणी में भारत की उल्लेखनीय प्रगति का हवाला देते हुए कहा कि पेट्रोल में इथेनॉल के मिश्रण में अभूतपूर्व प्रगति हुई है।
1: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि बीआरएस और कांग्रेस दोनों से निराश होकर तेलंगाना के लोग बदलाव की मांग कर रहे हैं। उन्होंने आज शाम हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि केवल भाजपा की डबल इंजन सरकार ही जनता की आकांक्षाओं को पूरा करके विकास सुनिश्चित कर सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा ने पश्चिम बंगाल में मजबूत जनादेश के साथ सरकार बनाई है और विश्वास व्यक्त किया कि तेलंगाना में भी ऐसा ही समर्थन मिल रहा है। इससे पहले प्रधानमंत्री ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग के 45वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल प्रभास पाटन में आयोजित समारोह में भाग लेंगे। गुजरात के प्रभास पाटन स्थित सोमनाथ मंदिर अपने पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व मना रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने देश में संभावित बाढ़ और लू से निपटने के लिए तैयारियों की व्यापक समीक्षा की। नई दिल्ली में आज एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री शाह ने कहा कि केंद्र और राज्य स्तर पर बाढ़ के पूर्वानुमान के लिए एक एकीकृत प्रणाली होनी चाहिए। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में राज्य की कानून व्यवस्था की स्थिति पर वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बीच श्री विजय ने त्रिची पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में पेरम्बूर और तिरुचि पूर्व दोनों सीटें जीती थी। उधर कल से शुरू होने वाले राज्य विधानसभा सत्र के मद्देनजर डीएमके विधायक दल के सदस्यों ने पार्टी प्रमुख एम के स्टालिन के नेतृत्व में बैठक की। भारत तथा त्रिनिदाद और टोबैगो के बीच पर्यटन, स्वास्थ्य अवसंरचना और आयुर्वेद सहित विभिन्न क्षेत्रों में 8 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर की त्रिनिदाद और टोबैगो की 2 दिन की यात्रा के दौरान इन समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा क्षेत्र में पुलिस चौकी पर आत्मघाती हमले में सुरक्षा बल के 15 जवान मारे गए और अनेक घायल हुए। पुलिस के अनुसार ये हमला कल उस समय हुआ जब विस्फोटक सामग्री से भरी एक गाड़ी पुलिस चौकी में घुसने की कोशिश कर रही थी। इस हमले में पुलिस चौकी पूरी तरह नष्ट हो गई और सुरक्षा बल के अनेक जवानों के मलबे में दबे होने की खबर है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 167 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 131 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

केंद्र से रिले किए जा रहे थे। एफएमएंड 102.3 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का हिसार केंद्र है। इस वक्त रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।

बजकर 10 मिनट हो चुके हैं। अब हमारी आज की सभा यहीं संपन्न होती है। कल प्रातः 5:53 पर हमारी आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।